हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और लगभग 40 सेकंड हुए हैं। अब इन मीटर्स पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 पर। आप जुड़े हैं हमारे इस वक्त प्रातःकालीन प्रसारणों में। सुबह के 5:56 हुए हैं। आइए लेते हैं एक जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से दिन भर आप तक पहुंचेंगे आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से।

अब से कुछ देर बाद होंगे मुख्य समाचार हिंदी में सुबह 6 बजे। इसके ठीक बाद नूपुर कुलश्रेष्ठ लेकर आएंगी सुप्रभात 6:02 से। एक बार पुनः जुड़ेंगे हिंदी समाचारों के साथ सुबह 7 बजे। इसके बाद आप सुनेंगे बबीता रावत से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सूचना प्रद इस कार्यक्रम के बाद हिंदी में मुख्य समाचार होंगे 8 बजे। 8:02 से एक बार सुबह फिर से जुड़ेंगे आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे चरण में। इस कार्यक्रम में आप लेटेस्ट सिटी हैपनिंग्स और महत्वपूर्ण समाचारों सूचनाओं के बारे में जानेंगे जो शहर के इर्द गिर्द हो रही होंगी। बबीता रावत एक बार फिर होंगी स्टूडियो में दिल के तराने गाने नए पुराने कार्यक्रम के साथ सुबह 9:02 से।

वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा नियमित शो होगा मैचलेस म्यूजिक आवर, जिसे लेकर आएंगी आप तक निहारिका भोवानिया। श्वेता शर्मा होंगी स्टूडियो में 11:02 से बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ। एक बार फिर से निहारिका भोवानिया लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम प्ले इट कूल। इस वेस्टर्न म्यूजिक के इस दूसरे चरण के बाद यानी दोपहर 12 के बाद ठीक 1 पुनः जुड़िएगा हिंदी में मुख्य समाचारों के साथ, और श्वेता शर्मा फिर होंगी स्टूडियो में रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम के जरिए। इसमें इस फोन इन कार्यक्रम में आज का टॉपिक रहेगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, जिसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर योगेश कुमार जो कि लाइफ कोच है। इस कार्यक्रम के ठीक बाद 2:02 से आशियाना आएगा आप तक, जिसे लेकर आएंगी स्वाति गुप्ता।

सुनीता शाहबादी से इनकी एंकरिंग में सुनिएगा रेडियो डॉक्टर, हमारा नियमित लाइव फोन इन कार्यक्रम। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से दिन भर आप से जुड़ेंगे एफएम रेनबो के जरिए। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में होंगे हिंदी में समाचार।

सुबह के 6 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। फरवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर की ये पहली भारत यात्रा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में ग्रीन एनर्जी सेमिनार 2026 में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने का ये एक प्रयास होगा। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने इस घटना पर दुख जताया है और पार्थिव शरीर को जल्द ही भारत लाया जाएगा। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हो गई है। 4000 लोग अब भी लापता है। तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कार के रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात इस दौरान प्रभावित रहेगा। सरकार ने प्याज की मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत इन 3-4 राज्यों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। ये थे समाचार अब तक के आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आइए जुड़ते हैं थोड़ी देर में कार्यक्रम सुप्रभात से।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और ये पंछी सुर में गाते हैं, यूं गुनगुनाते हैं और बस यूं ही आप जब उनको गुनगुनाते हुए देखते हैं, उनको उनकी दिनचर्या को देखते हैं किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरीके से वो जुट जाते हैं अपने लिए भोजन की सुविधा करने के लिए, उपलब्धता के लिए, आप सब कुछ देखते हैं, है ना। काम तो करना ही है और निरंतर करना ही है, जीवन जीना है तो फिर काम तो करना ही होगा। और ये काम आप करें, जो भी कर रहे हैं उसको मुस्कुराते हुए करें तो क्या बात है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करें और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटें। जब हम खुशियों को बांटते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात होती है। तो बस इन खुशियों का स्वागत कीजिए, ढेर सारी खुशियों का स्वागत सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और जिनके साथ आप बांटेंगे, और फिर देखिए सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा। ये रास्ते, ये सफ़र कितने सुहावने हो जाएंगे। मंजिल तक पहुंचने का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाएगा। अब जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में। आप सुन रहे हैं, जी हाँ, सुप्रभात।

देर लगी लेकिन मैंने जीना सीख लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेशक देर लगी है लेकिन जीना अगर आपको आ गया है ना, तो फिर आपको इस दुनिया की सारी जो दौलत है ना वो मिल चुकी है। और अगर आपको जीना आ गया है तो आप इस बात को समझ ही चुके हैं कि आज में जीना, अभी में जीना कितना ज़रूरी होता है और हर पल में जीना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का हर पल अनमोल है, एक अनमोल ख़जाना है। यदि आप समझदारी से जिए तो ये हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। तो क्यों ना सिर्फ इस बात को हम समझ लें कि दिलों में अपनी बसा लें और हर पल को जिए एक नई ऊर्जा, नई आशा और नई उमंग के साथ। तो देखिए जीवन कितना कितना कितना कितना सुंदर हो जाएगा।

जी हाँ, यहाँ के आप ही सिकंदर हैं और जो आप करना चाहते हैं बस वो कीजिए, लेकिन हर पल को जिए और हर पल में जीना बहुत ज़रूरी है। और हर पल में बहुत सारी बातें आती हैं, हर तरह के अलग अलग विचार आते हैं, नई ऊर्जा के साथ आप जुड़ते हैं, लेकिन ये संकल्प लें कि हम अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊपर रखेंगे, एक हाई एनर्जी के साथ हम जिएंगे। और जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम अपने जीवन का आनंद लेना तो भूल ही जाते हैं, तो इसलिए संकल्प लें कि हम जीवन को नई ऊर्जा के साथ जिएंगे। जीवन का हर पल अनमोल है, कब कौन सा पल है, हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन ले आए, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि खुद को बदलना चाहिए, तो क्यों ना आज से ही हम, अभी से ही हम खुद को प्रेरित करें और जीवन को नई दिशा दें। बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें जीवन में बदलाव लाती हैं और हमें खुशियों की ओर ले जाती हैं। और जब भी आप जीवन में कुछ भी जो आप अपने लिए टारगेट्स रखते हैं ना कि मुझे ये करना है, ये टास्क है, आज ये पूरा करना है, और जब वो टास्क आपका पूरा हो जाए ना, तो ज़रूरी है कि आप खुद को शाबाशी दें। ये जो छोटे छोटे टास्क आप कंप्लीट कर लेते ना, उनके लिए मुझे तो ये वाला फीलिंग आता है, खुद को शाबाशी दें और हमेशा ऐसा ही फील करें।

आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, और जब भी कुछ आप ऐसा करें ना तो खुश खुद को शाबाशी ज़रूर दें, ये जो दुनिया है, ये जो आपके आसपास लोग हैं वो देना दें, लेकिन आप जानते हैं कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत की थी। जब हम मेहनत कर लेते हैं तो फिर सबको लगता है कि कितनी आसानी से ये सब कुछ हासिल है, लेकिन आप जानते हैं कि आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की थी। तो सब कुछ आप जानते हैं। और यहाँ पर ना मैं डॉली जो हमें मैसेज लिखती हैं कि मैंने जीना सीख लिया, हर पल मस्ती में रहती हूँ, हर पल को जीती हूँ, लेकिन इसका नुकसान हुआ, किसी को लगता था मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हंसती रहती है। पागल हो गई है शायद, क्योंकि पागल ही हंसते रहते हैं हर समय, ये कैसी बात है, ये तो कोई बात नहीं होती। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हम इस बात पर बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन गाना आपने सुना ना, कितने प्यारे लिरिक्स हैं और कितना आपके अंदर ये एनर्जी बनते हैं, भरते हैं, और एक मोटिवेशन आता है ना। यूं ही बिन बात के चल के जाए हंसी, डोले जब हवा लाके गुदगुदी। तो ये सफ़र आपका है, ये जीवन आपका है, और इसमें जो भी उतार चढ़ाव आए हैं उसका डटकर सामना आपने ही किया है। तो यूं ही बिन बात के भी अगर हंसी आ रही है ना, तो उसको भी खुलकर बिंदास होकर जिए, और बिल्कुल इस सफ़र में यू नो सारी लाइंस मुझे कनेक्ट कर जाती है। झूमे जा मौज में, रुकना ना जाने जाए, देखूँ ये तरंग रुकती है कहाँ। यूँ इस सफ़र में ना यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, ये जीवन बहुत ही कीमती है, बहुत सुंदर है, और आप इसको बस जी लीजिए। ना जाने कितने पल हैं हमारे पास, हर पल में हम ये क्यों सोचें कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, हम अपना जीवन जी रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, और सफ़र में गाते गुनगुनाते यूँ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन एक अनमोल तोहफा है, हम सबको दिया गया है, बस कितनी खूबसूरती से आप इसको जीते हैं ये मायने रखता है। कितनी खूबसूरती से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित है ये मायने रखता है। और जानते तो हैं, सपने वो नहीं हैं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो क्यों ना हम अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें, पूरी कोशिश करें, और हर दिन को नए उत्साह के साथ जिएं, हर दिन को बेहद खूबसूरत बनाएं।

जी हाँ, आपको ऐसा गीत ज़रूर गाइए जिसके बोल, जिसका संगीत, धुन आपके जीवन को और भी खूबसूरत बनाता हो। जीवन को वैसा ही जिए जैसा आप जीना चाहते हो, उस तरीके से जिए जैसा जीवन आप अपने लिए आदर्श जीवन बना सकते हो, है ना? जीवन को जीना ज़रूरी है। बहुत सारे बातों को भुलाते हुए जीवन को बस जीना ज़रूरी है, क्योंकि इस जीवन की भागदौड़ में हम छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना, उनको एंजॉय करना भूल जाते हैं, है ना? यही तो करते हैं। और कितना प्यारा मैसेज आपने लिखा है कि हमारा पूरा फोकस आने वाले समय में क्या होगा, क्या काम करना है, उस पर रहता है। भविष्य की बातों को लेकर आज की अपनी खुशी को, ज़िंदगी को हम जीना ही भूल जाते हैं। ठीक है, कल की फिक्र हम सबको रहती है, लेकिन इस आज के पल को तो जिए, इससे तो प्रेरित हो और उस वक्त को अपने अपनों के साथ बिताएं, खुद के साथ बिताएं, खुद से थोड़ी सी और मोहब्बत जो है उसको दिखाएं, है ना? ये सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे से काम हम सब कर सकते हैं अपने लिए, इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। पंकज ने हमें ये बात लिखी और

कई बार आप बातों पे इतनी सारी बात लिखते हैं, आपके जो भी जज्बात हैं वो यहाँ तक आप बयां करते हैं, हम तक पहुँचाते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़कर इस सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ज़िंदगी का नाम ही है रुकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है, बस जो अपने लिए सोचा है वो करना है। हो सकता है जिस रास्ते पर आपने चल कर चाहा होगा कि इधर से जाएंगे, वो रास्ते अगर बंद भी मिले तो घूम के भी तो आते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वापस घर चले जाते हैं, आगे तो बढ़ते ही हैं। तो बस बढ़िए इस सफ़र में, गाते गुनगुनाते यूं ही मुस्कुराते हुए बढ़ते जाइए। हम भी बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़िए। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रही हैं सुप्रभात, और मैं हूँ आपके साथ, जी हाँ, नुपुर कुलश्रेष्ठ।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ नुपुरकुल श्रेष्ठ। और बिल्कुल, तो क्यों ना, बात सिर्फ यही हमने की कि क्यों ना हम सीख जाएं आज में जीना, क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ आज में जिए, इस पल में जिए जिस पल में हम अभी हैं। और हमने जो भी अपने लिए डिसाइड किया है, जो भी हम अब करना चाहते हैं, वो ज़रूरी है डिक्लेरेशन करना कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर उसको टिक भी करना है, ये किया है कि नहीं। ये नहीं सिर्फ टास्क लिख दिए और उसके बाद भूल गए, नहीं। ये खूबसूरत तभी होगा जब आप कर्म भी करते जाएंगे और जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे, गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए। कर्म तो करना ही है, तो खुश होके कीजिए, है ना। और फिर उसके बाद जब वो पूरा हो जाता है, तय वक्त पर पूरा हो जाता है, तो फिर देखिए क्या खुशी ही खुशी आपको मिलती है। तो इस जीवन को पूरी जिंदा दिली के साथ जिए, देखिए फिर कितना आनंद आपको आएगा। और हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। ऐसा होता है ना, कभी आपने सोचा है कि ऐसा करेंगे, ये सुबह उठना है और ये सब करना है, बहुत सारी चीज़ें हम अपने लिए प्लान करते हैं, लेकिन अगर वैसा नहीं होता ना तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हो जाता है। अगर मैंने सोचा था मुझे 5 बजे उठ के मुझे ये करना है, और अगर मैं 5 बजे से थोड़ा सा लेट हो गई, 5:30 बज गए, तो आधा मेरा मूड ख़राब हो जाएगा और आधा मैं टाइम उसमें वेस्ट कर दूँगी मूड ख़राब करके उसके बारे में सोचने के लिए। तो जो आने वाला टाइम है और जो आगे मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने अपना आधा घंटा और वेस्ट कर दिया। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस को बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे करने से ना कुछ भी नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आधा घंटा और वेस्ट हो जाता है। इसलिए वो वेस्ट हो, इससे अच्छा है जब जागो तभी सवेरा, और जब जागे तभी से जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। ये सोच विचार में ऐसे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। और चिंतन कीजिए, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जीवन के हर पल को मुस्कुराहट के साथ जिए, जीवन को इस तरह जिए कि हर पल आपके लिए मुस्कुराहट लेकर आए, क्योंकि जीवन है तो आशा है, और आशा है तो ही आपका जीवन है। तो बस अपने हर पल को ख़ास बनाएं, और जैसे कि हम आपके हर पल को ख़ास बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, हर घंटे एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं, और हर कार्यक्रम में कुछ अलग कुछ ख़ास आपके लिए होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, इसमें आपके साथ होंगी बबीता रावत, और उसके दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में रहेगी एक बार फिर आपके साथ नुपुरकुल श्रेष्ठ, और उसके बाद जो समय है वो है प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने, इसमें भी आपके साथ होंगी बबीता रावत। और उसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो समय है वो है प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर का, उसमें आपके साथ होंगी निहारिका। और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी श्वेता शर्मा, प्लेट कूल में एक बार फिर आपके साथ होंगी निहारिका। और उसके बाद रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम आप सुनेंगे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, श्वेता शर्मा इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी, और आज का विषय होगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग।

और उसके बाद आशियाना सुनेंगे आप कार्यक्रम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। स्वाति गुप्ता होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ और रेडियो डॉक्टर सुनेंगे आप 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। ये जो प्रोग्राम है आज स्पेशल है ऑन आई डोनेशन फॉर नाइट पर, और इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जैसा कि बताया। अल्फा जैन सुनेंगे इसके बाद कार्यक्रम आप, इसमें भी आपके साथ रहेंगी स्वाति गुप्ता। सुनीता शाहबादी आपके साथ जुड़ेंगी सिटी की खबरों के साथ सिटी लाइट्स में, और उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगी मुक्ति सैनी मैसेज मसाला मिक्स में, और उसके बाद ज्योति होंगी आपके साथ नॉर्थ वेस्टर्न म्यूजिक में, और उसके बाद समय रहेगा म्यूजिक मस्ती का, मुक्ति सैनी ही होंगे इस प्रोग्राम में आपके साथ, और उसके बाद आप जुड़ेंगे प्रज्ञा तिवारी के साथ, लेकर आएंगी कार्यक्रम आपकी याद आती रही, और उसके बाद रेनबो क्लासिक्स में आपके साथ होंगी ज्योति, और उसके बाद रंगे महफिल में एक बार फिर आपके साथ होंगी प्रज्ञा तिवारी। तो यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के सफर में, कार्यक्रमों का सिलसिला बिल्कुल जारी है। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ बिल्कुल आपके साथ हूँ अभी, लेकिन ये सुप्रभात में बस इतना ही, लेकिन ये जो सिलसिला है वो बिल्कुल यूं ही चलता रहेगा। आकाशवाणी रेनबो का ये जो सफर है वो जारी रहेगा हर पल, बस यूं ही मुस्कुरा के जीते रहिए आप, क्योंकि हर पल बेहद खूबसूरत है।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ये भारत की उनकी पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमंत्री मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में ग्रीन एनर्जी सेमिनार 2026 में शामिल होंगे। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल। पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई। 4000 लोग अब भी लापता, तलाशी अभियान जारी। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारकेड रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपद और 12 खंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। सरकार ने प्याज के मूल्य पर नियंत्रण के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। और बैडमिंटन में भारत के अग्रणी शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के शेंजेन में चल रही चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और इस चहकती हुई आवाज के साथ आपको गुड मॉर्निंग करने आई हूँ मैं बबीता रावत। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर के लोग और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लोग हमें सुन रहे हैं आपके माध्यम से भी, और साथ ही साथ हम और आप दोनों जुड़े हुए हैं दिल से दिल तक। तो सुनते रहिए मेरे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, बस देखने की नजर होनी चाहिए। बस आप जानिए, आपकी जिंदगी में अगर कठिनाई आ रही है तो उसे पार करते जाइए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।

हर दिन की शुरुआत हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और आज का दिन 2 सितंबर 2026 का दिन है। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि। और आज के दिन हलधर षष्ठी भी मनाई जाती है और 5:59 पर हुआ है आज का सनराइज। और देखिए ना, धीरे धीरे कैसे सूरज आपको थोड़ी सी ज्यादा मोहलत दे रहा है सोने की। और ऐसे में बस अब वो दिन दूर नहीं जब मौसम का परिवर्तन धीरे धीरे करके, जो अभी इस वक्त पानी छमछम बरस रहा है ना, और धीरे धीरे वो जो रास्ता है वो सर्दियों की तरफ जाता है, ऐसा ही कुछ माहौल बनने वाला है कुछ ही दिनों में। और इसके साथ ही 6:43 पर शाम को सूरज अस्त हो जाएगा। और एक अगले दिन की शुरुआत के लिए, आपको फ्रेश करने के लिए, जी हाँ, एक थोड़ी सी नींद देने के लिए रात यानी कि चांद का पहरा तो नहीं आएगा क्योंकि कृष्ण पक्ष है, और लेकिन आपको एक अपनी थकान से दूर करने के लिए, एक नए सवेरे के लिए, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए जरूर से मजबूर कर देगा। जी हाँ, और टेम्परेचर की बात कहें तो 32 डिग्री इस वक्त मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा आज का, और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री का रहेगा। लेकिन साथ ही साथ बारिश की फुहार भी रहेगी आज के दिन। भाई देखिए ना, कल भी ऐसा ही हुआ, अचानक से शाम को बारिश ने ऐसी झमाझम बारिश की कि पूरा दिल्ली एनसीआर सराबोर हो गया पानी में। और आज भी ऐसे ही रहेगा और अगले एक दो दिन तक भी मौसम इसी तरह से बरकरार रहने वाला है। तो बस मजे लीजिए मौसम का और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और

0: कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर टीएमटी बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026 अ मोमेंट वेयर लीडर्स इनोवेटर्स बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Mangal Bhavan Mangal Hari Dravahu Sudash
4: Shri Ram Katha Marmagya Dr. Kumar Vishwas Ji ke saath Shri Ram Charitmanas ki bhav ras sangeet yatra sampurna Shri Ram Charitmanas Somvar se Shukravar subah 7 baje aur dopahar 12:30 baje DD National aur Waves OTT par।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग रैली एनसीआर, और गुड मॉर्निंग रैली एनसीआर में हम हमेशा यही चाहते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। वैसे आज के दिन की बात की जाए तो आज है 2 सितंबर, और 2 सितंबर के इतिहास को हम यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज इतिहास में वो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जो सदा सदा के लिए ऐसे अमर पन्नों में छप गई, जो आज भी हम याद करते हैं। 1573 में अकबर ने गुजरात में फतेह की। वहीं 1946 में जवाहरलाल नेहरू के उप सभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ। 1969 अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैसे निकालने वाली मशीन, जी हाँ, जिसे हम ATM कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। वहीं 1970 में 2 सितंबर के दिन कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ। कहते हैं कीर्तिमान लिखे जाते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो सदा सदा के लिए उनका नाम अमर हो जाता है। इसी तरीके से 1990 में भारतीय तैराक बूला चौधरी इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। और 2023 में भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो ये वो घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों पर छप गई हैं और सदा सदा के लिए दोहराई जाएंगी। जब जब ये दिन आएगा या कभी भी कोई भी बड़ी अचीवमेंट होगी तो इनका नाम या इन बातों का ज्ञान जरूर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये प्यारा सा गीत आप सभी लोगों के लिए एंजॉय कीजिए, और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे लिए आपके लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: प्यार बांटना चाहिए और हम अपने अपनों तक या अपने से जुड़े हुए लोगों तक प्यार कैसे बरसा सकते हैं या उन्हें बांट सकते हैं उनकी केयर करके। जी हाँ, केयर हमें ज़रूर करनी चाहिए अपनों की और ख़ास तौर से अपनी प्रकृति की भी। और प्रकृति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति से हमें ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो हम उनकी केयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक छोटी सी पहेली है, आप उसका आंसर दे दीजिए तो आपको अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ तो पता चल ही जाएगी। चलिए पूछती हूँ मैं आपसे वो पहेली। तीन आँख है पर शिव नहीं, जटाजूट है पर मुनि नहीं, जल भरा है पर घड़ा नहीं, पेड़ पर रहता है पर पक्षी नहीं, बताओ वो क्या है। थोड़ी देर सोच लीजिए है क्या वो, और मैं आती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद और बताऊंगी कि कैसे आप प्यार अपनी धरती को बांट सकते हैं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। और होपफुली आपकी जो पहेली, आपसे जो मैंने पहेली पूछी थी, वो बहुत सोच समझ कर लोगों ने गेस कर लिया होगा। और नहीं गेस किया तो चलिए हम बता देते हैं। तीन आंख है पर शिव नहीं, जटाजूट है पर मुनि नहीं, जल भरा है पर घड़ा नहीं, पेड़ पर रहता है पर पक्षी नहीं, वो है नारियल। और नारियल की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड कोकोनट डे। जी हाँ, वर्ल्ड कोकोनट डे है आज। और विश्व भर में आज का दिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि नारियल एक ऐसा फल है, या नारियल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी हर एक चीज बहुत उपयोगी है। 2 सितंबर को इसे मनाए जाने की वजह भी है। आपको बताती हूँ क्यों है ये वजह, और ऐसा क्यों है कि नारियल बहुत उपयोगी फल है। इसका हर एक भाग, चाहे वो तना है या पत्ती है या फिर इसका फल है, तीनों ही चीज़ें बहुत उपयोगी होती हैं। और अगर बात कहें तो नारियल के पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का वृक्ष भी कहा गया है। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और इसका जो एक एक पार्ट है, जो इसके खाने वाला है यानी कि फल का पार्ट है, उसका एक एक पार्ट बहुत उपयोगी है। इसके अलावा जो इसमें से रफेज निकलता है, जो वैसी चीज़ें निकलती हैं जिसका यूज़ आप कुछ ना कुछ काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, उसकी जटाएं। जी हाँ, आज आपको पता है कि विश्व पॉलीथीन की चपेट में बहुत ज़्यादा जकड़ चुका है और हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि हम इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल पा रहे। और ऐसे में देखते हैं कि नालों में या फिर रेल की पटरियों के पास गंदगी में पॉलीथीन आपको हर जगह दिखाई देगी। और इसका एक ही सब्स्टिट्यूट है, वो है आपके लिए जूट। जी हाँ, नारियल की जटा से बने थैलों का जो उपयोग है वो आप कर सकते हैं अपनी निजी लाइफ में, और साथ ही साथ अपनी धरती के प्यार को, यानी अपनी धरती से जो आपका प्यार का नाता है, उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। नारियल की खेती हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग करते हैं और इससे उन्हें रोजगार मिलता है। और देश के 4 दक्षिणी प्रदेश जैसे केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो नारियल है वो सघन खेती की जाती है। तो 90% नारियल हमें यहीं से मिलता है, और नमकीन मिट्टी और समुद्री मिट्टी के किनारे ये उगाया जाता है। और ऐसे में इसकी खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए आज का दिन पूरी तरह से विश्व नारियल दिवस के रूप में समर्पित किया जाता है उन लोगों को जो इसकी खेती करते हैं और जो बढ़ावा दे रहे हैं प्रकृति के सुधार में। तो 2009 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी द्वारा। और इस दिन की जब बात होती है तो हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति को किस तरह से सुरक्षित रखना है, और नारियल उसमें बहुत उपयोगी है, जूट के माध्यम से भी, और साथ ही साथ आस्था का प्रतीक भी है नारियल, और साथ ही साथ कहें तो अपनी हर एक पार्ट से वो हमें पोषित करता है। और पोषण से भी हमें कुछ याद आया है, सुनते रहिए हमारे साथ। आज बहुत कुछ है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ। आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR चल रहा है।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आपने गाना सुना, यार रहमान की कंपोजिशन है, जींस फिल्म से ये गाना है। और इस फिल्म का जो ये वर्ड है ना, काया हूँ मैं छाया है तू। जी हाँ, वैसे काया की बात की जाए तो आप सभी लोगों की काया बहुत सुंदर और कीर्तिमान बनी रह सकती है। वो कैसे बनी रह सकती है? जब आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचे। वैसे जैसे मैंने आपको आज बताया था कि आज पूरी तरह से आपकी सेहत पर बात होगी, और आज इसलिए बात होगी क्योंकि ये जो हफ्ता है वो नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है। जी हाँ, नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, और 1 से लेकर 27 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है। और स्वस्थ जीवन के लिए सही पोषण और संतुलित आहार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। वैसे संतुलित आहार हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो शरीर में पोषक तत्वों को तो बढ़ावा देता है, और इसलिए सही खान पान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता, रोजाना के जो भोजन है उसमें कुछ ज़रूरी तत्व हैं जिसे शामिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर आपको अपने काया को बिल्कुल सधा हुआ रखना है और फुर्तीला रखना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके शरीर में

वही खान पान की आदतों से होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी आदतें अपनाएं अपने खान पान में। और जैसे उद्देश्य की बात की जाती है, तो इस पूरे विश्व में कई ऐसे लोग हैं जो कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें उन चीज़ों को नोट करना चाहिए या उन खाने को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और हमारा शरीर स्वस्थ हो। और स्वस्थ होने की कामना हर कोई व्यक्ति करता है, और अच्छी काया, अच्छा रूप रंग और अच्छी पर्सनालिटी हर किसी को चाहिए। इसलिए आपकी ज़िंदगी में न्यूट्रिशन ज़रूरी है और बैलेंस डाइट उसका एक बहुत बड़ा कारक है। खाने में सब कुछ होना चाहिए, बस न्यूट्रिशन भरपूर हो जिससे आप स्वस्थ रह सकें।

वाह वाह जी वाह। और ऐसे वाह वाह वाह करते हुए हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, और जब चीज़ों की बात की जाती है तो खेलों में अगर हम ना जाएं और उसकी जानकारी ना लें तो बस दिन पूरा नहीं होता। और इसी बहाने हम देख लेते हैं कि आज जो आजकल जो इवेंट्स हो रहे हैं क्या क्या हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईशांत शर्मा जो कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर है, उनका है आज बर्थडे। 2 सितंबर 1988 में इनका जन्म हुआ था। क्रिकेटर है, दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज है, और इन्हें करते हैं हम हैप्पी वाला बर्थडे विश और बताते हैं आपको आगे की कहानी। जी हाँ, आगे की कहानी नहीं, आगे की बातें। क्रिकेट की बात की जा रही है तो BCCI में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मुकाबले की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें श्रेयस अय्यर टीम कैप्टन है और तिलक वर्मा आपके उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम में शामिल होंगे। इसके अलावा हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती इसमें शामिल हैं, और ईशान किशन विकेट कीपर और रवि किशन भी इस टीम में शामिल हैं। तो ये टीम है जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले 3 T20 मुकाबले में ये टीम खेलेगी। इसके अलावा बताते चले कि 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में वर्ल्ड नोमैड का आगाज हो चुका है। यहाँ पर दुनिया भर के एथलीट पारंपरिक खेलों में शामिल हुए हैं, और इस साल 43 तरह के खेल खेले जाएंगे, जैसे गोरेश, कुराश और मंगोश बोख जैसी पारंपरिक कुश्ती शैलियां खेली जाएंगी, और कोक बोरू केक पारा घुड़सवारी होगी, और तोगुज, कारगुल, मंगला, ओवारे, चुरको, ओडो, रशा कसी और स्ट्रॉन्ग मैन जैसे इवेंट्स इसमें होंगे। क्षेत्रीय देशों के बीच सांस्कृतिक एकता और साझा विरासत को मजबूत करने के लिए इस तरह का मंच बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये साझेदारी करता है, हमारे बीच के संबंधों को मजबूत भी करता है। इसके अलावा आपको बता दें, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबलेंका ने न्यूयॉर्क के कोलंबिया की कैमेला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हरा दिया है, और सबलेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना इत्सियासेको से होगा। और आपको बता दें एक और न्यूज़ भी है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वैसे अब इन्हें हम देख तो पाएंगे लेकिन पूरी फुटेज के साथ नहीं, लेकिन हाँ अगर कहें तो अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉल की अथाह कहानियां हैं फुटबॉल से रिलेटेड। 207 मैच खेले हैं इन्होंने और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने इस बार की जीत के लिए। कोपा अमेरिका खिताब जीतने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। फिलहाल स्पोर्ट्स न्यूज़ में यही सारी बातें आपको बता दी हैं, और अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी बातें हैं आपके लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। सुनते रहिए, दिल से दिल तक जुड़े रहिए मेरे साथ।

0: लगा ले।
1: जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं उससे पहले से ही हमारा नाता हमारी माँ से जुड़ जाता है। 9 महीने पहले ही हम अपने माँ के गर्भ में आते हैं।

0: है और उनके साथ ही हमारी जिंदगी की वो शुरुआत होती है जिसकी कल्पना हम आगे चलकर करते हैं। लेकिन गर्भ में ही बच्चे की जो परवरिश होती है वो आगे उसके शरीर की बनावट और उसके न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ जीवन का निर्माण संभव है। ऐसे में एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसे दिया जाने वाले आहार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरोग्यम सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं मातृ एवं शिशु पोषण, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक पोषण तत्व। और ये एक स्पेशल सेगमेंट है, इसमें हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि इस वक्त नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है और ऐसे में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और उनके खान पान के बारे में बात करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। देखिये, आहार है और होने वाली माँ से वो बच्चों तक जाता है पोषण के रूप में, और ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बच्चे के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिलते हैं माँ से, गर्भवती महिला से, और उनकी डाइट में ज़रूरी हो जाता है, गर्भवती महिलाओं की डाइट में ज़रूरी हो जाता है आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, और ये ज़रूरी चीज़ें हमें मिलती हैं दूध, दही, संतरा, पालक, सब्जी, दाल, अनाज और अंडों से, साबुत अनाज से भी और पनीर से भी। तो अपने आहार में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं इन चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि जो नवजात शिशु होने वाला है उसे गर्भ में ही अच्छा पोषण मिले। और साथ ही साथ जब नवजात शिशु पैदा होते हैं तो एक महीने से यानी कि 0 महीने से लेकर के 6 महीने तक की अवधि में उन्हें ज़रूरी हो जाता है कि माँ का दूध भरपूर मिले, और ऐसे में माँ का स्वस्थ रहना उसके न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करता है। और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, खाने से मिलेंगे, अच्छे अच्छे खाने से मिलेंगे, और ऐसे में आप ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा खाइए ताकि आपके बच्चे को एक अच्छा दूध मिले 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद आयरन और जिंक का आहार उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी हो जाता है, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन डी की ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में 6 महीने के बाद धीरे धीरे हम बच्चे को डॉक्टर की सलाह से सेमी सॉलिड फूड या सॉलिड फूड देने की कोशिश करते हैं और फिर हमारा जो जीवन है, जो हमारे जीवन की शुरुआत है, वो स्वस्थ होने लगती है। हमारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे, उनकी शुरुआत अगर स्वस्थ होगी तो ऑब्वियस ही बात है वो ज़िंदगी पनपेगी और फिर महकती चहकती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात अभी बाकी है, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का ये सिलसिला अगले घंटे नुपुर आपके लिए लेकर आएंगी, क्योंकि अगले घंटे भी यही प्रोग्राम

आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं। आज है पुण्यतिथि साहित्यकार अमरनाथ झा जी की। प्रसिद्ध विद्वान साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री थे ये। हिंदी को सम्माननीय स्तर तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हिंदी के प्रबल समर्थक भी रहे थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, पद्मपराग, शेक्सपियर कॉमेडी, हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, विचारधारा जैसी कई रचनाएं इन्होंने की और इन्हें इनके इस योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आज पुण्यतिथि है विष्णु सखाराम खाड़ेकर जी की। जी हाँ, मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं ये। इन्होंने ललित निबंध और उनकी भाषा शैली आदि के कारण इनको सभी पसंद करते थे और कहानियों के अलावा नाटक, निबंध, आलोचनात्मक निबंध इन्होंने लिखे और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य रचनाओं में देवयानी, ययाति, शर्मिष्ठा जैसी पुस्तकें हैं और इन्हें हम करते हैं नमन। और साथ ही साथ इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नुपुर आपके साथ आएंगी और मैं आपसे मिलूंगी ठीक 9 बजे प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने में। तो अभी मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः

लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्टी वीवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ये भारत की उनकी पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में ग्रीन एनर्जी सेमिनार 2026 में शामिल होंगे। यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल, पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई, 4000 लोग अब भी लापता, तलाशी अभियान जारी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारकेड रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपद और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। सरकार ने प्याज के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। और बैडमिंटन में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के शेंजेन में चल रहे चाइना मास्टर्स सुपर 750 चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये थे AIR FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

हौले हौले सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा सब्र रखिए और फिर देखिए ज़िंदगी का हर रंग कितना खूबसूरत है और वो जो रंग और जो सपने आपने लिए सजोए हैं वो किस तरीके से निखर कर आते हैं और किस तरीके से वो सारे सपने आपके पूरे होते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट, और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारी स्टार्स फिट एंड फाइन हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

आज से, अभी से अपने लिए सब कुछ वो करना शुरू कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है और बदलते मौसम के साथ साथ आपका मूड भी बदलता रहता है। और जब मूड बदलता है तो फिर आपने जो प्लान किया होता है आप वो प्लान्स भी चेंज कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा तो करना ही नहीं है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हर प्रिकॉशन के साथ आपको सफ़र में आगे बढ़ते जाना है। तो कैसा रहेगा मौसम का हाल, बिल्कुल आपको बता देते हैं। बारिश तो बिल्कुल हो सकती है, उसकी संभावना है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और साथ ही साथ तापमान कितना रहेगा तो वो जान लेते हैं। अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। और कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की भी संभावना है, और अदरवाइज हल्की बूंदाबांदी तो हो ही सकती है। तो इस तरीके से आप मौसम का हाल तो जान चुके हैं, लेकिन अपना हाल भी उस हिसाब से बिल्कुल सही करके रहेगा, क्योंकि झमाझम बारिश में आप कहीं फंसे नहीं, और अच्छे से अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और टाइमली घर पहुंचें। तो उसके लिए सारी तैयारी पहले से कर लीजिएगा। और मौसम अभी जो है और बदलते मौसम के बीच अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। खांसी, ज़ुकाम, सर्दी से बचे रहना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए एहतियात भी बरतें, हर

है कि प्रिकॉशंस लें, मास्क लगाएं, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहें, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने की पूरी कोशिश करें, सारी एहतियात जो है उनको बरतें। और अगर आपको लगता है कि तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो समय रहते डॉक्टर से जल्द संपर्क करें, खुद डॉक्टर ना बने बिल्कुल भी ऐसा आप ना करें। एक दिन आपने देख लिया कि आपने मेडिसिंस ले भी ली और उसके बाद आपको लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार नहीं उतर रहा है, हालांकि बुखार एक दिन की बात नहीं होती, लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन है और अलग अलग केसेस हम तक पहुंच रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, तो आपको इस तरह से अपना ख्याल रखना है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी भी तरह की आपकी कोई भी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, मेडिसिन लें और मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना लें और ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं। लेकिन प्लीज़ कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं जिसमें आप खुद से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर तो कभी भी खुद ना बने, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उन्हीं ने जो प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिंस लें। जुड़े रहे हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

जी हाँ बिल्कुल, नाचे गाइए और नाचें और देखिए कि आपने क्या खाया है, क्योंकि जब आप नाच रहे हैं और गा रहे हैं और कितने अच्छे से वो एक्टिविटी आप कर पा रहे हैं, वो पता चलता है कि आप कैसा भोजन खा रहे हैं, है ना। जब शरीर में जो पेट, खाने का मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ हमको पेट भरना है, ज़रूरी ये है कि जो भी आप भोजन ले रहे हैं तो उसमें वो सारे तत्व शामिल हैं या नहीं जो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे आप डांस करेंगे या आप गाना गाएंगे या स्विमिंग करेंगे या कुछ भी डेली टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी लेवल आपका कितना है वो बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा कि किस तरीके का भोजन आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी पोषक तत्वों को शरीर में शामिल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आप कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पोषण जो ये सप्ताह है उसके लिए आपको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, आपकी जो जीवन शैली है वो स्वस्थ हो और आप एक संतुलित आहार लें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खाने को तो हम कुछ भी खाते हैं, लेकिन ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खाते हैं, क्या सब कुछ न्यूट्रिशंस जितने भी हैं उनको हम ले रहे हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, हेल्दी फैट्स हम लेते हैं कि नहीं, विटामिन्स मिनरल्स किससे हमें मिलता है, क्या हम उसका ख्याल रखते हैं। ये जो अलग अलग रंग के जो फल हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, दूध दही, ये सब कुछ अनाज है, साबुत अनाज है, नट्स है, बीज है, इन सबको हमने शामिल किया है कि नहीं, फाइबर आज गया है कि नहीं हमारी बॉडी में। तो एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है और इसे रोज़ लेना ज़रूरी है, और रंगों को भी शामिल करें, वो अलग अलग रंग की जो सब्जियां हैं, आपकी जो प्लेट है उसमें अलग अलग रंग दिखने चाहिए, है ना, और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, स्वाद तो आएगा ही और साथ ही साथ आपको सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिलेंगे। तो बस खाते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए, और यूं ही गाते गुनगुनाते इस सफ़र में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और साथ ही साथ सूरज की तेज धूप हो और नारियल पानी हो और पीकर क्या सुकून मिलता है ना, वो हमारा साथी बन चुका है नारियल पानी। और नारियल पानी की ही सिर्फ क्यों बात करें, नारियल पानी हो, नारियल के लड्डू हो, और अभी जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है और कई घरों में नारियल की जो है वो बर्फ़ी बनती है, नारियल से रिलेटेड एक मिठाई बनती है, और नारियल से मोदक भी बनाते हैं, है ना, और बहुत सारी नारियल की सब्ज़ी बनती है, और कितना ज़्यादा हम उसका नारियल के दूध का हम इस्तेमाल करते हैं, खीर भी बनाते हैं। तो नारियल के इतने सारे फ़ायदे हैं, आपको एनर्जी मिलती है उससे, आपको हाइड्रेशन मिलता है, और आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा रहता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा रहता है, आपके वेट में भी कंट्रोल करता है। और धार्मिक उसकी बात करें हम, रूप से धार्मिक महत्व की हम बात करें तो भी इसका काफ़ी महत्व है, इसको श्रीफल कहा जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं नारियल के, और आज जो है वर्ल्ड कोकोनट डे है, तो मुझे लगता है जो मुझे तो नारियल के तेल से लेकर, नारियल खाने से लेकर, नारियल की का जो मिल्क है, और जो उससे कटहल की जो मैंने खीर खाई थी, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे खिलाई थी, मुझे अभी भी याद है जैसे उसने कहा कि ये खीर खानी है, और मुझे लगा मेरे एक्सप्रेशंस बिल्कुल अलग थे क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि कैसी होगी और क्या टेस्ट होगा, लेकिन जब मैंने उसे खाया तो मुझे लगा कि एक और ग्लास दे दो, क्योंकि उसने मुझे वो ग्लास में दी थी, और एक और ग्लास दे दो और घर के लिए भी रख देना, हाँ, क्योंकि मुझे सबको टेस्ट करानी थी, वो इतनी टेस्टी थी। तो इतने सारे फ़ायदे हैं नारियल के, और आप सैलेड है जब आप खीरा, गाजर, टमाटर उसको आप काट के और उसके ऊपर भी आप नारियल को ग्रेट करके सैलेड के रूप में भी इसको ले सकते हैं, तो शामिल तो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो आज कोकोनट डे है, और सच में कोकोनट से जिनको प्यार है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत पसंद है नारियल, तो इसलिए मैंने इतनी सारी आपसे बात की। इतने पोषक तत्व ये आपको देता है, और पोषण बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और शामिल रहें हमारे साथ इस सफ़र में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पे आ जाते हैं, शॉर्ट में बतला देते हैं। देखिए, सीधी साफ सी बात ये है कि हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर सेहत अच्छी है तो यहाँ वहाँ घूमने जाने का जो मज़ा है वो आएगा, और वो जो सफ़र है उसको आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो

दिल्ली हार्ट INA आप पहुंच सकते हैं नई दिल्ली, और यहाँ पर बिल्कुल आपको इतने सारे जो टैलेंटेड आर्टिसंस हैं उनका जो वर्क है वो देखने को मिलेगा, हैंडीक्राफ्ट्स, और आप बिल्कुल सेलिब्रेट कर पाएंगे जो हैंडीक्राफ्टेड ट्रेडिशंस हैं उसको, उसका आप आनंद ले पाएंगे, और बहुत कुछ आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हस्त कला जो है आप उसको बिल्कुल वहाँ पहुँचते हैं जब आपको वहाँ पे कारीगर दिखते हैं जिन्होंने उसको बनाया होता है, तो आप उनको उनको प्रोत्साहित करते हैं, है ना, उनके जो हौसला है उसमें वृद्धि करते हैं। तो ये जो देश भर की पारंपरिक हस्तशिल्प कलाएं हैं यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही हैं, तो आप यहाँ पहुँचिए और आनंद लीजिए इस उत्सव का, जहाँ पे आपको दिखेंगी रंग बिरंगी स्टॉल्स, और बहुत कुछ आपका मन करेगा कि ये भी ले लें ये भी ले लें, और फिर मन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इतनी जो अच्छी अच्छी हथकरघा उत्पादों की जो प्रदर्शनी है वो आपको अपनी ओर खींच ही लेगी, तो बिल्कुल पहुँचिएगा वहाँ पर, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा अपने मन पर, है ना, मुश्किल होता है लेकिन कोई बात नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो, और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक गाने के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, गाने के पार होंगी और भी बातें, आप जुड़ रही हमारे साथ।

जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार।

0: मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर टीएमटी बार।
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026। ब्रिक्स समिट 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Dil ke tarane, gaane naye purane. नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: दिल के तराने गाने नए पुराने, आप कुछ ही देर में ये जो प्रोग्राम है वो लेकर आएंगे आपके साथ, आपके बीच बबीता और बबीता रावत के साथ आप सुनेंगे ये प्रोग्राम। और उसके बाद समय रहेगा मैचलेस म्यूजिक आर का, जिसमें आपके साथ होंगी निहारिका और बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक श्वेता शर्मा। और उससे पहले कार्यक्रमों का सिलसिला तो यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन आप भी किस सफ़र में जा सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, एक बहुत ही ख़ास जो शो है उसका, और इसका आयोजन किया जा रहा है कमानी ऑडिटोरियम में, डांस बैले कृष्ण। और इसमें आप गोकुल, वृंदावन से लेकर कुरुक्षेत्र तक का जो सफ़र रहा है कृष्ण का, जी हाँ बिल्कुल, गोकुल, वृंदावन और कुरुक्षेत्र का जो भी सफ़र रहा है उसको शास्त्रीय नृत्य और संगीत और मंच पर आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से सब कुछ सजाया गया है, और उनका जो श्रृंगार है उसको भी आप देखेंगे। तो मंच सज्जा के ज़रिए बहुत ही खूबसूरती से इसको पेश किया गया है, तो इस शास्त्रीय नृत्य का आनंद आप बिल्कुल लीजिएगा। कोरियोग्राफी है शशिधरन नायर जी की और शोभा दीपक सिंह के डायरेक्शन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉपरनिकस रोड, मंडी हाउस, आप यहां पहुंच सकते हैं कमानी ऑडिटोरियम, जैसे कि बोला, जैसे कि आपको बताया कि यहां पर आप पहुंच सकते हैं। और समय रहेगा 3 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 सितंबर से और इसका आयोजन किया जाएगा 4 सितंबर तक। तो आप श्रीराम भारतीय कला केंद्र यहाँ पहुँचिए। ये इसका 50वां एडिशन है, क्लासिकल डांस और फोक डांस से सजा एक बहुत ही ये ख़ास शो है, जहाँ पे आपको कृष्ण को और भी जानने का मौका मिलेगा, उनकी शख्सियत से परिचित होने का एक मौका मिलेगा। तो मुलाकात होगी आपकी उनसे, तो ज़रूर जाइएगा, पहुँचिएगा इस शो में 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। बस ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा कार्यक्रमों का, लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। ये भारत की उनकी पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में ग्रीन एनर्जी सेमिनार 2026 में शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होमुर्ज के धमाकों की आवाज सुनी गई। नेपाल बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1050 हुई। 4000 लोग अब भी लापता। तलाशी अभियान जारी। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कॉर्केड रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। सरकार ने प्याज के मूल्य पर नियंत्रण के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से बढ़ाकर 2000 क्विंटल की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है,
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने में मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, और वक्त हो गया है एक रेट्रो सॉन्ग सुनने का। और आज हम जो रेट्रो सॉन्ग आपको सुनाने वाले हैं वो पूरी तरीके से साधना शिवदासानी जी के ऊपर फिल्माए गए हैं, और साथ ही साथ आज उनकी जयंती है, और इस उपलक्ष्य में हम आपको ये गाने सुना रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं उनके बारे में भी। और लव इन शिमला फिल्म से उन्होंने अपनी अभिनय की शुरुआत की थी, और मेरे महबूब आरजू, वक्त मेरा साया,

दोनों और अमानत इश्क पर जोर नहीं परख, गीता मेरा नाम जैसी फिल्में उन्होंने की हैं और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा द्वारा 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया है। और अपने बालों के स्टाइल की वजह से भी साधना बहुत प्रसिद्ध थी और उनके बालों की कट के स्टाइल को ही साधना कट के नाम से आज भी जाना जाता है। और इतनी खूबसूरत अदाकारा का ये गीत मेरे महबूब फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM Rainbow 102.6 पर।
7: दिल के तराने, गाने नए पुराने में हम धीरे धीरे आपको अपडेट भी कराते हैं दिल्ली NCR के ट्रैफिक से भी। तो आपको बताते चलें कि अगर आप विकास मार्ग पर हैं और आप ITU की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रैफिक। और उसके अलावा अगर आप मयूर विहार से चल करके सराय काले खां आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको ट्रैफिक इस वक्त मिल सकता है। और इसके अलावा नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसकी तैयारियों के मद्देनज़र मोटर कार की रिहर्सल आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। ऐसे में सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड जनपद और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात जो है प्रभावित रहेगा। तो इसलिए कम्यूटर्स को ध्यान देना होगा। अगर आप इस जगह से निकल रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से निकले और अगर आपको पहुंचना है टाइम पर तो अपने घर से थोड़ा जल्दी निकले, समय लेकर निकले। फिलहाल अभी ये गाना आप सभी लोगों के लिए।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने में आज हम आपको सुना रहे हैं एक्ट्रेस साधना की फिल्मों के गाने। और अभी जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है फिल्म मेरा साया से। और आप सभी ने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। सुनील दत्त और साधना स्टारर इस फिल्म में। साधना का रोल डबल था। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने डबल रोल किया। और यही फिल्म नहीं है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, वो कौन थी, गीता मेरा नाम, इन दोनों फिल्मों में भी इन्होंने डबल रोल किया था। मेरा साया 1966 में आई थी और सुनील दत्त के साथ एक मिस्ट्री फिल्म थी ये, और बहुत अच्छा अभिनय किया था इसमें साधना जी ने। वैसे सबसे पहले इनका जो डेब्यू हुआ था लव इन शिमला फिल्म से हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि 1955 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गीत में ईचक दाना बीचक दाना में कोरस लड़की की भूमिका में भी इन्होंने काम किया था। और यहीं कहीं से उनके मन में ये ललक बैठ गई थी कि मुझे फिल्मों में ज़रूर आना है। तो चलिए अभी हम आपको सुनाते हैं मेरा साया फिल्म से ये गाना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM Rainbow 102.6 पर।

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
0: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं, उसी की गलती थी।
2: सच बताऊं, सही लगता है, उसी की ही तो गलती थी
0: काफी हद तक, लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी।
1: तो इसीलिए फोन उठाओ
2: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
0: वरना कहते रह जाओगे।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम है। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ, और अब जो गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो एक और गाना है साधना जी की फिल्म का। और वैसे तो उन्होंने लव इन शिमला जो कि 1960 में आई थी उस फिल्म से अपनी शुरुआत की थी एज अ मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन 1958 में एक फिल्म आई थी वो थी फर्स्ट सिंधी फिल्म। जी हाँ, सिंधी भाषा में फिल्म

थी, उसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का जो करियर है वो शुरुआत की थी। अबाड़ा इस फिल्म का नाम था। 16-17 साल की थी उस समय, और हालांकि अभिनेत्री शीला रमानी जी थी, लेकिन वो उनकी छोटी बहन के किरदार में इस फिल्म में नज़र आई थी। उनकी देवानंद के साथ फिल्म साजन की गलियों में किसी कारण की वजह से थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाए, लेकिन हाँ उसके बाद इनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। लीजिए सुनिए उनकी फिल्म आप आए बाहर आए से ये गीत।

हाँ जी, हम जब आते हैं ना तो बाहर तो आ ही जाती है, लेकिन हमारे बाद भी बाहरें बहुत सी आनी बाकी हैं, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए लाइनअप हैं। आपको बताते चले कि अगला प्रोग्राम मैशलेस म्यूजिक आर होगा 10 बजे से। निहारिका होंगी आपके साथ, और उसके बाद 11 बजे प्रोग्राम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स, और श्वेता शर्मा होंगी आज आपके साथ। और उसके बाद 12 बजे प्ले इट कूल में वापस निहारिका होंगी आपके साथ। और फिर रेनबो हेल्पलाइन में आज के टॉपिक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार, लाइफ कोच की बातें होंगी श्वेता शर्मा के साथ। और स्वाति होंगी आशियाना में कपल पेस प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है हम कदम। और उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा कौन सा, जी हाँ, रेडियो डॉक्टर 3 बजे स्पेशल ऑन आई डोनेशन फ्रंट नाइट पर होगी बात। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल होंगे फॉर्मर चीफ डॉक्टर आरपीआई सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस एम्स न्यू दिल्ली से हैं ये। और 4 बजे प्रोग्राम होगा अल्फाजन, जिसमें कैंपस कॉलिंग में होंगी स्वाति गुप्ता, और फिर सुनीता शाहबादी होंगी सैटेलाइट्स जी की हलचल लेकर के। और उसके बाद मुक्ति सैनी आएंगी आपके साथ मैसेज मसाला मिक्स लेकर ठीक 6 बजे, और ज्योति हलावत 7 बजे लेकर आएंगी नॉर्थ ईस्ट यूज प्रोग्राम बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन से लेकर आएंगी आपके लिए ये प्रोग्राम 8 बजे। फिर मुक्ति होंगी म्यूजिक मस्ती लेकर के, और 9 बजे होगा आपकी याद आती रही प्रज्ञा तिवारी के साथ। उसके बाद 10 बजे प्रोग्राम ज्योति हलावत के साथ रेनबो क्लासिक्स के साथ, और 11 बजे फिर रंगे महफिल सजाएंगी प्रज्ञा तिवारी। तो ये सारे कार्यक्रम है आपके लिए लाइन अप, और अभी ये गाना आपके लिए।

हाँ जी सुन लीजिए, और अगला प्रोग्राम लेकर मैचलेस म्यूजिक आर लेकर आई है निहारिका, और मुझे दीजिए इजाजत, मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम।

0: ये कहाँ आ गए हम फ्रॉम द 1981 फिल्म सिलसिला. सो ओरिजिनली प्रवीण बाबी एंड स्मिता पाटिल वर कंसिडर्ड फॉर रेखाज एंड जया बच्चन्स रोल्स, बट देन दैट प्लान वॉज अबैंडन्ड बिकॉज द मेकर्स थॉट दे वुड नॉट क्वाइट फिट द पार्ट्स वेल. एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंगली एक्ट्रेस रेखा डिजाइंड हर ओन कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी फॉर दिस फिल्म. एंड दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज रेयर फिल्म टू बी शॉट इन एम्स्टरडैम बैक इन द 80s. दैट वॉज क्वाइट अनहर्ड ऑफ. सो दिस वॉज ऑल्सो अ ट्रेंड सेटर in that respect, because it was one of those rare films which was shot abroad, and that too in an offbeat location like Amsterdam. Silsila ye kahan aa gaye hum in the voice of Lata Mangeshkar. And up next we've got a cool track by Bonnie M, which we all love and adore like anything. But before that, we will have to take a short break. Breaks are necessary in life and on radio shows as well, so stay with us.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी.
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद. सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में.
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में. आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में.
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध.
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
6: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: She's crazy like a fool.

लीजिए पेश है इस समय के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया है। यूक्रेन पर हाल में हुए रूस के हमलों में मारे गए 12 लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल, पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राहत और बचाव सामग्री लेकर आज पांचवा भारतीय विमान नेपाल रवाना हुआ। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारकेड रिहर्सल आज दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपद और बाराखंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। सरकार ने प्याज के मूल्य पर नियंत्रण के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल तक कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषित साझा किया जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चाइना ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ। प्रोग्राम शुरू होने वाला है बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 102.6 FM रेनबो पर।

बॉलीवुड ट्रेल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मस्त मलंग आरजे श्वेता आपके साथ। बॉलीवुड की चटपटी खबरों को लेकर आ गई हूं आपके लिए, और साथ ही साथ भाई अक्षय कुमार ने क्या धूम मचा रखी है, कहां ऊंचे लंबे कद में चढ़े हुए हैं, ये सब जानना चाहते हैं तो बस मेरे साथ यानी कि मस्त मलंग आरजे श्वेता के साथ रहिए 102.6 एफएम रेनबो पर, जिसे आपने ट्यून इन किया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू बहुत सारी जगहों पर, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी।

0: और हम भी आप पे मरते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार होगी और ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
0: FM Rainbow पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कौन सा, बॉलीवुड ट्रेस। बॉलीवुड ट्रेल्स में चलिए बातचीत करते हैं अब अक्षय कुमार की फिल्मों के बारे में। एक बार फिर से अक्षय कुमार और प्रिया दर्शन जो डायरेक्टर हैं रीयूनिट हुए हैं और क्राइम थ्रिलर फिल्म हैवान के लिए। वैसे ये फिल्म शेड्यूल्ड है रिलीज के लिए जो 11 सितंबर 2026 को अभी शेड्यूल की गई है, पर हम सब जानते हैं कि अगर शेड्यूल की जाती है तो कभी कभी आगे पीछे भी फिल्म रिलीज हो जाती है। आपको बता दूं कि एक और मूवी की ना अनाउंसमेंट होने वाली है या हो गई है, यही कह सकती हूँ। बस अनटाइटल्ड है, कॉमेडी थ्रिलर है और हैवान में अगर मैं बात करूँ तो है अक्षय कुमार, सैफ अली खान, बोमन ईरानी, श्रेया पिलगांवकर और सियामी खेर जो है, ये सारे आपको कास्ट दिख जाएंगी। वेल, ये प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म ओपम की रीमेक है। काफ़ी सालों बाद अक्षय और सैफ साथ नजर आएंगे। याद है आपको कि अक्षय और सैफ इससे पहले कब साथ में नजर आए थे? कुछ याद है? अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आज का ये बॉलीवुड सरताज का सवाल नहीं है। सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। वेल, कौन कौन सी ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली है, कौन सा भूल भुलैया मैं आपको फंसाने वाली हूँ आज के सरताज बनने के लिए, वो जानने के लिए बस स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

नीरज श्रीधर की आवाज में आपने गाना सुना जिसे लिखा समीर ने और प्रीतम का ये म्यूजिक था। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स मस्मरंग आर्टिस्ट श्वेता के साथ। भूल भुलैया भी ऐसी मूवी रही है ना जिसके एक पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इस तरह से पार्ट्स बने जा रहे हैं और ऐसा ही जो है ट्रेंड बॉलीवुड में बहुत ही आम देखने को मिल जाता है। चलिए आपको बताती हूँ कि जो मैं बात कर रही थी अक्षय कुमार की और प्रियदर्शन की एक और मूवी की अनाउंसमेंट होने वाली है और इस मूवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी वैसे तो अनटाइटल्ड है जो 1960 के वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट पर बेस है। कॉमेडी थ्रिलर रहेगी और इसका नाम जो है अभी थोड़ा बहुत सुनने में आया है कि हो सकता है ये नाम हो विक्ट सनी, जिसमें अक्षय जो है एक हंटर के रोल में नजर आने वाले हैं। अब देखिए जरा अक्षय कुमार और एक हंटर के रोल में लेट 2026 या फिर जैन 2027 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। और इस फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है, जो उड़ती उड़ती खबरें आई हैं, कि अक्षय कुमार एक हंटर के रूप में तो नजर आएंगे लेकिन वो एक हंटर, एक ऐसा हंटर हो जाएगा जिसका दिल थोड़ा सा चेंज हो गया है। यानी कि अब वो चेंज हो गया है किस सेंस में, वो अब बहुत अच्छे से हो गए हैं यानी किसी जानवर को मारेंगे नहीं, या फिर कुछ ज़्यादा ही और क्रूर हो गए हैं जिसकी वजह से जंगल में कुछ ज़्यादा ही हलचल होने वाली है। ये सब जानना चाहेंगे तो बस आप एफएम रेनबो की खबरें सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी बहुत सारी खबरें। और मैंने आपसे कहा था कि भाई अक्षय कुमार और सैफ अली खान इस मूवी से पहले कौन सी मूवी में नजर आए थे, तो वो थी टशन फिल्म। हाँ जी, टशन फिल्म की बात हुई है तो उसी का एक गाना आप सबके लिए। दिल तो डांस मारता ही है ना जब आपके अपने फेवरेट हीरो हीरोइन आपके लिए सामने आते।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी मस्त मलंग आरजे श्वेता। और फिलहाल जो है ये नैन कहाँ पर जा रहे हैं हम, चलिए आपको बताती हूँ। आज है किनका हैप्पी वाला बर्थडे, और हैप्पी वाले बर्थडे के बारे में बात करें तो तोची रैना, जो बहुत ही सूदिंग से सिंगर हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं, उनके काफ़ी सारे गाने हम सबको बहुत पसंद है। तोची रैना एक फेमस भारतीय गायक है, संगीतकार और दार्शनिक है, जिन्हें ज़्यादातर सूफी और दार्शनिक गानों के लिए जाना जाता है। और अगर मैं इनकी बारे में बताऊं तो तोची रैना का जन्म आज यानी कि 2 सितंबर को हुआ था, और वो एक म्यूज़िक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके फादर हारमोनियम बजाते थे, उनकी दादी सितार बजाती थी, और उनके चाचा रतन सिंह एक फेमस वायलिन वादक भी थे। और म्यूज़िक की एजुकेशन उन्होंने दिल्ली से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के शिष्य पंडित विनोद कुमार से ली थी, और इसके साथ ही उन्होंने उस्ताद भूरे खान और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और पंडित मणि प्रसाद जैसे दिग्गजों से भी संगीत सीखा। उनके बहुत सारे फेमस गाने हैं, ये जवानी है दीवानी का कबीरा, या फिर लंदन ड्रीम्स का परदेसी, वेकअप सेट का एक तारा, और इसके साथ साथ अगर आयशा फिल्म का बात करें तो उसमें गल मिठी मिठी बोल तोची रैना का बहुत ही फेमस गाना है। तो चलिए उनकी मीठी मीठी आवाज़ में ये मीठा मीठा गाना ज़रूर सुनते हैं। और इस गाने के बाद मैं पूछूंगी आपसे आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल।

आयशा फिल्म का तोची रैना का गाया हुआ ये गाना, जावेद अख्तर का लिखा और अमित त्रिवेदी का म्यूजिक कंपोजिशन। और अब आपसे पूछती हूँ आज का बॉलीवुड सेट आज का सवाल। तो रेडी हैं आप सब? अगर रेडी हैं तो ठीक है, जल्दी से पूछती हूँ आपसे आज का सवाल। आज का सवाल जो है वो भी रिलेटेड है तोची रैना जी से। बस मुझे जल्दी से बता दीजिए कि तोची रैना जो बहुत ही फेमस सिंगर हैं, उन्होंने अपना बॉलीवुड का डेब्यू सॉन्ग कौन सा गाया था, यानी कि तोची रैना का डेब्यू सॉन्ग कौन सा था बॉलीवुड में। जल्दी से मैसेज कीजिए 9868107070 पर, अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ उसे भेज दीजिए, फिल्म का नाम भेजिए और सॉन्ग का नाम भी जल्दी से भेज दीजिए 9868107070 पर। तब तक आप रेखा भारद्वाज और तोची रैना की ही आवाज़ में सुनिए ये अगला गीत, जिसमें एक अलग ही अंदरूनी सा, मतलब बहुत ही सुकून सा इस गाने में, अमित भट्टाचार्य का लिखा हुआ है और प्रीतम का म्यूजिक है। वैसे तोची रैना के बारे में एक आपको बात बता देती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ कविताएं और दर्शन यानी फिलोसफी पर आधारित गाने गाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उनका ऐसा मानना है कि अगर वो कोई ऐसे गाने गाएंगे जिसमें जिसे वो अपने परिवार के साथ ना सुन सके, तो ऐसे गाने गाने से कोई मतलब नहीं है।

दौड़ में अपने आप को शामिल कर लिया है। और मैं बात कर रही हूँ फिल्म हनुमान अंश पर, यानी कि एक ऐसी फिल्म जो बनी हुई है बायोग्राफिक। और भाई अगर मैं बात करूँ कल की मंगलवार की, तो मंगलवार को खेला कमाई का ज़बरदस्त दंगल जो है वो दिखा है, बजरंगबली की कृपा हुई है हनुमान अंश पर, यानी कि कल मंगलवार को। बाबा नीम करोली की बायोपिक के तौर पर मौजूदा समय में फिल्म हनुमान अंश सिनेमाघरों में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। और इस मूवी ने कमाई के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है जिसे बॉलीवुड के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। रिलीज के 26वें दिन, हाँ जी रिलीज के 26वें दिन हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का जबरदस्त दंगल खेला है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की इस मूवी पर सच में बजरंगबली की कृपा बरस रही है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर 26वें दिन के कलेक्शन की रिपोर्ट क्या है। वैसे तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने बिजनेस के मामले में जो पासा पलटा है ना, वो वाकई देखने लायक है। और वीकडे में जारी ये पासा जो है वो पलट चुका है। सेकंड इसकी अगर मैं रिपोर्ट्स के बारे में बताऊं तो 26वें दिन हनुमान अंश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 54% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए ये फिल्म देखने के लिए। 2 करोड़ रुपये के आसपास का बताया जा रहा था इसका बजट, और इसकी टोटल कमाई अब तक 55 करोड़ के करीब पहुंच गई है, और जिसके आधार पर मूवी ने अपनी लागत से 27 गुना ज्यादा बिजनेस करके सभी को सरप्राइज कर दिया है। आने वाले दिनों में इसकी कमाई का आंकड़ा और भी अधिक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। भाई एक बात हो रही है हनुमान अंश की, तो सियाराम का नाम तो लिया ही जाना चाहिए।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार होंगी और ढेर सारी बात। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: एवरी ग्रेट जर्नी, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग।
0: आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और रेनबो पर फिलहाल जो है, मैं आपसे एक बार फिर से पूछ लेती हूँ सवाल जो आपसे पूछा है कि हमारे प्यारे से जो तोची रहना है, उनका बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग कौन सा था? जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए 9868107070 पर।

0: धूम 3 का ये गाना सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज में, समीर अंजान का लिखा हुआ और प्रीतम का म्यूजिक। भाई ये मैंने गाना क्यों प्ले किया आप जानना चाहते होंगे, है ना। कोई ये तो ऐसा है नहीं कि धूम मचा रखी है कि हर किसी ने, तो यहाँ पर धूम ने भी धूम मचाई हुई है। बता देती हूँ आपको, धूम 4 यानी कि 2027 में रिलीज होगी या नहीं होगी। हाँ, आमिर खान एज मेन लीड विद सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ। धूम 3 के डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य, इन्होंने यही जो है ना फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये धूम 4 की उड़ती हुई खबर कितनी सच होगी और कितनी सच नहीं होगी। वैसे तो जितने भी धूम की फिल्म देखने वाले हैं, जितनी भी ये सीरीज आई है, इसकी धूम 1, 2, 3 और 4 के बारे में तो ना जाने कितने सालों से कयास लगाया जा रहा था कि ये रिलीज होने वाली है। अब देखेंगे कि कब होने वाली है ये रिलीज। फिलहाल मैं ये रिलीज कर देती हूँ कि आज के हमारे बॉलीवुड सरताज बन चुकी हैं और उन्होंने दे दिया है सही जवाब। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ,
0: आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है निकिता पारेकर।
0: निकिता, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ है। मैंने सवाल पूछा था कि भाई तोची रैना का डेब्यू सॉन्ग कौन सा है बॉलीवुड में, क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे, तो सोचा उन्हीं से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाए। तो क्या सही जवाब है?
1: बुल्ले शाह सॉन्ग फ्रॉम वेंटी मूवी।
0: बिल्कुल सही जवाब, और आपके लिए ये बजती हैं तालियां। तो निकिता, क्या करती हैं आप पूरा दिन? क्या रेनबो के साथ जुड़ी रहती हैं?
1: हाँ, सुबह से तो जुड़ी रहती हूँ।
0: ओके, और आप बॉलीवुड सरताज कितनी बार बन चुकी
1: हैं? कोर्स भी कर रही हूँ,
0: तो बताइए जरा।
1: स्टडी करती हूँ।
0: अरे वाह, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से इसी तरह से पढ़ते भी रहिए और स्टडी करती रहिए। मुझे ये बता दीजिए कि बॉलीवुड के जो सरताज आप अगर बन गई हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है इस वक्त?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार बनी है या इससे पहले भी बन चुकी हैं?
1: इससे पहले भी बनी थी।
0: चलिए ठीक है, एक बार और बनने के लिए बॉलीवुड सरताज आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच निकिता, इसी तरह से रेनबो के साथ जुड़े रहिए।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। तो ये थी निकिता और हमारी बनी है ये आज बॉलीवुड सरताज। और दोस्तों, अब एक खास सूचना। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 3 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है और इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने के या उसमें सक्षम हों, तो कृपया मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8010-1469-44। संपर्क करने के लिए एक बार नंबर दोहराना, आप दोबारा सुन लीजिए 8010-1469-44। आपका रक्तदान किसी का जीवन

तो ये था सही जवाब, बुल्ले शाह तोची के द्वारा गाया हुआ एक गाना। और एक बार फिर से तोची रैना को हैप्पी वाला बर्थडे। और जाते जाते आप सबके साथ एक बात और शेयर कर जाती हूँ कि डायरेक्टर कुणाल खेमू एक बार फिर से तैयार है फिल्म मदगांव एक्सप्रेस 2 की शूटिंग के लिए, जो फैब या मार्च 2027 में शुरू होगी उनकी अपनी ओरिजिनल मेन कास्ट के साथ। फिलहाल यहीं पर ही मस्त मलंग आरजी श्वेता को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो एंड हाय गुड आफ्टरनून, हियर विद मी निहारिका ऑन प्लेट कूल। इट्स 12:03 PM बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड टुडे ऑन प्लेट कूल वी आर टॉकिंग अबाउट फूड। फूड हैपेंस टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी डे। इन फैक्ट इट्स समथिंग दैट वन लुक्स फॉरवर्ड टू द मोमेंट दे वेक अप एंड आई नो यू आर इन अग्रीमेंट विद अस ऑन दैट। सो दिस कॉन्वर्सेशन अराउंड फूड इज गोइंग टू अज्यूम अ लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स एंड टॉपिक्स विद इन दिस लार्जर टॉपिक टुडे। सो द लार्जर टॉपिक इज दैट September is observed as National Nutrition Month in our country. It's also known as Rashtriya Poshan Maah. And one of the focuses, one of the goals and aims of the National Nutrition Month is to advocate for healthy eating, to propagate healthy eating practices, and to educate young children, pregnant women, and lactating mothers about healthy eating.

0: Well, that was Savage Garden with 1,000 Years on Plate Cool this afternoon. And before we can move forward with our conversation around food and healthy eating habits, there is a very important piece of announcement and information that must reach the right ears. A 3-year-old patient has been admitted in New Delhi AIMS and is in urgent requirement of blood. Any blood group would do. And this patient has been suffering from leukemia, or popularly known as blood cancer. Any blood group would be okay at this point of time. In case you find yourself around that area, in case you find yourself in a position to donate blood, you can reach out on the following mobile number: 8010146944. Let me repeat that for you: 8010146944. Any blood group is okay at the moment, so you can call on this number and let them know if you're in a position to donate blood. After all, if we find ourselves in a position to help somebody, we must grab that chance and grab that opportunity. And with that, we now transition into a short commercial break. We'll see you with the music on the other side of this break. Stay tuned. You're with us on Akashwani FM Rainbow.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Akashvani आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, लीजिए पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया है। यूक्रेन पर हाल में हुए रूस के हमलों में मारे गए 12 लोगों में से एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राहत और बचाव सामग्री लेकर आज 5वां भारतीय विमान नेपाल रवाना हुआ। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कारकेड रिहर्सल आज दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। सरकार ने प्याज के मूल्य पर नियंत्रण के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चाइना ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। तो ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: ये है आकाशवाणी रेनबो और ये शो है रेनबो हेल्पलाइन। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग पर, आर्ट है ये और इस आर्ट को समझना हम सब पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आर्ट को नहीं समझा तो हमारे आने वाले जो भविष्य की पूंजी है, धरोहर है हमारे बच्चे, वो आखिर अच्छे बच्चे कैसे बन पाएंगे और देश का भविष्य, अपना भविष्य उज्जवल कैसे बना पाएंगे। और अभी हम सब पेरेंट्स के लिए क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप किन चीजों से जूझ रहे हैं, पेरेंटिंग में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, अगर आपको आ रही हैं तो आपके सवालों का भी हम सब वेलकम करेंगे। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर योगेश कुमार, जो कि लाइफ कोच हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: तो आज हम बात करने वाले हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज कल

0: समझना बच्चों को और बच्चे पेरेंट्स को समझे, ऐसा क्यों है कि आजकल ये ज्यादा समस्या आ रही है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
1: देखिए, आजकल समस्या इसलिए ज्यादा आ रही है बच्चों को लेकर, क्योंकि आजकल है इंटरनेट का युग, तकनीकी युग है, तो कई कंटेंट इंटरनेट पे ऐसे होते हैं जो बच्चों की जैसे उम्र कम है, वो कंटेंट वो देख रहे हैं, उसमें दिमाग में उनके मन में उससे जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। और कभी जब हम स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी बॉडी में मैग्नीशियम्स की कमी हो जाती है, ये ऐसे बायोकेमिकल्स हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है तो बच्चों में इंसोम्निया हो जाता है, एग्रेशंस बढ़ जाता है और बहुत थका थका महसूस करने लगते हैं और उनका जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाता है।
0: यानी जो स्क्रीन टाइम है इसकी वजह से थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं।
1: जी जी,
0: चैलेंजेस तो हमेशा रहे होंगे शायद, लेकिन इस वक्त ज्यादा आ रहे हैं और शायद जैसा आपने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं हम आज आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर, लौट कर आते हैं।

0: हमेशा बापू टॉर्चर करते हुए क्यों नजर आते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि बापू मम्मा जो भी कह रही हैं, मतलब आपके पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो तो टॉर्चर है घना, और सभी बच्चों के दिमाग में आता है एक टाइम पे तो जरूर आता है, आपके दिमाग में भी आया होगा, हमारे दिमाग में भी आया था कि हमारे पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बाकी सबके पेरेंट्स बहुत लीनियंट है और बहुत अच्छे से प्यार से पेश आते हैं। और ये बहुत बाद में समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स तो सबसे अच्छे थे और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें अगर टॉर्चर नहीं किया होता, या कह सकते हैं उस समय जो टॉर्चर लग रहा था वो डिसिप्लिन में नहीं रखा होता, तो हम शायद वो नहीं बनते जो आज हम हैं। लेकिन जब तक रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कई बार हम बहुत कुछ उल्टे सीधे जो फैसले हैं वो ले चुके होते हैं। तो ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट योगेश जी से समझते हैं, जो कि लाइफ कोच है, कि ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है क्या, हमें भी समझाइए।
1: देखिए, हम पेरेंटिंग को आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरेंटिंग जब हम परवरिश कर रहे होते हैं बच्चे की, कोई ऐसा स्टाइल नहीं, कोई ऐसा मेथड नहीं कि हम वो अप्लाई करेंगे तो वैसा एक स्पेसिफिक आउटकम निकलेगा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और एक सतत प्रयास की प्रोसेस है पेरेंटिंग। और इसलिए पेरेंट्स को कभी निराश नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स को अपने शब्द कार्यों पे, अपने आचरण पे अपने आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके शब्द होंगे, जैसा आपका कार्य होगा, जैसा आपका आचरण होगा, वैसे ही बच्चे बनेंगे। इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक मेथड्स नहीं है पेरेंटिंग में, इसलिए हम इसे आर्ट कहते हैं। अगर मैं पेरेंटिंग को सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के पालन पोषण से लेकर और बच्चों को संवेदनशील, मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनाने तक जो भी पेरेंट्स के प्रयास हैं वो पेरेंटिंग के दायरे में आते हैं। और पेरेंटिंग के अंतर्गत जो है माँ बाप के काफी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें बच्चों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके खान पान का ध्यान रखना, एक ऐसा हेल्दी वातावरण तैयार करना ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनको भाषा कौशल भी सिखाना और बच्चों का नैतिक विकास भी करना, और सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है कि उनको सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, जो कि मैं देख रहा हूँ ना स्कूल इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ना घरों में इसका परिवारों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब तक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब तक हमारे देश में अमन और शांति नहीं रह सकती।
0: सर, क्योंकि आपके पास बहुत तरह के पेरेंट्स आते होंगे और बहुत सारी काउंसलिंग करते हैं आप, और वैसे भी जो देखने को मिलता है जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, तो क्या इतना प्रोटेक्टिव होना ठीक है या आज की जरूरत है? क्योंकि आज वातावरण भी इस तरह का नहीं है कि बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दी जाए, या अपना इंडिपेंडेंट बनने के लिए उनको कहीं भी भेज दिया जाए, या छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें सोचना पड़ता है बच्चों को अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में किस तरह से हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को, कि बच्चे सोशली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी बने, अपनी चीजें करने के लिए इंडिपेंडेंट भी बने, और साथ में वो सुरक्षा भी उनके लिए बहुत जरूरी है, तो किस तरह से इसको हैंडल करें?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं।
0: हाँ।
1: उनको सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं ताकि उनको जरा सा भी कष्ट ना हो, पर मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ बैलेंस अप्रोच रखनी है। और जैसा कि मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर किसी भी पौधे को अगर धूप में नहीं हम रखते हैं, उसे बिल्कुल छांव में रखा जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, और अगर हम दूसरे पौधे को अगर हम बहुत ही धूप में रखते हैं तो हमने देखा है कि वो सारे मौसम की मार झेल लेता है। इसी तरह पेरेंटिंग का है, पेरेंटिंग अगर हम बड़े ओवर प्रोटेक्टिव मैनर में करेंगे, वो बच्चों को सुख सुविधाएं देंगे, तो बच्चा आपका आगे चल के कमजोर भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम उनको रेजिलेंस सिखाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं, और उनको लाइफ कोपिंग स्किल सिखाते हैं, और उनको ये सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे मुस्कुराया जाए, कैसे धैर्य रखा जाए, और उनको ये भी सिखाते हैं कि लाइफ में जोखिम लेना भी कितना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में विकास तभी कर सकते हैं तब आप ऑप्टिमम अमाउंट में जोखिम भी लेना, रिस्क लेना भी आप जानते हैं। तो इससे जो आपका जो बच्चा होगा आगे चलकर एक मजबूत इंसान बनेगा।
0: और वही चीज है कि हमें कई बार यही बैलेंस नहीं पता होता है कि कितनी दूर तक हमें प्रोटेक्ट करना है, किसके बाद हमें छूट देनी है, और यहीं पे कई बार गड़बड़ हो जाती है। सर, स्टाइल्स होती हैं पेरेंटिंग के, कई बार हर बच्चा डिफरेंट है, क्या स्टाइल्स होती हैं और किस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए, पेरेंटिंग स्टाइल पर थोड़ी सी बात करिए।
1: देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेनली 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स जो बताए हैं, तो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले

0: अथॉरिटेरियंस, थोड़ा ये डिक्टोरियल्स टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल्स है। इसमें जो आप बाउंड्रीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट बनाते हैं, बड़े सख्त बनाते हैं, एंड देयर इज नो रूम फॉर कम्युनिकेशन एंड नो रूम फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड नो रूम फॉर मिस्टेक।
1: कह दिया तो कह दिया,
0: कह दिया तो कह दिया।
1: हाँ।
0: ना तो बच्चे के साथ आप हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, और उसे बिल्कुल वो नहीं होता है कि आप वो थोड़ी सी भी मिस्टेक जो ट्रायल और एरर मेथड से बच्चे सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनकी बिल्कुल जो क्रिएटिविटी वो क्रश कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि पेरेंट्स इसमें सीवियर पनिशमेंट भी देते हैं बच्चे को, जिससे उसका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत गिर जाता है। पर इसका आउटकम क्या निकलता है कि जब वो बड़ा होता है तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल जो है पर्सनैलिटी में वो तब्दील नहीं होता है, और क्रिएटिव बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो सही ढंग से ले नहीं पाता है, क्योंकि वो रिजिड बाउंड्रीज में रहा। क्या उसके लिए सही है क्या गलत है माँ बाप ही सोचते आए, तो वो आगे चलकर ये बिल्कुल उसमें जो जजमेंट करने की डिसीजंस लेने की जो क्षमता है उसकी बिल्कुल परिपक्व नहीं हो पाती है। और दूसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल आता है वो आता है अथॉरिटेटिव। ये अथॉरिटेरियंस था, इसमें डिफरेंस थोड़ा माइनर सा है तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला हमने अथॉरिटेरियन डिस्कस किया, अब अथॉरिटेरियन, ये जो है बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है पेरेंटिंग स्टाइल्स की। इसमें एक रीजनेबल बाउंड्रीज बनाई जाती है, बहुत रिजिड नहीं होती, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और बच्चे को ये भी होता है वो अगर मिस्टेक करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाता, माँ बाप इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं, उसको कम्युनिकेशन भी उसके साथ हेल्दी करते हैं। तो ये सबसे अच्छा अब तक का बहुत अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल्स माना गया है, और इससे जो बच्चा बनता है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल बनता है, बहुत क्रिएटिव बनता है और बहुत जिम्मेदार बनता है।
1: ओके,
0: अब हम आते हैं, एक है परमिसिव, उसमें क्या होता है बड़ा इंडल्जेंट पेरेंटिंग लाइफ स्टाइल्स होता है, जिसमें बच्चे की सारी चाहे वो डिजायरेबल हो अनडिजायरेबल जितनी भी डिमांड्स हैं सारी फुलफिल की जाती हैं। और ये ऐसे पेरेंट्स में ज्यादा होता है जिन्हें बचपन में खुद जिनको अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग लाइफ स्टाइल के अंतर्गत जिनकी परवरिश की जाती है।
1: okay.
0: तो वो अब रिबेल कर देते हैं, वही पेरेंट्स वो कहते हैं यार हम तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहे, अब मैं अपने बच्चे को जरा से भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। पर ये भी बहुत गलत जो है सोच है, क्योंकि इससे भी जो बच्चा है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटीज में जो है तब्दील हो जाता है, कि जब आप बिल्कुल उसे ओवर इंडल्जेंट कर देते हैं, उसकी सारी डिजायरेबल डिमांड्स हो चाहे अनडिजायरेबल डिमांड्स हो आप जब सारी फुलफिल कर देते हैं। और उसमें एक बात और आती है, हमेशा गिव अप कर देता है, क्योंकि जरा से भी जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रहा जिसमें उसकी सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रही, इसलिए जरा सी भी जब वो अभाव महसूस करता है जीवन में, चैलेंजेस महसूस करता है तो वो गिव अप कर देता है। फिर सबसे लास्ट में आता है नेग्लेक्टफुल, जिसे कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। इसमें बच्चे के साथ पेरेंट्स बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल इमोशनल सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनका जो बच्चे के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बिल्कुल इंडिफरेंट होता है, उदासीन होता है। तो ऐसे बच्चे भी आगे चल के बड़े डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि जो इमोशनल वार्म्थ है इमोशनल बॉन्डिंग से उनका उनको एहसास ही नहीं होता है। तो आगे चल के जब उनकी मैरिज भी होती है तो वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी वो उदासीनता दिखाई देती है।
1: हाँ।
0: तो इसलिए सबसे अच्छा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेरियन है, बैलेंस्ड है, जिसमें रीजनेबल बाउंड्रीज होती है और फ्रीडम के साथ साथ उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाया जाता है।
1: तो आप ध्यान से सुन रहे हैं ना कि क्या होती है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। आप सुन रहे हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग टॉपिक पर रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी।

0: पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बच्चे कहते हैं कि हमसे उम्मीदें ज्यादा लगाई जा रही हैं। और बाद में जब वो खुद पेरेंट बनते हैं तो शायद उनको समझ में भी बातें आती हैं, लेकिन अब उस वक्त कौन समझाए जब उनको ऐसा लग रहा होता है। इसके लिए ये शो है। तो आज हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर बात कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इस शो को सुने, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पे कमी कर देते हैं या किस तरह की गलतियां कर देते हैं जिससे सीख ले सकते हैं। आप सब भी अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, और कुछ भी अगर आपको जानना है तो वो जानेंगे ही, साथ में आपके सवाल से और सारे लोग भी रिलेट करके अपने आप को सुधार सकेंगे, करेक्ट कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फोन करना है 2342108023421084 पर, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए 9868107070 पर। फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश कुमार जो कि हैं लाइफ कोच, और मेरे पास सवाल भी है जो बहुत जरूरी है और इसी तरह की हम बात करने की भी सोच रहे थे सर। तो एक सवाल आ गया है नांगलोई से, ये दिल्ली में है, जो सुदेश सिंह का, और इन्होंने लिखा है कि मैंने भी बच्चों के साथ यही किया कि उनको कभी कमी महसूस नहीं होने दी किसी तरह की, उनका जो फोन है वो छुड़वाना या लेट तक सोना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते, 18 साल का बेटा है और बात इतनी बढ़ गई है कि अब बोलने से भी डर लगता है कुछ गलत कदम ना उठा ले बच्चा। तो इस समस्या का समाधान बताइए प्लीज।
1: देखिए, ये तो आजकल बहुत कॉमन समस्या बनती जा रही है, मेरे पास भी काफी

0: पेरेंट्स आते हैं वो यही बात करते हैं कि मोबाइल के कारण जो है उनकी सारी लाइफ बच्चे की डिस्टर्ब हो रही है और वो पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता है। तो अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो किसी अच्छे काउंसलर के पास ले जाइए, तो वो जैसे हम भी समझाते हैं कि जब आप ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं या फोन का प्रयोग करते हैं या ज्यादा बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो सबसे पहले उसमें मैग्नीशियम्स की कमी होती है। जब मैग्नीशियम्स की कमी होती है तो एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक बायोलॉजिकल बेसिस है एनर्जी के लिए वो भी नहीं बन पाता है, जिससे बच्चे का एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। इससे वो मेंटल वेरीनेस का भी शिकार होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है जिसके कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। और उसको मोटिवेट करिए कि आउटडोर गेम्स खेले। ऐसे बच्चे जिनकी कुछ हॉबीज होती है जो फुटबॉल खेलती हैं क्रिकेट खेलती हैं, तो ऐसे बच्चे जो है फोन की ग्रिप में कम आते हैं। फोन की ग्रिप में वो बच्चे आ रहे हैं जो आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे, जिनकी कुछ हॉबीज नहीं है, तो इस चीज को भी समझिए। फिर उनको ये भी समझाना जरूरी है क्योंकि मोबाइल में वो बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हैं जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं या किसी टाइप का थ्रिल या एक्साइटमेंट चाह रहे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूँ कि एक्साइटमेंट और फुलफिलमेंट में बहुत ही अंतर है। एक्साइटमेंट बहुत ट्रांजिटरी होता है और जो फुलफिलमेंट होता है वो आपका एवरलास्टिंग है। और जो फुलफिलमेंट जीवन में अगर प्राप्त करना है तो आपको अपनी हॉबीज कल्टीवेट करनी होगी और आपको अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना होगा। आप जितना लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएंगे, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का, अपनी प्रतिभाओं का विकास करेंगे, तो आपको अपने जीवन में फुलफिलमेंट मिलेगी। और आप ये जो छोटे मोटे क्षण भंगुर ट्रांजिटरी जो एक्साइटमेंट है जो आपको फोन के माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से वीडियो गेम्स के माध्यम से मिल रहे हैं, उनके प्रति जो आपका रुझान कम होता चला जाएगा।
1: सर, जैसे आपने कहा कि स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए, लेकिन अभी जो जिस तरह की स्कूलिंग है या जिस तरह से कॉलेजेस हैं वो अपना होमवर्क भी ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब हम अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हाथ में मोबाइल ना जाए या गैजेट्स ना जाए, तो ऐसे में वो कब अपना काम करते करते किस तरह से वो वीडियो गेम खेलने लग गए या कुछ और देख रहे हैं, हम 24 घंटे उन पे नजर नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में तो समस्या पेरेंट्स के लिए बढ़ जाती है। तो क्या कर सकते हैं? उनको हमने बहुत समझा रखा है, उनकी जो एक्साइटमेंट है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उसका लेवल कुछ ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे में उनको हैंडल करना पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है और मेरे ख्याल से हर पेरेंट के लिए इस वक्त यही प्रॉब्लम है।
0: जी, अगर हम उनको इसमें डिफरेंस समझाएं कि इसकी यूटिलिटी क्या है, जैसे आपने कहा कई होमवर्क होता है जो फोन के माध्यम से, और कोरोना टाइम में भी हमने देखा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा, पर उसमें मजबूरी थी थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ना, और उसमें भी हमारे पास बच्चे आते थे तो हम उनको यही कहते थे कि जब आप पढ़ते वक्त अगर आपका स्क्रीन टाइम आपकी मजबूरी है तो उसके अलावा आपको आउटडोर गेम्स भी खेलने हैं और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और प्रॉपर नींद लेनी है, ताकि जो स्क्रीन टाइम बढ़ने से उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी या माइंड से कम हो जाए।
1: चलिए ठीक है, ये समस्या हम किसी लेवल तक हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है तो। और एक बहुत बड़ी समस्या आती है सभी पेरेंट्स की लाइफ में, वो होता है कि एक टीन एज आती है बच्चों की, जिसमें उनके अंदर कितने सारे जो चेंजेस आते हैं उससे वो बच्चे तो खुद परेशान होते ही हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा उनके बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में बैलेंस कर पाना पेरेंट्स के लिए कि किस तरह उनके साथ बिहेव किया जाए, कितना बोलना है और किस समय बोलना है, किस तरह से उनके मूड स्विंग्स का ध्यान रखना है, उस पर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए आपकी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंस जवाब दे जाता है पेरेंट्स का भी।
0: जो टीनेजर एज है वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है, इसलिए उनमें काफी हार्मोन चेंजेस भी आते हैं, और आपने देखा कि होगा कि टीनेजर इज मार्क्ड बाय द प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स में उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी में हम देखते हैं कि बॉयज में पब्लिक हेयर और ये सब आ जाते हैं। तो इतना हार्मोन्स का पेवल चल रहा होता है तो इसके कारण ही उनमें मूड स्विंग्स होता है, और इसमें ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बड़े आर्गुमेंट्स करने लगते हैं, और जो भी अथॉरिटी फिगर होती है ये भी देखा गया है उनमें गलतियां उनको नजर आने लगती हैं।
1: हाँ।
0: जो भी पेरेंटिंग फिगर है, जो अथॉरिटेटिव फिगर है, उनको फॉल्ट जो है वो निकालने लगते हैं और बहुत ही गुस्सा भी आता है, एरोगेंट भी हो जाते हैं। तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड टीनेजर इज मार्क्ड बाय द एक्सेसिव इमोशनैलिटी, बहुत जल्दी मूड स्विंग होगा और इमोशन चाहे वो सैडनेस की हो तो एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, अगर वो केयर फ्री इमोशंस हैं वो भी एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। इसलिए देखा है कि आपने टीनेजर्स को अगर आप बाइक देते हैं, कार देते हैं, तो आप देखा है कि हमेशा वो रश ड्राइविंग करते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ऐसे में बहुत धैर्य के साथ उनकी जो है काउंसलिंग करने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है और उनसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होना। अगर आप खुद ही रिएक्टिव वे में काम करेंगे पेरेंट्स, तो दिक्कतें वहां आती हैं कि जब पेरेंट्स भी इम्पल्सिव हो रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चे के साथ रिएक्टिव हो रहे हैं और घर का माहौल बिगड़ रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपको जब आप जान रहे हैं कि ये नहीं बोल रहा है, इसकी जो बायोलॉजिकल जो अंदर से डिस्टरबेंस हो रही है वो इससे बुलवा रही है, तो आप पर उसकी बातों का जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा पेरेंट्स पे, तो आप धैर्य पूर्वक उसे हैंडल कर पाएंगे। और जब भी आप देखें कि उसका मूड अच्छा है और उससे थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करिए, आप जितना उससे कनेक्ट होंगे तो आप देखेंगे वो अपने आप को सेफ पाएगा आपकी कंपनी में और आपसे अपने सारे दिल की बात बोल देगा। तो इससे आप उसकी अच्छे ढंग से काउंसलिंग कर सकते हैं, अच्छे ढंग से उसे समझा सकते हैं।
1: तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, किस एज में ध्यान रखनी है और क्या क्या ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। और यही है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, जो कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार लाइफ कोच हैं, वो बता रहे हैं। आज लौट कर आते हैं और इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको बतानी है, जो आपके 10 रूल जिनकी बात कर रहे थे वो तो कमाल के हैं, उन पर भी चर्चा करनी है कि आखिर वो 10 गोल्डन रूल कौन से हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे पेरेंट्स की सूची में आ सकते हैं। तो उसको जरूर सुनिएगा, लौट कर आते हैं थोड़ी देर में।

0: हैं आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। इस वक्त मैं आपके साथ हूं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार जो कि लाइफ कोच हैं और आज हम बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर। सर, गोल्डन रूल्स सभी जानना चाहेंगे कि क्या है पेरेंटिंग के, और आप प्लीज उनको डिटेल में बताइए ताकि हम सब भी अच्छे पेरेंट बनने की जो एक कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़े से और कामयाब हो सकें।
1: देखिए, पहला तो गोल्डन रूल ये है कि हमें बच्चों का बहुत ज्यादा दमन भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा उनको आजादी भी नहीं देनी है, बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा भी नहीं करनी है। तो एक संतुलित अप्रोच जो है वो हमें परिवेश में बना के रखनी है जब हम पेरेंटिंग कर रहे हों। देखिए, जब वीणा के तार जब आप ज्यादा कस देते हैं तब भी संगीत पैदा नहीं होता है, ज्यादा ढीला छोड़ देते हैं तब भी संगीत पैदा नहीं होता है। अगर बच्चों के जीवन में अगर आप चाहते हैं संगीत रहे, माधुर्य रहे, तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। इसमें मैं कहूंगा कि मॉडरेशन इज वर्चू, ठीक है। दूसरी अप्रोच है कि उनको अनकंडीशनल लव करें। मैंने देखा है कि अगर आपका बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा पेरेंट्स का तो उससे वो अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, हमेशा उसे डांटते रहते हैं कि तेरे कम मार्क्स क्यों आते हैं। तो आप अगर उसे अनकंडीशनली लव करेंगे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है अपने इंट्यूशंस की, इनर अर्जीज की ज्यादा सुनेगा। और मैं कार्ल रॉजर्स की यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा सब में एक जो है सेल्फ एक्चुलाइजिंग टेंडेंसी होती है, ये एक इनबिल्ट मोटिवेशंस है, एक अर्ज है जो सभी लाइफ फॉर्म में पाया जाता है कि अपनी क्षमताओं का विकास वो अपने हर संभावना के साथ पूर्ण दक्षता के साथ करे। तो ये जो सेल्फ एक्चुलाइजिंग टेंडेंसीज दब जाती हैं जब आप बच्चे को जो है कंडीशनली लव करते हैं कि ये करोगे तो मैं तब आपको ये प्रेज करूंगा या आपको कोई गिफ्ट लाके दूंगा, तो आप जरूरी हो जाता है कि अनकंडीशनली लव करें। और फिर है कि उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्टअप करने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि एज ए काउंसलर मैं बता रहा हूँ कि जो पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल इज लिंक टू द सेल्फ एस्टीम। जिस बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है वो स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो उससे पूछिए, उसका जो है कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश कीजिए, उसे डांट के उसकी सेल्फ एस्टीम और कम करने की कोशिश मत कीजिए। फिर आपका आता है कि आपको उसका मोरल बूस्टअप्स करना है, उसे सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है, उसे ये सिखाना है कि बाहर की चुनौतियां जो हैं वो इतनी वो नहीं होती कि जितनी हमारे अंदर की कमजोरी। अगर हमारे अंदर की कमजोरियों को हम दूर कर लेंगे तो बाहर की चुनौतियों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब हम अनुशासन से जीवन जीते हैं। क्योंकि टुडेज बिटरनेस आर टुमारोज नेक्टर। आज आप अनुशासन का पालन कर लेंगे, आज एक कठोर एक व्रत ले लेंगे, तो आप देखेंगे आगे चल के जो आपका जीवन है और खुशहाल होता चला जाएगा।
0: सर, हम समझाते तो हैं बट बच्चे समझे, ये डिपेंड करता है बच्चे पे, कई बार ये हो जाता है।
1: मैं वही कहता हूँ कि पेरेंट जो है हमेशा करेक्ट करने की, ये मत करो वो मत करो, मैं करेक्ट करने से ज्यादा जरूरी है उनके साथ कनेक्शंस बिठाना, उनके साथ कनेक्ट होना। क्योंकि आप बच्चों के साथ जितना कनेक्ट होते हैं वो आपके साथ अच्छा एंजॉय करते हैं, सेफ फील करते हैं और आपको अपने मन की बात बताते हैं। और जो सबसे गलत जो चीज हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। वो देख तेरे चाचा का लड़का इतना होशियार है, वो देख गुप्ता जी की लड़की देख कितना होशियार है, तुझे हम इतनी सुख सुविधाएं देते हैं, सारी चीज दे रहे हैं और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपैरिजन्स करना जो बच्चे का किसी के से भी उसकी सेल्फ एस्टीम पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हमने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और फिर जरूरी है कि उसे एक स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दें, एंड लर्निंग प्रोसेस शुड बी मेड सो जॉयफुल एंड एक्सिलरेटिंग दैट लेटर ऑन द चाइल्ड कैन सेक्रीफाइस, विलफुली सेक्रीफाइस मटेरियल कम्फर्ट्स फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी।
1: जी मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, किरोड़ी लोनी जिला का जगह।
0: जी बताइए।
1: मैं सर से ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि बच्चे होते हैं 6-7 साल 8 साल के, किसी बात के लिए हम उनको समझाते हैं तो वो गुस्सा करने लगते हैं, सामान तोड़ने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, तो इसके लिए हम किस जगह दिखाएं, क्या करें?
0: इतना एग्रेसिव बच्चे कई बार हो जाते हैं कि वो सामान तोड़ने लग जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं।
2: देखिए, एक तो उनका रूट कॉज जो है एंगर का, वो जानने की कोशिश करिए। कभी मैंने देखा है कि कई बच्चों में काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और दूसरी सरदर्द की समस्याएं होती हैं। पहले तो छोटे, आप 6-7 साल के बच्चे के लिए कह रहे हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो इसके रीजंस कभी कभी मैंने देखा फिजिकल एलिमेंट में छुपे होते हैं। आप बच्चे को अगर सही ढंग से अटेंशन भी नहीं दे रहे होते हैं, अगर बच्चे को लगता है कि उसके पेरेंटिंग्स में कहीं ना कहीं इमोशनल वार्म्थ की कमी है, तो ऐसे बच्चे में भी इरिटेशन आ जाती है। जो 6-7 साल की एज बहुत कम होती है, ऐसे बच्चे को माँ बाप का अगर प्यार चाहिए। और दूसरे रीजंस जो देखिए, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक रीजंस तो मैं कहूंगा कि ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी ऐसे बच्चे आते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे में फिजिकल एलिमेंट या पेरेंटिंग में जो इमोशनल वार्म्थ की कमी है, उस कारण भी ये सारी चीजें हो सकती हैं।
0: सर एक सवाल आया है देविका का राजस्थान से, इन्होंने कहा है कि इनकी भतीजी, दो भांजे हैं और फोन के लिए वो रोने लग जाते हैं, और उनकी भतीजी का तो ये हाल है कि फोन के बिना खाना नहीं खाती, और ये इनके साथ ही क्या बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चे आजकल फोन के बिना खाना नहीं खाते, क्योंकि खाना नहीं खा रहे होते हैं तो पेरेंट्स फोन पकड़ा देते हैं और वो उनकी हैबिट बन जाती है, बाद में वो खाना ही नहीं खाते अगर उनको फोन नहीं मिला तो।
2: देखिए, यहाँ तो मैं पेरेंट्स की कमी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इजी वे निकाल लिया है और इतना हैबिचुअल बना दिए अपने बच्चे को, फिर बाद में वही दुखदाई हो रहा है पेरेंट्स के लिए। ये मान के चलिए कि जब फोन नहीं थे, क्या बच्चे खाना नहीं खाते थे? माए जो है वो उसे गाना सुना के या किसी भी तरीके से उसे हैंडल करके, उसे मोटिवेट करके, प्यार दुलार करके खाना खिलाती थी।
0: हाँ।
2: तो आपने बहुत ही इजी एक मेथड बना लिया कि फोन दे देंगे तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और पेरेंट्स भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने मदर्स में भी देखा है कि हमेशा फोन पे लगी रहती है, टीवी पे लगी रहती है, और हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि बच्चे को भी अगर कोई आप बात समझा रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस समय आपके हाथ में भी फोन नहीं होना चाहिए, आप भी कोई स्क्रीन पे बिजी ना हो, कोई मूवी या अपना जो है कोई भी सीरीज देखने में बिजी ना हो।
0: नेक्स्ट सवाल है कि उनके बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, और इन्होंने लिखा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, मतलब उसको नींद बहुत आती है।
2: नहीं, इसमें सबसे ज्यादा है कि उसको एंगर मैनेजमेंट पे कुछ उसको सिखाया जाए, और उसको डायर जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बुरे परिणाम है क्रोध के, वो भी उसे बताया जाए कि अगर वो ज्यादा गुस्सा करेगा तो उसका हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन पे पड़ेगा, और इवन उसकी जो गट हेल्थ है, उसका डाइजेशन सिस्टम है, वो बिगड़ सकता है। और कुछ उसको टिप्स भी दीजिए एंगर मैनेजमेंट पे, जैसे उसे एम्पैथी सिखाइए, उसे सिंपैथी सिखाइए, उसे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड सिखाइए, उसे ये सिखाइए कि हमेशा रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए, उसे फॉरगिवनेस सिखाइए, उसे फॉरगेटफुलनेस सिखाइए। अगर ये क्वालिटीज आपके बच्चे में होंगी तो आप देखेंगे कि वो एंगर से ओवरकम कर लेगा।
0: मनोज सुल्तानपुर से लिख रहे हैं कि इनका 7th क्लास में बेटा है और बहुत क्रिएटिव एक्टिविटी में लगा रहता है, किसी काम को मना करते हैं तो जल्दी मानता नहीं है, और मुझे क्या करना चाहिए?
2: देखिए, इससे पता चलता है कि वो एरोगेंट है, आपने एज इसमें बताई नहीं है, शायद वो
0: 7th क्लास में है।
2: आप देख सकते हैं इस एज में भी काफी चेंजेस आने लगते हैं बच्चों में, और ये टीनएजर्स के कारण भी हो सकता है। मैंने जैसे अभी बताया था कि बच्चों को बड़े ध्यानपूर्वक उनसे कनेक्ट होने की जरूरत है। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि जितना आप करेक्शंस कम करके, बच्चों को करेक्ट कम करके कनेक्शंस की तरफ ध्यान देंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे हेल्दी कम्युनिकेशंस करेंगे, तो आप देखेंगे आप अपने बच्चे की सभी समस्याओं को ओवरकम कर सकते हैं।
0: मोहम्मद इम्तियाज सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्तिनगर से, लगभग इसी तरह की समस्या है, और इन्होंने लिखा है कि इनकी जो वाइफ है वो बच्चे को बहुत ज्यादा डांटती है, 10 साल का और 15 साल का इनका बच्चा है, और इन्होंने लिखा है कि मैं बच्चों को समझाता हूँ लेकिन बच्चों की और वाइफ की लड़ाई होती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं?
2: देखिए, एक तो आप बच्चों के सामने जो लड़ रहे हैं और बच्चों को लेकर जो आपस में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये बहुत गलत बात है, कि बच्चे क्योंकि जो चीज देख रहे हैं, अगर वायलेंस देख रहे हैं, झगड़ा देख रहे हैं घर में, तो आपके आचरण से बच्चे सीख रहे हैं। तो पहले तो अपने जो कार्य, शब्दों और आचरण पे पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, और बिल्कुल बच्चों को मत डांटिए। लोगों को लगता है कि डांटने से जो है बच्चों को ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, बिल्कुल नहीं है। आप

0: हेल्दी लेवल पे उनसे संवाद कीजिए, कम्युनिकेशंस कीजिए, धैर्य रखिए और ये सतत प्रयास है। हम भी एज ए पेरेंट्स हम देखे कि बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम सोचते हैं एक दो बारी डांट के बच्चे में एकदम का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पेरेंटिंग एक सतत प्रयास है, हमें डांट कर नहीं डटकर धैर्य पूर्वक पेरेंटिंग करनी है, हमें खुद अपनी इम्पल्सिस पे कंट्रोल करना है जब हम बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हों।
1: सर काफी कुछ हमने डिस्कस किया और बहुत सारे सवालों के जवाब आपने देकर बता दिया कि किस तरह से हम ये सतत प्रयास में शामिल होकर अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने अच्छे पेरेंट्स बनने की ओर और बेहतर कदम उठा सकते हैं। सर बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ आप कहना चाहेंगे जाते जाते जरूर, तो कुछ टिप्स देते हुए हम चलते हैं।
0: नहीं, मैं ये एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग डांट के नहीं डट के कीजिए, सतत प्रयास कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए। मैंने देखा कि पेरेंट्स खुद इम्पल्सिव हो रहे हैं। और दूसरी बात कि अपने सपने, अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर नहीं थोपिए, उनको अपने इनर अर्जीज और इंट्यूशन की सुनने दीजिए, क्योंकि जितने वो अपने इनर अर्जीज और इंट्यूशन की सुनेंगे वो उतने व्यापक बनेंगे। इसका आप मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने अपने इंट्यूशन की सुनी, अर्जीज की सुनी, आइंस्टीन ने अपने अर्जीज की सुनी, इंस्टीट्यूशंस की सुनी, तो आप देखते हैं कि उनकी जो महानता का जो डंका है अभी भी बज रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा आजकल मोबाइल्स और स्क्रीन टाइम्स बढ़ रहा है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स प्रेरित करें बच्चों को कि वो आउटडोर गेम्स खेलें, योगा में इंटरेस्ट लें, म्यूजिक में इंटरेस्ट लें। म्यूजिक में तो इतनी पावर है कि आपके वेगस नर्व, आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो है सब ठीक हो सकता है, और जितनी भी आपके सर दर्द की प्रॉब्लम है और बच्चों की जो पढ़ाई को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स है, सब इससे ओवरकम हो सकती है। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि डांट कर नहीं डट कर पेरेंटिंग कीजिए।
1: ये तो हमने आज बहुत जबरदस्त चीजें सीखी, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर बात की। ये थे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश कुमार, लाइफ कोच। थैंक यू सो मच सर स्टूडियो में आने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो इसी के साथ मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, फिर जल्दी मिलूंगी। तब तक आप सुनते रहिए इसी तरह से दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो। बाय बाय।

0: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।
8: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
9: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है, ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
10: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
9: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
11: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
12: इग्नोर नहीं, याद करो।
13: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के

0: एनसीडीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर To listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, To learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। इस विमान में 11 सदस्यों की एक बचाव टीम तथा खास उपकरणों और 5 टन

अधिक आवश्यक दवाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने और दूसरों को इसके लिए बढ़ावा नहीं देने का आह्वान किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की वर्चुअल बैठक हुई। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा कि भारत में अर्थव्यवस्था की विकास दर 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पारीमैच और अन्य मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों के मद्देनजर मोटर कार किट रिहर्सल आज दोपहर 3 बजे तक होगी। सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपद और बारा खंबा रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गैर कानूनी रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि यह दोनों व्यक्ति पिछले महीने बिना वीजा के भारत में आए थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में अत्यंत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंचे। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। हम कदम प्रोग्राम में मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत आज के प्रोग्राम की मैंने की अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों के साथ। जी हाँ, खूबसूरत गाना, खूबसूरत लिरिक्स और इसी तरह की खूबसूरत बातें करते हैं हम हमारे आप इस प्रोग्राम में, जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच। और आज जैसा कि खूबसूरत आवाज़ों से जब शुरुआत की है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, उससे करती हूँ आज के इस प्रोग्राम की जो बात है ना उसकी शुरुआत। और वो ये है कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है ये कि एक 3 साल की बच्ची है जिसको ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया है और वो एम्स में भर्ती है और उसे अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। अगर आप में से जो भी वॉलंट्री डोनर्स हैं या जो भी इच्छुक रक्त दान करता है, और अगर आप किसी भी ग्रुप के हैं तो भी आप जो है इस बच्ची की मदद कर सकते हैं। अगर आप रक्तदान करने में सक्षम हैं तो उसके लिए आप मोबाइल नंबर नोट करें जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वो है 8010146944। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 8010146944, 8010146944। ये रक्तदान करके आप उस 3 साल की बच्ची की मदद कर सकते हैं और उसका जीवन बचा सकते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए अगली आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ शान की। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
8: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
7: इम्पॉसिबल
8: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
0: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
10: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: आकाशवाणी रेनबो
11: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। हाल ही में कुछ फेस्टिवल्स गुजरे हैं और हम सभी जानते हैं कि और कुछ समय बाद और बहुत वक्त नहीं बचा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि भाई फैमिली गैदरिंग्स होंगी तो फैमिली वालों को गिफ्ट क्या देना है, है ना? आप भी इस डिलेमा से गुजरे होंगे कुछ समय पहले, लेकिन आगे आने वाले समय में एक बार फिर से गिफ्ट्स क्या देने चाहिए और यू नो द आर्ट ऑफ गिविंग जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिंदगी में भले ही एक दूसरे के लिए आपकी जिंदगी में जो जगह है ना वो सबसे ऊंची जरूर हो, लेकिन जब गिफ्ट्स की बात आती है ना, जब अपने हमकदम को, अपने हमसफर को गिफ्ट देने की बात आती है, तो वो प्रायोरिटी हमेशा जो है ना लिस्ट में सबसे नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि भाई ये तो घर की ही बात है ना, कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन मज़े की बात है कि यही सोचते सोचते ना हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर जो है लास्ट में आता है, लेकिन उसके बाद लिस्ट से गायब ही हो जाता है। और हर बार आप ये कहते हैं अगली बार बेहतर तरीके से करेंगे, होता है ना ऐसा? अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एडवांस में याद दिला रही हूँ कि अब की बार ऐसा मत होने दीजिएगा। अब की बार जो है ना पहले से सोचना शुरू कीजिए। और पता है अक्सर ये जो गिफ्ट की बात है, अक्सर हम अपने हमसफर के लिए जब गिफ्ट की बात सोचते हैं तो क्यों वो काम जो है इतना टलता जाता है और बाद में कई बार जो है होता ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि एक्चुअल में जब आप सोचने बैठते हैं ना कि क्या गिफ्ट दिया जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि आप जिस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो ना, उसके लिए गिफ्ट ढूंढना हमेशा ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको हमेशा नहीं पता होता है कि उसको क्या चाहिए, इवन दो आप लोग एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं। अगर आप भी इसी डिलेमा से गुजरते हैं तो ज़रा पहले से एडवांस में तैयारी कर लीजिए। याद दिला रही हूँ आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से, नाम है इसका हम कदम सुन रहे हैं, इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो
4: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम हम कदम में मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है लेकिन जाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं एक बहुत ही ज़रूरी बात, और वो ये कि एक 3 साल के बच्चे जिसे ल्यूकीमिया अर्थात ब्लड कैंसर है, वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो भर्ती है और उसे अतिशीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। आप में से जो भी इच्छुक रक्तदान करता हो, जितने भी वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं उनको भी मैं अपील करती हूं कि आप अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के हैं और रक्तदान करने में सक्षम हैं तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 8010146944 8010146944 8010146944। इस नंबर पर आप संपर्क करें यदि आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हैं और आप रक्तदान करना चाहते हैं और इस छोटी सी बच्ची की जान बचाने में मदद करना चाहते हैं। फिलहाल इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समेटती हूं। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाज़त।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
4: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. she kept her bag on the table

वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हों। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।

0: अनिकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
0: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना,
5: 13, 12, 11। ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
5: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।

0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
1: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
2: Only 4.
1: मेरी तरफ देखो।
2: सू, ओनली 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
1: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
2: 3 पत्तियां।
1: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
1: हाँ, हाँ।
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
1: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
1: क्या जॉनसी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
1: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
1: हाँ?
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
1: ओ जॉनसी।
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: 2, ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं।

0: आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
0: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
0: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
0: सू।
3: हाँ जॉन्सी।
0: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
0: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
0: हाँ,
3: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: हाँ, दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
3: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
3: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
3: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
3: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
3: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
0: ओह गॉड,
3: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
3: क्या?

0: कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू,
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये हमें दुनिया देखने का माध्यम बनाती हैं और इनके माध्यम से ही हम देखते हैं दुनिया इतनी खूबसूरत है। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता ये शायद नहीं जानते होंगे या जानते होंगे लेकिन उतना अवेयर नहीं होंगे कि ये जो खूबसूरत आंखें भगवान ने हमें दी हैं वो हम अपने जाने के बाद किसी और को देकर उसकी दुनिया भी खूबसूरत बना सकते हैं। ये एक बहुत नेक कार्य है और इसे एक महादान भी कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं नेत्रदान महादान। और चल रहा है नेत्रदान पखवाड़ा और हम आपसे जब भी मिलते हैं हम बात करते हैं इस बारे में, आपको जानकारी भी देते हैं, लेकिन हमारे नए नए श्रोता जुड़ते हैं और कई बार बातें सुनने के बाद हम भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है अक्सर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है और हमारे मन में नए नए सवाल आते हैं कि ये तो हमने पूछा ही नहीं, या कभी ऐसा भी होता है कि हम बाद में सोचते हैं कि ये तो हमें और पूछना था। तो बस ये सारी चीज़ें जो आपके मन में चलती हैं वो हम भांप लेते हैं और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको जो भी पूछना हो हमारे स्पेशलिस्ट से, हमारे रेडियो डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। आज वही समय आ गया है, आज हम विशेष एपिसोड कर रहे हैं नेत्रदान पर और हमारे साथ आज के हमारे विशेषज्ञ जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो एक जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल का। आप फॉर्मर चीफ रह चुके हैं RPI सेंटर एम्स नई दिल्ली में और डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारी बातें हमने अपने पुराने कार्यक्रमों में आपसे बताई है, लेकिन उन नए श्रोताओं के बारे में बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब को पद्मश्री मिला हुआ है, अपने कामों के लिए आप जाने जाते हैं और नेत्र के क्षेत्र में इनके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं और हमें अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको यहां स्वागत करते हुए। आज रेडियो डॉक्टर हैं आज हमारे इस एपिसोड के, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।
2: नमस्कार तमाम श्रोतागणों का और धन्यवाद देना चाहते हैं शालिनी जी का जो इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं और स्पेशली ये तो बहुत ही मेरे दिल के करीब है नेत्रदान, और ये नेत्रदान पखवाड़ा है, ये एक तरीके से हमारे समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक तरह से जागरूकता फैलाने वाली एक दो हफ्ते हैं जिसमें लोगों को ये ज्ञान दिया जाता है कि आँखों का दान, नेत्र का दान करना चाहिए। और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल बीमारी से, जो आगे की पुतली होती है उसके बीमारी से पीड़ित रहते हैं और ग्राफ्टिंग करके, ट्रांसप्लांट करके उनकी नज़रों को दोबारा देखने के लिए हम जो है उनको ज़िंदगी आगे अच्छा बताने के लिए, बिताने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुहिम है जो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताएँ जो है इसको हमारे बिहाफ में आगे और फैलाएं जिससे कि पूरे देश में जागरूकता बढ़े।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप जब यहाँ आते हैं और हमारे श्रोताओं से रूबरू होते हैं और उनके मन में बहुत सारी शंकाएं भी होती हैं, कई बार लोग चाहते भी हैं पर उन्हें कई बार ये नहीं होता, प्रोसीजर नहीं पता होता, कई बार उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है नहीं पता होता और कई बार कई मिथ्स भी हर चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं जो कि नेत्रदान के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों पर जब तक आप जैसे स्पेशलिस्ट उनसे खुलकर नहीं बताते हैं वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम से अगर इस तरह के आप सुनने वालों में के मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप डॉक्टर साहब से पूछें, समय का सदुपयोग करें, बहुत सारी भ्रांतियां हैं उसको भी दूर करें और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा उसे आगे भी फैलाएं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है, एक नेक कार्य है जिसको हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल पूछना चाहूंगी, जैसा आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि आगे की जो परत होती है या कॉर्निया होता है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो किस चीज़ को एक्चुअली, किस तरह के ब्लाइंडनेस को दूर किया जा सकता है डोनेशन से?
2: ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शालिनी जी। बहुत से लोगों को भ्रम रहता है कि जैसे आपने हमारे बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि आँख का ट्रांसप्लांट कर दिया उसके बाद उसको सब दिखने लगा, तो पूरी आँख का ट्रांसप्लांट कर नहीं सकते। अभी तक साइंस ने इतनी उन्नति अच्छा। नहीं की है कि पूरी आँखों का ट्रांसप्लांट हो जाए। अभी केवल जो आगे की पुतली है, जो काली पुतली है, एक्चुअली में वो ट्रांसपेरेंट होती है, पीछे जो हमारी जो आयरिस टिश्यू है उसका रिफ्लेक्शन होता है। यदि उसमें सफ़ेदी आ जाए या उसमें उसके काम करने की क्षमता खराब हो जाए या कम हो जाए, उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए जो आँखों का स्ट्रक्चर है नॉर्मल होना ज़रूरी है, पीछे आपका रेटिना ठीक होना ज़रूरी है, पीछे जो नस है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसका सही होना ज़रूरी है। यदि आपका पूरी आँख ठीक होगी, केवल आगे की पुतली खराब हो, तब जाके ट्रांसप्लांट करने से उसको जो है फ़ायदा हो सकता है और रोशनी दोबारा आ सकती है।
1: यानी अगर और कोई समस्या है, जैसे रेटिना में हो या ऑप्टिक नर्व में हो, तो वो नहीं ठीक,
2: उसका हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। पहले उसकी उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। कभी कभी बड़े सारे बीमारियां साथ साथ चल रही होती हैं, तो साथ साथ इलाज भी हो सकता है। लेकिन ऐसी बीमारी भी होती है जैसे काला मोतिया है, उसके कारण से पीछे की नस सूख गई हो और आगे की पुतली खराब हो सकती है, तो वहाँ हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर भी दें तो मरीज़ को जो है रोशनी दोबारा आ नहीं सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी बीमारियाँ होती जिसमें रोशनी चली जाती तो वापस नहीं हो सकती है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती जिसमें रोशनी चली जाए तो दोबारा वापस हो सकती है। उसमें ये कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल

0: प्रोसीजर है जिसमें आदमी की रोशनी दोबारा वापस आ सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब हम जो है जो आँख मरने के बाद आँख की पुतली का दान करें या कॉर्निया का दान करें, तो तभी जो है दूसरे को लगा सकते हैं। तो डोनेशन इसलिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारे सोसाइटी में एक मुहिम होनी चाहिए, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जिस इस सर्जरी से जो है उनको फ़ायदा हो सकता है।
1: जी, तो कॉर्नियल जो ये ट्रांसप्लांट की आवश्यकता किसको पड़ती है? जैसे कोई जन्म से अगर कोई ब्लाइंड है, या फिर कभी किस इंजरी हो गई है, या मतलब कौन उस दायरे में आ सकता है
0: हाँ,
1: जिसको
0: जो
1: डोनेशन
0: एक
1: से
0: जो
1: फ़ायदा
0: आगे
1: हो?
0: की पुतली की जो बीमारी होती है, तो ज़्यादातर तो जो है हमारे रोज़ जो हमारी जो समस्या होती है उसके कारण से पुतली ख़राब हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना,
1: अच्छा
0: हाँ कॉर्नियल अल्सर जिसे बोलते हैं, या चोट लगने से पुतली ख़राब हो जाना, या फिर कोई ऑपरेशन किया उसके कारण पुतली ख़राब हो जाना, जैसे कैटरेट की सर्जरी हो या काला मोतिया की सर्जरी हो, उससे पुतली ख़राब हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारी हो जो जन्म से हो जाती है जैसे हेरिडिटी डिजीज बोलते हैं। तो ऐसे बड़े सारे डिस्ट्रॉफी होते हैं जो आदमी जीन लेके पैदा होता है, और आते आने वाले कुछ समय में जो है धीरे धीरे आपकी पुतली ख़राब होने लगती है। उसमें जो है कॉर्नियल इंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी, कुछ जो है कंजेनाइटल डिस्ट्रॉफी होती है, जो लोग पैदा ही उस डिस्ट्रॉफी से होता है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है बाद में ही हो सकती है, जन्म से भी बीमारी
1: जन्म
0: हो
1: मतलब
0: सकती
1: काफी
0: है।
1: बड़ी रेंज है ऐसी
0: हाँ,
1: बीमारियों
0: तो
1: की।
0: हर चीज़ से जो है, जब बहुत से लोग जो है इससे पीड़ित रहते हैं उनको पता नहीं होता इसका इलाज हो सकता है, तो
1: जी
0: सही टाइम में जांच हो जाए तो आराम से जो है ट्रांसप्लांट करके उसकी रोशनी दोबारा जो है ठीक करी जा सकती है।
1: जी हमारे एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?
2: जी, नमस्कार सानी
1: जी
2: मैम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ और मेरी आपने कॉल उठाई है।
1: चलिए, धन्यवाद कि आपने कॉल किया, और धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। अपना नाम बता
2: जी
1: दीजिए।
2: डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार।
1: कहाँ
2: जी
1: से बोल
2: सर,
1: रहे हैं? अपना
2: मैं ये
1: नाम बता
2: पूछना
1: दीजिए
2: चाहता
1: प्लीज।
2: मैं ये पूछना था चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि सर, 6 साल पहले मुझे चोट लगी थी आंख में, राइट
0: हाँ,
2: आंख में चोट लगी थी, मतलब गुलेल के गले की वजह से। लेकिन डॉक्टर ने मतलब बताया है कि इसमें जो आंख का जो पीछे मतलब जो कैल्शियम होता है वो सूख कर पत्थर बन गया है, तो
0: वही
2: इसका
0: जो
2: सर कोई इलाज है?
0: हम बता रहे थे ना कि जो ऐसे चोट जब लगती है गुलेल से या जोर से जो लगती है, तो उसमें आँखों के पीछे वाले पार्ट में ज़्यादा असर करता है। जैसे आप बता रहे हैं आपको जो पीछे का नस सूख गया है, तो नॉर्मली जब नस में असर हो जाता है तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है, इस ब्लाइंडनेस को
2: जी जी
0: दोबारा
2: जी
0: ठीक करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं चाहूँगा
2: सर,
0: कि एक
2: मैं ये
0: बार प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, उसमें जो है नस के लिए अलग से चेकअप होते हैं, ये नस में थोड़ी बहुत भी फंक्शन है और आगे की पुतली
2: नहीं नहीं
0: खराब हो
2: सर,
0: रही
2: ऐसी
0: हो।
2: बात नहीं है, मुझे मतलब थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन अभी
0: हाँ
2: मतलब थोड़ा कटा पिटा सा दिखता है आपसे।
0: हाँ वो तो ऐसे ही विजन भी मेंटेन करने के लिए भी एक जो है ना आगे से जांच इलाज करने जरूरी है, नहीं तो धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो सकती है।
2: अच्छा जी,
0: हाँ, आप अपना
2: तो
0: नाम भी बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं, तो हम सब आपको स्वागत कर सकें। आप हमारे नए कॉलर हैं
2: जी मेरा नाम ओम कुमार है, मैं यूपी मेरठ से हूँ
1: जी। बहुत धन्यवाद ओम कुमार
2: जी। और
1: जी।
2: सानली मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे अभी उस पर जाएंगे, तो एक गाना मेरी पसंद का चला दीजिए कि श्रापित मूवी का।
1: देखिए, ये हमारा जो
0: हाँ
1: कार्यक्रम है इसमें हम अपने गेस्ट के पसंद के गाने चलाते हैं, और आज डॉक्टर तित्याल जी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने बताए हैं, तो आप उसको एंजॉय कीजिए, और डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद दीजिए कि वो इतने अच्छे गाने आपके लिए
0: वो
1: चूज़ करके
0: हमारे
1: आए
0: चूज के गाने भी
1: हैं।
0: बड़े अच्छे हैं, आपको पसंद आ
1: जी,
0: जाएंगे।
1: तो पहला गाना हम आपकी नज़र करते हैं जो डॉक्टर साहब की पसंद का है, आइए सुनिए ये गाना।

0: वेलकम बैक। आप हैं रेडियो डॉक्टर में और उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को डॉक्टर साहब की पसंद का ये पहला गाना पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब क्यों पसंद है ये सॉन्ग आपको?
1: मौसम आजकल ऐसा है दिल्ली में हो गया है
0: जी। तो लेकिन हम ये बिल्कुल भगवान से दुआ करते हैं कि कोई तूफान ना आए। बिल्कुल
1: हम चाहते हैं तूफान आए तो लोग के डोनेशन में तूफान आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातों का तूफान आना चाहिए। शब्दों को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी बातें हों और सैलाब की तरह अच्छी अच्छी बातें हों। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मतलब आप समझिए कि हमारे इस कार्यक्रम का जो अवेयरनेस क्रिएट करने की जो वेव्स हम चाहते हैं वो दूर दूर तक पहुंचे हमारे एयर वेव्स के माध्यम से। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार
2: जी। सभी को मेरा प्यार पर नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: ग्राम नगर हापुड़ यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, बताइए क्या पूछना है
2: सर से। मेरे सवाल ये कि मैं 100% ब्लाइंड हूँ। तो सर ने एक दो बार पहले जिक्र भी किया था कि कुछ चश्मे ऐसे आते हैं जिससे थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है, क्यों इनकी रेटिना सही होता है या नहीं?
1: नहीं नहीं, जो मैंने पहले बात की थी उसमें क्या होता है कि ये चश्मे आजकल ना AI से जनरेटेड चश्मे होते हैं। इसमें आपको दिखता नहीं लेकिन आपको बता देता है कि आपके सामने क्या है, कितने लोग खड़े हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं। यदि आपके AI इन्फॉर्मेशन में आदमी की डिस्क्रिप्शन नाम फीडेड है तो नाम भी बता देता है। तो ये चश्मा जो है काफ़ी कारगर है और आपको पता चल जाता है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है।
0: तो ये कहाँ अवेलेबल होते हैं?
1: ये सब जगह अवेलेबल आजकल जो है। अच्छा। AI जनरेटेड चश्मे हैं और इसका जो है इनिशियल एक तरह से एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, ट्रायल जो करते हैं, वो बड़े सारे सेंटर्स में हो सकता है और एम्स न्यू दिल्ली में भी हो सकता है। ये
0: तो इन्हें जाना है, वहाँ संपर्क करना है।
1: वहाँ संपर्क करें, अलग अलग तरह के चश्मा लगा के आप ट्राई कर सकते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन होता है, उसमें डिस्टेंस के लिए यदि वॉइस को भी डाल दें तो आवाज़ से भी पहचान हो सकती है आदमी की जो है।
0: तो आप जा सकते हैं या सर ऑनलाइन भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन या
1: इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल सकती है लेकिन ट्रायल जो है फिजिकली करनी पड़ती है।
0: जी जी, तो आपको जाना होगा या आप किसी को साथ में।
1: बड़े सारे इंडियन कंपनीज बना रहे हैं तो काफी जो है कॉस्ट भी जो है काफी कम हो गया आजकल।
0: ओके। हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं डॉक्टर साहब। मैम एंड डॉक्टर साहब डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस दैट मोर देन 2500 कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशंस हैव बीन डन दिस ईयर। आई हर्ड इट इन मॉर्निंग न्यूज। ग्रेट एडमायरर ऑफ रेडियो डॉक्टर शो। श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं, 75 ईयर्स के हैं, रोहिणी से, और आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम में आ जाए।
1: बहुत अच्छी बात है कि इतनी सर्जरीज हुए हैं लेकिन आपको ये सुन के बड़ा दुख होगा कि हमारे देश में हर साल जो है हमें करीब करीब 1,00,000 सर्जरी करने की ज़रूरत है जिसके करने के बाद हमारी बैकलॉग ख़त्म हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे पूरे साल में, पिछले कई सालों से पूरे देश में, भारत देश में 25,000 से लेकर 35,000 सर्जरी होती है तो 50,000 बैकलॉग हो जाता है। हर साल 50,000 नए केसेस जुड़ जाते हैं। आप देखेंगे करीब करीब 12 से 15 लाख लोग जो है एट ए टाइम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे होते हैं। इसीलिए यह मुहिम हमने छेड़ी है कि लोगों को अवेयरनेस हो, परिवार को जानकारी हो कि आई डोनेशन कर सकते हैं और उस कारण से जो डोनेशन बढ़ जाए तो लोगों की जो टाइम होता है वेटिंग कम हो जाएगा जिसमें आदमी परेशान रहता है, फैमिली परेशान रहती है। और हम जानते हैं कि सर्जरी के बाद उस आदमी की नज़र तो वापस हो सकती है, परिवार भी जो है सही हो जाता है। एक आदमी जो है अपनी दिनचर्या ठीक कर सकता है, अपने परिवार के लिए काम कर सकता है। तो एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, एक आँख की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो हम सबको इस मुहिम में आगे आना पड़ेगा।
0: जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बोली कि जो इफेक्टेड होता है उसके साथ उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है और उसके पूरे जीवन और उसकी पूरी फैमिली के जीवन पर असर पड़ता है। एक हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार।
3: हाँ, सबसे पहले तो शाली मैम को सही नमस्कार।
0: जी जी, नमस्कार राजेंद्र जी, बताएं।
3: हाँ राजेंद्र जी, मेरा नाम है और मैं कर्मकरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी,
3: 48 वर्ष मेरी उम्र है और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, बताइए।
3: हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है कि दिन दिन दिन शख्स को भी रेटिना पिगमेंट तो सारी प्रॉब्लम होती है। अब
1: अच्छा,
3: तो तो है,
0: आपकी आवाज हमें साफ मिल नहीं रही है राजेंद्र जी,
3: पैदा होगा
0: सर आपको समझ में आया तो
1: ये पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया राजेंद्र जी मुझे, जो आप पूछ रहे हैं जिन लोगों को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी होती है क्या उनकी पुतली की भी जो है डोनेशन हो सकती है, आंसर बिल्कुल यस है, वो पुतली भी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ये बीमारी पीछे के पर्दे में होती है, उनका आगे का पर्दा बिल्कुल सही रहता है, तो मृत्यु के बाद इन लोगों के आँखों को भी डोनेट कर सकते हैं और दूसरों को फ़ायदा हो सकता है, इससे बीमारी दूसरे आदमी को फैल नहीं सकती है। दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन मेरे
0: हमें इनकी आवाज़ स्पष्ट मिली नहीं है राजेंद्र जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप पुनः ट्राई करना चाहें क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक होकर हमें मिल रही थी। डॉक्टर साहब आपने बात की कि वो कर सकते हैं अगर कोई ऐसी बीमारी है डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, लोग समझ लें इसको।
1: जैसे लोग पूछते हैं कि उनका कैटरेट का ऑपरेशन हुआ है, काला मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, या पीछे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो या फिर ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो गया हो, इन सब की यदि आगे की पुतली सही है तो उसका जो है डोनेशन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आगे दूसरे मरीज के लिए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसके कारण से डेथ हो जाए तो उस टिश्यू को यूज़ नहीं करते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, जैसे कि आदमी सेप्टिसीमिया से डेथ हो गया हो, या फिर पॉइजन से डेथ हुआ हो, स्नेक बाइट से डेथ हुआ हो, या फिर आपको रेबीज की बीमारी हो, या HIV से पीड़ित हो, या फिर ऐसी कोई ब्रेन की डिजीज़ हो जिसका कोई कारण पता नहीं चला हो, कोई अननोन डेथ हो, तो वहाँ पर हमें पता नहीं किस चीज़ से या किस कारण से डेथ हुआ, तो ऐसे टिश्यू का हम यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा जो है डेथ के बाद यदि बॉडी बहुत लंबे समय तक पड़ी हुई है, जैसे 10 घंटे 12 घंटे पड़ी है, तो वो टिश्यू ख़राब हो जाती है, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विद इन 6 आवर्स हो जाए डोनेशन तो टिश्यू बहुत अच्छी होती है, दूसरे के लिए कामगर हो सकती है, इसलिए जो है इन्फॉर्मेशन हो तो जल्दी टिश्यू डोनेशन करना भी बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हम देखते हैं कि आदमी चाहते हैं कि उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उनका डोनेशन होना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी बीमार से डेथ हुआ हो, तो नॉर्मली आई बैंक वाले मना नहीं करेंगे, टिश्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसको जो है किसी दूसरे में प्रत्यारोपण नहीं करते हैं, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए या टीचिंग के लिए, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, तो डोनेशन के लिए कोई मना नहीं करेगा, आप आएंगे तो ज़रूर डोनेट एक्सेप्ट करेंगे लोग
0: जी। तो ये नहीं सोचना है कि और पता भी नहीं होता है किसी को कि खैर उसको कैसे डेथ होनी, तो इसका रजिस्ट्रेशन तो पहले से किया जाता है ना डॉक्टर साहब?
1: देखो जहाँ तक आई डोनेशन है वो हम जानते हैं कि लोग संकल्प लेते हैं कि हम डोनेशन करेंगे, जिसे हम प्लेस कहते हैं, और प्लेस वालों को डोनर कार्ड भी देते हैं हम लोग। अनफॉर्चुनेटली ये जो है कोई ऑफिशियल या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो किसी ने प्लेस भी करेगा तो हम उसकी आंख नहीं ले सकते हैं, जब तक कि मृत्यु के बाद उनके परिवार वाले, उनके जो प्रियजन हैं जिनको अधिकार उस बॉडी का, वो हाँ नहीं बोलते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद काउंसलिंग परिवार की होती है, तो यदि परिवार वाले हाँ करेंगे तभी ले सकते हैं टिश्यू को, अदरवाइज किसी ने प्लेस भी कर रखा हो तो हम टिश्यू ले नहीं सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक ये गैप है
0: जी।
1: तो हम कहते आ रहे हैं कि प्लेस जो है डोनेशन में कन्वर्ट नहीं होता है, केवल अवेयरनेस जो है उसको कन्वर्ट करा सकता है, इससे कोई भी प्लेस करे तो जरूर अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म करके रखें कि मेरी जो है इच्छा है मेरे मृत्यु के बाद मेरे आँखों का दान कर दिया जाए।
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई प्लेज कर रहा है तो वो छुपाए नहीं कि बाद में पता चलेगा, ऐसा नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि जो पीछे रह जाएंगे वही इन्फॉर्म करेंगे कि टीम को बुलाना है रिट्रीवल के लिए। डॉक्टर साहब ये एक मैसेज भी है हमारे पास, उन्होंने लिखा है कि आफ्टर लिसनिंग टू रेडियो डॉक्टर आई हैव प्लेज्ड टू डोनेट माई आईज, और उन्होंने उसका पूरा हमें सबूत भी भेजा है, उसका PDF बना के भेजा है, थैंक यू सो मच।
1: बहुत बढ़िया।
0: RC मलिक जी हैं ये रोहतक से और लिख रहे हैं कि आप दोनों को नमस्ते, मैं एक रेगुलर लिसनर हूं रेडियो डॉक्टर का, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कार्यक्रम, 70 इयर्स का हूं, मुझे ये बताइए कि टोल फ्री नंबर क्या है और कहां लिसनर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये और लोगों के लिए जानकारी चाहिए।
1: बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे आज के प्रेजेंट टाइम में दो तरह से लोग दान कर सकते हैं, एक तो जिसे हम कहते हैं वॉलंटरी डोनेशन, यदि घर में डेथ हो जाए तो वहाँ से डोनेट करने को वॉलंटरी लोग डोनेट करते हैं, दूसरा होता है हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम SCRP, जो कि हॉस्पिटल में जो डेथ होते हैं

0: तो वहाँ पर टिश्यू उनको निकालते हैं। तो जहाँ तक हॉस्पिटल में डेथ होता है, तो हॉस्पिटल में एक डेथ नोटिफिकेशन सिस्टम होता है हर हॉस्पिटल में, उससे जो है इंफॉर्मेशन नियरेस्ट आई बैंक या उनके अपने आई बैंक में चला जाता है और आई बैंक पर्सनल इमिडिएटली आ जाते हैं। जहाँ तक वॉलंटरी डोनेशन है, ये जो है आप यदि टोल फ्री नंबर चाहते हैं तो नोटो, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक टोल फ्री नंबर है जो आप वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले जो है, आज से 10-15 साल पहले जो है, MTNL ने जो है एक 1919 नंबर निकाला था, लेकिन अब जो है वो इतना कारगर नहीं है। वो जो है हमारा जो टेलीफोन होता था लेन वाला जो है उसमें काम करता था।
1: अच्छा।
0: तो आजकल सब लोग मोबाइल फ़ोन में काम करते हैं और जो है नियरेस्ट जो भी आपके पास में हॉस्पिटल है उसको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: मैं सतीश बोल रहा हूँ गाज़ियाबाद से। नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार।
2: मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे को बाइलेटरल ऑप्टिक एट्रोफी है।
0: हाँ जी।
2: तो क्या मेरे केस में AI वाले चश्मे काम कर सकेंगे? मैं कुछ परसीव कर पाऊंगा?
0: नहीं नहीं, परसीव नहीं कर पाएंगे सर। सतीश जी, आपको ना, लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि
2: इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक एट्रोफी वाले केस में भी पता चल जाएगी?
0: नहीं नहीं, वो आपके जो आपने चश्मा लगा रखा होगा उसमें साउंड सिस्टम होता है, वो बता देंगे। आपके सामने जो है शालिनी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर तित्याल बैठे हुए हैं, वो जो है उन्होंने ऐसा कपड़ा पहन रखा है और वो माना कोई कन्वर्जेशन करना वो भी हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके रूम के आसपास कौन है, कहाँ पर टेबल है, चेयर है, वो सारा AI कैमरा से पिकअप करके आपको बता देगा साउंड से जो है।
2: ये दिल्ली में चश्मे कहाँ मिल सकेंगे?
0: ये आप एम्स में जाकर के इसका ट्रायल कर सकते हैं और चश्मा खरीद सकते हैं ऑर्डर करके।
2: थैंक यू
0: सो मच। नमस्कार सतीश, नमस्कार,
1: बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बड़ी जानकारी ये लोगों तक पहुंच रही है और बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं इसका ट्राई करना, तो आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं भी पूछना चाह रही थी आगे, और एक हमारा प्रश्न आ ही गया है व्हाट्सएप पे। मंदीप जी लिख रहे हैं रोहतक से कि ये पूरा जो प्रक्रिया होती है आई डोनेशन की, वो थोड़ा सा बताइए कैसे लिया जाता है। इन्होंने पूछा है कि क्या करना होता है और क्या टीम करती है।
0: आपने सुना होगा कि आई बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो है टिश्यू कलेक्शन होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस ट्रांसप्लांट सेंटर में जहाँ ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। तो आप देखेंगे प्रक्रिया शुरू होती है आई बैंक से और ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में जाके मरीज जहाँ वेट कर रहे हैं उनकी सर्जरी हो सकती है। तो आप देखेंगे कलेक्शन सेंटर होता है जहाँ पर ये जो है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में और एरिया में हो सकता है जहाँ टिश्यू कलेक्ट करते हैं, उसको जो है आई बैंक में लेके आते हैं और आई बैंक में प्रोसेस करके तब यूज़ कर सकते हैं। तो आज के डेट में जो है जब भी हम टिश्यू निकालते हैं या कॉर्निया निकालते हैं तो साथ में थोड़ा ब्लड भी ले आते हैं, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट करना आजकल कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसमें HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है और सिफिलिस, ये तीन टेस्ट करते ही करते हैं, उसके बाद ही जो है टिश्यू जो है फिट होता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि एक पूरा प्रोसेस है, मरीज़ की जो है डेथ के बाद उसके परिवार वाले हाँ बोलते हैं तब जाके जो है आई बैंक की टीम जाती है, जिसमें एक टेक्नीशियन होता है, एक डॉक्टर होता है जो सर्टिफाई करता है वहीं पर कि डेथ हो चुका है, सर्टिफिकेट करेक्ट है, तब जाके टिश्यू निकालते हैं। और एक बड़ा मिथ था पहले कि पूरी आँख निकाल देते हैं, आजकल जो है पूरी आँख निकालते नहीं है, केवल आगे की जो काली पुतली है उसी को निकालते हैं, जिससे कि आँख का शेप मेंटेन रहता है, ऊपर से एक लेंस लगा देते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में, जिससे कि परिवार वाले जो है आगे जो है ये नहीं कहते कि उनके प्रियजन का जो है चेहरा खराब हो गया। पहले ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था, लोग कहते नहीं नहीं नहीं
1: डिफॉर्मिटी हो जाएगी। हाँ। और ये भी सुनने में आता था अगले जन्म में फिर ऐसे ही बन के पैदा होंगे जैसा।
0: तो इसके लिए भी हमने बहुत लोगों को जो है अवेयरनेस बढ़ाया कि किसको किसी को नहीं पता है अगला जन्म है कि नहीं है, अगले जन्म में क्या होगा, जो भी पुण्य का काम करना है, जो भी आपको अच्छा काम करना है या जो भी करना है इसी जन्म में हो सकता है। ये जन्म जो है लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे नर्क जाएंगे, एक्चुअली ये जन्म ही आप स्वर्ग का जन्म है ये, तो जो भी अच्छा काम करेंगे इसी जन्म में होना है, तो क्यों नहीं जो ये चीज़ करके जाए कि आप जो है आपका जो भी चीज़ जो यूज़ हो सकता है, हम जो है हो सकता है कल हम निकल जाएंगे, हमने जो घर बनाया है, हमने जो पैसे कमाए यूज़ हो रहा है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्यों नहीं शरीर का अंग भी यूज़ हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सबसे सक्सेसफुल सर्जरी होती है बॉडी में, और सबसे ज़्यादा सर्जरी ट्रांसप्लांटेशन पूरे वर्ल्ड में कॉर्निया की होती है, और आज की डेट में

0: देखा जाए तो ये सबसे सक्सेसफुल बॉडी का जो एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन है, आपने सुना होगा किडनी का होता है, लिवर का
1: जी
0: होता है, हार्ट का होता है और बड़े सारे स्किन का होता है, बोन का होता है। तो ये जो है आई डोनेशन इसलिए भी जो है ज़रूरी है कि एक ही तरीका है जहाँ से टिश्यू मिल सकती है, वो भी
1: जी
0: मरने के बाद।
1: मरने के बाद
0: हाँ
1: जी। तो ये सक्सेस रेट क्या है सर? आप बोल रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, तो व्हाट
0: हाँ
1: इज द सक्सेस रेट?
0: इसलिए कहते हैं कि जो नॉर्मली किसी और की टिश्यू या ऑर्गन लेते हैं तो उसका रिजेक्शन होने के चांस रहते हैं कि बॉडी उस टिश्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके अगेंस्ट में एंटीजन बना लेती है। जहाँ तक कॉर्निया है वो जो है कॉर्निया में खून की नसें नहीं होती है, तो जहाँ खून की नसें नहीं होंगी तो रिजेक्शन रेट कम हो जाता है, तो इसलिए सक्सेसफुल सर्जरी है। और जब रिजेक्शन होता भी है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल होता है और सही टाइम में पता चल जाए तो रिजेक्शन रिवर्स कर सकते हैं इसमें। और तीसरा ये है कि ये जो है इसको रिपीट भी कर सकते हैं, माना किसी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद ख़राब हो गया तो उसको दोबारा भी सर्जरी हो सकती है, रिपीट सर्जरी भी बहुत सिंपल है इसमें, तो इसलिए जो है काफ़ी सक्सेसफुल है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% रहता है, क्योंकि आजकल ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें केवल उसी लेयर को चेंज करते हैं, क्योंकि जो कॉर्निया है या पुतली है उसके भी लेयर होते हैं, एंटीरियर लेयर या पोस्टीरियर लेयर, केवल उसी लेयर को चेंज करते हैं विद नॉर्मल हेल्दी डोनर टिश्यू से जो है, उस कारण से सर्जरी अच्छी हो गई है, सिंपल हो गई है और जो रिहैबिलिटेशन टाइम होता है वो भी बहुत कम हो गया है।
1: और सर्जरी में कितना समय लगता है डॉक्टर साहब?
0: सर्जरी डिपेंड करता है कि यदि 15-20 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक सर्जरी हो सकती है और कुछ केस में कंबाइंड सर्जरी करनी पड़ सकती है, ऐसे नहीं कि केवल पुतली का ऑपरेशन करना हो, कभी कभी हम कैटरेट का, काला मोतिया का पीछे पर्दा खराब तो उसके हम सर्जरी भी साथ में कर सकते हैं, हम
1: अच्छा,
0: लोग
1: तो उसमें उतना ही समय
0: उतना समय
1: ज़्यादा
0: लग
1: लगता है।
0: जाता है।
1: हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी,
2: हेलो।
0: हाँ
1: हाँ जी,
0: नमस्कार।
1: आपको सुन पा रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
2: जी मैं विकास बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी
1: जी, क्या पूछना है?
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार और मैम आपको भी
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: जी मैं पहला कॉलर हूँ जी। जी
0: हाँ बताइए।
1: आप बताएं, आप क्या पूछना चाहते
2: डॉक्टर
1: हैं?
2: साहब मैं कह रहा हूँ मेरा एक दोस्त है, उसकी मतलब जो आंख है मतलब मधुमक्खी बैठ गई थी, तो मतलब आंख में थोड़ा तेज हाथ लग गया और पोलाइटिंग हो गई।
0: हाँ हाँ बताइए और बताइए।
2: ये पोलाइटिंग हो गई थी आंख में, पोलाइटिंग।
0: हाँ
2: तो मतलब सर जैसे ये पोलाइटिंग हुई है तो डॉक्टरों ने मतलब सर्जरी कर, ये मतलब कभी रोशनी ज्यादा हो रही है, मतलब कभी डाउन हो जा रही है और कभी मतलब तेज हो रही है अपने आप ही।
0: हाँ जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि जब भी ये जो मधुमक्खी का डंक चला जाता है आँख के अंदर तो उसमें काफ़ी सीवियर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हाँ यूवियाइटिस हो सकता है, पीछे कॉर्निया में अल्सर हो सकता है और पीछे के जो है नस में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ऐसे में जो है जब भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो नज़र कम हो सकती है, आँख में लाली आ सकती है, पेनफुल हो सकता है, तो उसका इलाज संभव है। इन्फ्लेमेशन कम करेंगे स्टीरॉयड से या एंटीबायोटिक से जो है, तो जो है वो पीरियड जो है धीरे धीरे जो है सही हो सकता है। यदि आगे की पुतली ख़राब हो जाती कभी कभी जो है हनी बी के उससे जो टॉक्सिन से, तो उस कॉर्निया को भी ठीक कर सकते हैं।
1: जी धन्यवाद प्रश्न करने के
0: धन्यवाद।
1: लिए। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैसेज आए हैं डॉक्टर साहब, जो आंखों की बहुत सारी जो तकलीफ है, बीमारियां हैं, उसके बारे में आपकी एडवाइस मांग रहे हैं। तो अगर समय बचेगा तो ज़रूर मैं कोशिश कर, जिस विषय पर आज हम खास तौर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो उस विषय को पूरी तरह से समझ लें और वो जो आप उस बारे में बताना चाहते हैं वो हम सब श्रोताओं तक पहुँचा दें। तो आपने एक बार ये भी बताया था डॉक्टर साहब अपने पुराने कार्यक्रम में, कि जब हम एक आदमी जब अपनी डोनेट करता है पेयर ऑफ आईज, तो कई सारे लोगों को उसका लाभ पहुँचता है, तो वो कैसे होता है? और ये लेमिनर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ये क्या होता है, इसको समझाइए।
0: नहीं पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने कहा था जो आगे की पुतली है उसके भी लेयर्स होते हैं, हाँ एंटीरियर लेयर, बीच का लेयर और पोस्टीरियर लेयर, तीन लेयर्स होते हैं मेनली से है, और बीमारी कभी कभी जो है इन्हीं लेयर में होती है, तो उस लेयर बाय लेयर सर्जरी बोलते हैं जिसको लैमिलर प्रोसीजर बोलते हैं, एक लैमिल ही हटाते हैं, पूरा कॉर्निया नहीं हटाते हैं। तो आज की डेट में हम हमारे जो पहले आज से 30 साल पहले जो है पूरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती थी कोई भी बीमारी हो, जब से हमारे समझ आए कि हम जो कॉर्नियल डोनर टिश्यू को भी स्प्लिट कर सकते हैं एंटीरियर पोर्शन में, पोस्टीरियर पोर्शन में, मिडिल पोर्शन में,

0: उसको अलग से जो है उसी एरिया में फिट कर सकते हैं जहाँ पर डिजीज़ है। तो ये कहते हैं कस्टमाइज सर्जरी, और इस सर्जरी के कारण जो है एक टिश्यू को हम जो है दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि एक आदमी ने दो पुतलियां होती तो चार आदमी को से जो है फ़ायदा हो सकता है। इसके लिए एक ऐसा मरीज़ होना चाहिए जिसको एंटीरियर पार्ट में बीमारी हो, दूसरा मरीज ऐसा होना चाहिए जिसका पोस्टीरियर पार्ट में बीमारी हो। यदि ऐसी सिचुएशन है तो एक आँख से दो लोगों की जो है आँखों को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, लेकिन डोनेशन कम हो रहा है और जो डिमांड है, लोग जो बीमार हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। यदि ये ऐसा टेक्निक जो है सक्सेसफुल हो जाए तो हम एक टिश्यू से जो है ज़्यादा लोगों को सुविधा दे सकते हैं। तो यदि हम 50,000 डोनेशन कर रहे हैं तो हम उससे जो है 1,00,000 लोगों को जो है सुविधा दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट ए टाइम जो है ऐसे मरीज़ एक साथ होते नहीं हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ ज़्यादा मरीज हैं, जहाँ लोग वेट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम करके एक दिन में 2-3 सर्जरी साथ में हो सकती है।
1: तो मैक्सिमम जो है दो आँख से 6 लोगों को बेनिफिट पहुंचाया
0: जाए, मेनली 4 लोगों को। जो तीसरा लेयर होता है वो कभी कभी हम स्टेम सेल के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ हो सकता है जो है। क्योंकि हर आँख में एक जो है स्टेम सेल होता है, तो बहुत से लोगों में स्टेम सेल की डिफिशेंसी हो जाती है, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
1: आपने स्टेम सेल की बात की डॉक्टर साहब, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, AI की भी बात हुई, AI स्पेक्टिकल्स आ रहे हैं, तो जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इस फील्ड में वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि ये जो डोनेशन के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं वो लिस्ट कहीं छोटी हो जाए? तो क्या आर्टिफिशियल कॉर्निया की जो बात चल रही है उसके बारे में सक्सेस क्या है?
0: इसमें शालिनी जी, जो साइंस तो एडवांस कर ही रही है, जो चीज़ आज से पहले सोच नहीं सकते आज हो रही है। तो इसमें जो रिसर्च चलते आ रहा है, एक जो मेन रिसर्च हमारी हुई है उसमें जो आँखों के अंदर के सेल्स होते हैं, जैसे इंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिसके कारण से पुतली बिल्कुल क्लियर रहती है, उन सेल्स को हम कल्चर करके, लैब में कल्चर करके उनको आँखों में इंजेक्ट कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं छोटे से दो टिश्यू से जो है बहुत सारे सेल्स हम कल्चर करके बड़े सारे लोगों को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी सक्सेस रेट भी बढ़ती जा रही है। अब जो है पिछले 15 साल के रिसर्च के बाद जापान में और US में और सिंगापुर में अब ये कल्चर्स होके इंजेक्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया है, उससे भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा जो है बायोसिंथेटिक कॉर्निया लोगों ने बनाई है, जो कि ऐसा मटेरियल होता है जिससे बॉडी में कोई एंटीजन रिएक्शन नहीं होता, इनर्ट होते हैं ये और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ये जो है लैमिलर प्रोसीजर जो हम बात कर रहे थे, एक लैमिली में इसको लगा सकते हैं, जो ऊपर की लैमिली है। पूरा कॉर्निया अभी तक हम सक्सेसफुली बना नहीं पाए हैं। तो बहुत से ऐसे रिसर्च हो रहे हैं जहाँ पर बायोसिंथेटिक कॉर्निया बना रहे हैं, जो पोर्साइन मटेरियल से या फिश बोन से, इन मटेरियल से बन सकती है। लेकिन अभी उसमें भी काम हो रहा है कि कैसे पूरा कॉर्निया बना सकते हैं। और कुछ लोग, जैसे हमारे इंडिया में रिसर्च हो रही है, LP प्रसाद ग्रुप ने बनाया है, जहाँ पर एक ऐसा ड्रॉप बनाया है जो कि डिफेक्ट को फिल कर सकता है। तो इसमें भी काम चल रहा है। तो एक तरह से काफ़ी उन्नति हुई है रिसर्च में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी कॉर्निया अभी तक बना नहीं पाया है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, कोई ऐसा ऑपरेशन जो सक्सेसफुल रहा हो जिसमें कि डोनेटेड आई ना यूज़ की गई हो, ऐसे केसेस हुए हैं?
0: काफ़ी केसेस हैं। आरपी सेंटर में मेरे टाइम में हमने जो है करीब 100 लोगों को जो है पार्शियल ट्रांसप्लांट किए हैं बायोसिंथेटिक कॉर्निया से।
1: तो वो सक्सेसफुल है
0: और काफ़ी काम हो रहा है। स्पेशली ऐसी बीमारी होती है जिसमें आगे की लेयर ख़राब हो जाती है, जैसे कॉर्नियल ओपेसिटी हो गया, केराटोकोनस हो गया, वहाँ पर आगे की लेयर को इसको लगा सकते हैं कि उसके ऊपर से सेल ग्रो कर जाती है लेकिन पीछे वाली सेल ग्रो नहीं करती है। तो जो लैमिनर प्रोसीजर है, एंटीरियर लैमिनर प्रोसीजर, उसमें ये यूज़ हो रहा है सक्सेसफुली
1: जी। तो बहुत आगे
0: इसमें, लेकिन इसमें जो है इंडिया में बनती नहीं है, बाहर से ये मटेरियल आती है तो काफ़ी कॉस्ट पड़ता है, और जो एम्स लाइक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मरीजों को उसको पे नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर ये हो सकता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब यहाँ पर एक और गीत सुनेंगे, डॉक्टर साहब की पसंद का ही ये गीत है, और आगे कार्यक्रम में हमें इंतज़ार है आपके प्रश्नों का। आप प्रश्न करें क्योंकि 4 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत सारी बातें हमें आज पता लग रही हैं आई डोनेशन के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था और बहुत अच्छा मैसेज था डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने ये गीत हमें और हमारे श्रोताओं को सुनवाया। और बिल्कुल ये दिन बीत जाएगा, माटी के मोल हो जाएगा, ये शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बहुत खूबसूरत बात है कि अगर हम अपने अंग यहाँ पर दान देकर जा सकें तो जो लोग रह जाते हैं
2: उससे अच्छी बात हो
1: नहीं सकती, अच्छी बात नहीं हो सकती, वो भी अपने जीवन को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं।
2: हम कहते हैं ना, हम जो है कुछ अपने सोसाइटी को, अपने परिवार को कुछ दे के जाना चाहते हैं। पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, घर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आपकी जो दान होगी वो हमेशा याद रखेंगे। तो अंग दान या जो कॉर्निया का जो दान करते हैं उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती जो आपको जो है आने वाले कई पीढ़ियों में आपका नाम रहेगा।
1: बिल्कुल, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, हेलो,
3: नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए।
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार भैया।
3: डॉक्टर साहब मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी आंखों में आरपी है। आपने बताया ये चश्मा जो है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये चश्मे को लगा के क्या रोड पे चल सकते हैं, कुछ फायदा होगा?
2: उसके लिए अलग से AI बेस चश्मा होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वो। जो है इमेज जो है आपके उसमें ना रेटिना में बना सकता है, लेकिन वो बहुत शार्प नहीं होता है। एटलीस्ट 1 to 2 meters तो आपको थोड़ा बहुत जो है प्रोग्राम करा सकता है आपको।
3: जैसे मैं सुबह घूमने के लिए पार्क पार्क में जाते हैं तो 2-4 meters तक की रोशनी कुछ बढ़ सकती है?
2: बढ़ सकती है।
3: डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, इसका अधिकतम कॉस्ट कितना होगा?
2: कॉस्ट का हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरह के AI ग्लासेस आपको सूट करता है। इट कैन रेंज फ्रॉम 20,000 से लेकर 2-2.5 lakh तक के होते हैं लेंसेज जो है।
1: और ये हमें मैसेज भी एक आया है, नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने आप यहाँ आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे आपसे कि जागरूकता के लिए क्या ग्राम स्तर, निगम, नगर निगम स्तर या राज्य स्तर पर कुछ काम चल रहा है सरकार की योजनाओं पे?
2: हाँ, ये तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ब्लाइंडनेस है उसके ऊपर ही मुहिम हो। तो ब्लाइंडनेस बड़े सारे कारण से हो सकता है, आपको पता ही है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिसका कि हम जो है पुतली का ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस गांव में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल में बहुत कम है। तो उसमें जो आजकल की जो मुहिम है, हम जो है गाँव के लेवल में वहाँ के आशा वर्कर उनको हम जो है एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आप जो है कॉर्नियल ओपेसिटी

0: या आंखी की पुतली की सफ़ेदी, कैटरैक्ट की जो है कैसे उसका जो है जांच कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इनको जो है इस तरह की बीमारी है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र करने के लिए इंसेंटिव देते हैं हम लोग। तो इनकी ट्रेनिंग आजकल हो रही है और साथ साथ में ऐसे एजुकेशन मटेरियल उनको देते हैं जहाँ पर जो है डायग्राम बना होता है जिसमें आगे की पुतली है उनका जो है उसमें सफ़ेदी दिखाते हैं, वो जो है लोगों को सिखाने के लिए काफ़ी कारगर हो रही है। और इनफैक्ट जो है ये जो प्रोग्राम है नेशनल फोर्टनाइट का जो है सरकार की तरफ से जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जाता है कि जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम आज 2 हफ्ते में ज़रूर करिए जिससे कि हर एरिया में जो है इसकी जानकारी बढ़े।
1: और सर रेडियो डॉक्टर भी यही कर रहा
0: हाँ हाँ रेडियो डॉक्टर तो
1: है
0: है, इसका पहुँच तो इतना ज़्यादा है कि मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे कहीं पर, कहता है आपको रेडियो डॉक्टर में सुना था। तो रेडियो का, एफएम का स्पेशली जो है हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा रीच है। जो लोग कहते हैं कि टेलीविज़न आ गया, रेडियो का जो है श्रोताएँ कम हो गई, इनफैक्ट ज़्यादा ही हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है।
1: चलिए, थैंक यू सर। और एक इस बीच श्रोता जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो
2: जी नमस्कार,
1: जी नमस्कार,
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब, बताएं क्या पूछना है।
2: मेरा पूछना है कि जब हम घर से बाहर निकले तो क्या हमें धूप का चश्मा लगाना ही चाहिए, और ये फोटोक्रोमेटिक चश्मे ये क्या होता है, कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद।
0: देखो ऐसा है कि यदि आपके शहर में या आपके एरिया में ज़्यादा रोशनी है, सनलाइट ज़्यादा है और आपको रेडिएशन होने के चांस ज़्यादा है, तो सन ग्लासेस हमेशा फ़ायदा करते हैं। कुछ लोग जिन्होंने अभी ऑपरेशन करा रखा हो या जिनको लाइट से ज़्यादा परेशानी होती है तो उनको सन ग्लासेस ज़रूर पहनने चाहिए। सन ग्लासेस के बड़े सारे टाइप के होते हैं, मेनली उनको फ़ायदा होता है जो ऐसे एरिया में जाता है जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा हो रहा होता है। यदि आप सी शोर में जा रहे हैं या हिमालय में जा रहे हैं जहाँ बर्फ़ पड़ी हो, तो वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट ए रेज ज़्यादा होते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन वाले सनग्लासेस लेने चाहिए। जहाँ तक फोटोक्रोमेटिक लेंसेज हैं, वो भी उन्हीं को फ़ायदा करते हैं जिनको लाइट से ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, जिनकी पुतली थोड़ी सी बड़ी होती है, पुतली काम नहीं कर रही होती है, या जिनको काला मोतिया हो, या जिसे ऑप्टिक नर्व की बीमारी हो, या पुतली में इन्फ्लेमेशन हो, तो वहाँ पर जो है ये जो है ऐसे लेंसेज होते हैं जैसे आप लाइट में आते हैं तो ये लाइट में जो है कलर चेंज कर देते हैं, और जैसे आप डार्क में जाते हैं तो कलर फेड हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो सन ग्लासेज जो अपना कलर जो है चेंज नहीं करते हैं, जैसे डार्क में जाएंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, तो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज इस मामले में काफ़ी कारगर सिद्ध है
1: जी। तो आई केयर पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने अभी चश्मे की बात की, किस तरह का होना चाहिए। एक प्रश्न है हितेंद्र दास जी का, आसाम से आया है, कि क्या न्यूट्रिशन भी इसमें हेल्प करता है, क्योंकि हम बात करें डोनेशन की तो हम बचाव की भी बात करें कि
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे अच्छे हेल्थ के लिए एक बैलेंस्ड डाइट और अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी है। सिमिलरली आँखों के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विटामिन डिफिशेंसी होना आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आपने सुना होगा विटामिन ए डिफिशेंसी जो है आँखों की पुतली को गला सकता है, ख़राब कर सकता है। इनफैक्ट बच्चों में सफ़ेदी जो आँख के पुतली में आ जाती है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए डिफिशेंसी होता है। पर फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में विटामिन ए डिफिशेंसी, एक्यूट डिफिशेंसी कम हो गया है, लेकिन अभी भी लोग आते हैं जहां पर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन और विटामिन डिफिशेंसी साथ में चल रही होती है। विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी जो है आंखों की पुतली ख़राब हो सकती है, पीछे के नसें ख़राब हो सकती है। स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनको जो है हमेशा विटामिन B12 का जो है जांच करना चाहिए लेबल। यदि कम है तो उनका इंजेक्शन ले सकते हैं। तो आप देख समझ सकते हैं कि बैलेंस डाइट, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, पिगमेंटेड फ्रूट्स बहुत ही कंपल्सरी है, और दूध का पीना भी बच्चों के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। तो ये आप देखेंगे न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट में, क्योंकि लकीली जो है जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, बहुत से लोग जो है आजकल ऐसे फूड खाते हैं जिसमें विटामिन होते ही नहीं है, फास्ट फूड के चक्कर में रहते हैं। तो बैलेंस डाइट के लिए जो है हमें एजुकेशन बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है
1: जी। और इसीलिए शायद उन्होंने ये प्रश्न किया है, क्योंकि न्यूट्रिशन आजकल हम देख रहे हैं नई जनरेशन जो है वो उतना ध्यान नहीं दे रही है टाइम पर भी, खाने की क्वालिटी पर, क्योंकि एक ऑर्डर करके मंगाना और डिलीवरी कराना, वो सारी चीज़ें चलन में हैं। पर ये जो आप बोल रहे हैं टेस्ट कराते रहना चाहिए, ये कितनी फ्रीक्वेंसी में कराना चाहिए?
0: एक्चुअली साल में एक बार तो होनी चाहिए टेस्ट जो है। हम लोग जो है अपना ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन सब देख लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ देखते नहीं है। जैसे आपको जो है विटामिन डी लेवल देखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, विटामिन बी 12 की लेवल देखना ज़रूरी है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो आपको जो है आपके बॉडी को सुरक्षित रखती है। तो साल में एक बार रूटीनली टेस्ट होना ज़रूरी है, स्पेशली वेजिटेरियंस को, और जो लोग जो है बाहर नहीं निकलते हैं रूम के अंदर, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, काम जो है रूम के अंदर ही होता है, सन एक्सपोजर कम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आंखों में इसका जो है बहुत असर हो सकता है।
1: तो ये जो दोनों टेस्ट आपने बताए ये तो ब्लड से हो जाते हैं डॉक्टर साहब, विटामिन डी और विटामिन बी 12, तो अगर ये सही आते हैं क्या उसके बाद भी आँख को फिजिकली चेक कराना चाहिए क्या?
0: डेफिनेटली आँखों का चेक करना तो बहुत ही कंपलसरी है। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल में स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम कंपलसरी है आजकल, होना चाहिए हर साल में एक बार। सिमिलरली जो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में आँखों की बीमारी है उनको भी रूटीनली साल में एक बार चेक करना चाहिए। यदि आप 40 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आपको पास के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको डायबिटीज़, ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट, पीछे डीजेनरेटिव बीमारी रेटना में आ सकती है। तो साल में एक बार चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को बीमारी है उनको तो 6-6 महीने में चेक कराना चाहिए, स्पेशली काला मोतिया और डायबिटिक पेशेंट्स को।
1: जी जी, इस पर हम अलग से कार्यक्रम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न इस बारे में पूछना हो तो डॉक्टर साहब जब अगली बार आएंगे तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय है कि हम आपसे ये भी जान लें कि ये जो आई बैंक होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि आप आई बैंक के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, तो थोड़ा सा बता दें।
0: नहीं, आई बैंक जो है एक पूरे इस जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का एक मेन एपेक्स सेंटर है जहाँ पर सारे काम होती है। तो एक पहला काम तो यहाँ पर जो है टिश्यू जो कलेक्शन होके आते हैं उनका प्रोसेसिंग करना, उसको जो है ऐसे मीडिया में रखना जिसे हम प्रिजर्वेटिव मीडिया कहते हैं, जहाँ पर आंखों को सुरक्षित हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, और इसको ऐसे जगह में ट्रांसपोर्ट करना, ऐसे जगह में सप्लाई करना जहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। इसके साथ साथ में आई बैंक टेक्नीशियन होते हैं, आई बैंक के काउंसलर होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की फैसिलिटी होती है। तो ट्रेनिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई बैंकिंग का, और साथ में जो है इनका ये काम होता है अवेयरनेस बढ़ाना। तो आप जो हम ये कर रहे हैं वो आई बैंक का काम है कि उनके पर्सनल जो है हॉस्पिटल जाएं, लोगों से बात करें, वहाँ के लोगों को सिखाएं कि आई डोनेशन हो सकता है। सिमिलरली हम जो है प्रोग्राम करते हैं RWX से मिल करके, वहाँ जाके जो है एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। तो आई बैंक एक तरह से देखा जाए तो ये लोग सोचते हैं केवल वहाँ टिश्यू होगा और कलेक्शन होगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग, एजुकेशन और स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आई बैंक जो है दो लोगों से जुड़ा रहता है, हॉस्पिटल से जुड़ा जरूर रहता है जहाँ सर्जरी होती है, साथ में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जुड़ाना जरूरी है क्योंकि कल्चर हर चीज़ का होना ज़रूरी है, और दूसरा जो है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पर टिश्यू का जो है एग्जामिनेशन हो सकता है। और इसका भी साल, हर साल तो नहीं होता, हर 3 या 5 साल में एक्रीडेशन होता है आई बैंकिंग का। एक ऐसी संस्था है जो आई बैंक को एक्रीडेट करती है कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है होटा के एक्ट के अंदर होता है, और हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना ज़रूरी है। और कोई भी आई बैंक यदि 5 साल में 100 से कम ट्रांसप्लांट कराता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है।
1: अच्छा।
0: आज के डेट में हमारे देश में करीब करीब 400-500 आई बैंक्स हैं, लेकिन 10 या 15 ऐसे आई बैंक हैं जो 90% टिश्यू सप्लाई करती है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे आई बैंक पूरी पोटेंशियल काम नहीं कर रही है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है, उनको हम हेल्प ही करते हैं पैसे से भी, ट्रेनिंग से भी, जो है आई बैंक जो है एक स्टैंडर्ड का बन जाए जहाँ पर अच्छा काम हो।
1: बिल्कुल। और चलें इससे पहले, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट विषय है और आज हमने एक खास उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया है, तो क्या एक संदेश आप देकर जाना चाहते हैं? कई सारे हमारे लिसनर होंगे जो आपकी बातों से प्रेरित हो रहे होंगे और डोनेशन देना चाह रहे होंगे, या वो जो कर भी चुके हैं, क्या एक खास मैसेज आज के दिन रहेगा डॉक्टर साहब?
0: मेरा खास मैसेज तो ये होगा कि पहले तो जानकारी अपने लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए भी ज़रूरी है, और प्लेस करना बहुत अच्छी बात है कि संकल्प लेना कि हम अपनी आँखों का दान करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार को भी जो है जागृत करना है कि मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा जो है लोगों का कहना चाहिए कि आंखों का डोनेशन किसी भी एज में हो सकता है। 1 साल के बच्चे का डेथ हो जाए या 100 साल के आदमी का डेथ हो जाए, जो आंखों का जो है डोनेशन हो सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है,

0: सरकार को और जो एनजीओज में काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना है कि एक आदमी जो है तीन आदमी को मैसेज देता है और तीन आदमी को मैसेज देते हैं, जो हमेशा जो है इन्फॉर्मेशन बढ़ते चले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आदमी जो है खुद एक एम्बेसडर बने, स्पेशली जिन लोगों को खुद का ट्रांसप्लांट हो गया हो। मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में जिनको हम डोनेट ट्रांसप्लांट करते हैं उनको पता भी नहीं है कि कहाँ से टिश्यू आती है, लेकिन वो चाहते हैं उनका ऑपरेशन हो जाए। हम चाहते हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है वो खुद आगे आए, वो समाज में आके बोले कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, मुझे दिख रहा है, आपको
1: जी
0: आगे आना चाहिए। तो इससे अच्छा जो है एक सिंबलाइजेशन हो नहीं सकती है।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो आइए हम सब मिलकर ना केवल आंखों का दान करें बल्कि इसके प्रति जागरूकता भी फैलाने की कोशिश करें। जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं, याद रखिए हम सब मिलकर एक नई रोशनी फैला सकते हैं। आज बहुत सारी जानकारी नेत्रदान से संबंधित इस कार्यक्रम में डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल से हमें मिली। हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर साहब का। आप फॉर्मर चीफ हैं RPI सेंटर एम्स नई दिल्ली के, जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब समय निकाल कर यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत
1: और
0: धन्यवाद शालिनी जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही मोटिवेटिंग रहता है सबके लिए, हम लोगों के लिए भी जो है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे श्रोता हैं वो अपने आप को खुद ही एक एम्बेसडर समझें और हमारे बातों को आगे फैलाएं।
1: बिल्कुल हम सब यही चाहते हैं। और डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देंगे। और अब मुझे यानी अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया है। यूक्रेन पर हाल में हुए रूस के हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। पार्थिव शरीर जल्द भारत लाया जाएगा। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। सरकार ने प्याज के मूल्य पर नियंत्रण के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Sagar ki gehraiyon se पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
6: आकाशवाणी रेनबो।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
8: This program is sponsored by Disha Foundation.
9: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ SR यानी संतोष राव। दोस्तों, हर स्कूल में बच्चे टीचर्स डे की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। दोस्तों, नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा हो या कॉलेज में पढ़ने वाला युवा, हर बच्चा ये जानता है कि उनके जीवन को संवारने और निखारने में माता पिता के बाद अगर कोई है तो वो है उनका टीचर।

जी हाँ, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा और कामयाबी का पाठ पढ़ाने वाले ये टीचर्स इन बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, आइए सुनते हैं आदमपुर पंजाब की नवदीप कौर और दिल्ली की योगिता से।

मैं नवदीप कौर, प्राथमिक शिक्षिका, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, एयरफोर्स स्टेशन, आदमपुर, पंजाब से। मैं आप सबके साथ ये विचार साझे करना चाहती हूँ कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से क्या चाहता है या क्या उम्मीद करता है। तो मैं पर्सनली अपने विद्यार्थियों से यही उम्मीद करती हूँ कि सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक अच्छे इंसान बने। और वो छोटी छोटी आदतें उन्हें घर से तो सीखने को मिलती ही हैं, लेकिन एक शिक्षक उन्हें और अच्छे से सिखा सकता है। जैसे मेरी कक्षा में यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे हैं, कोई एक बच्चा मान लीजिए गिर गया और दूसरे बच्चे उसको देख के हंसे नहीं, उसकी मदद करें, उसको उठाएं। कोई एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो वो बच्चे उसको देख के हंसे नहीं, उसका मजाक ना बनाएं, बल्कि उसके साथ बैठें, उसे पढ़ना सिखाएं। तो यही बात है और यही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य, मैंने जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है यही रखा हुआ है कि विद्यार्थी ऐसे बने, एक अच्छे इंसान बने। क्योंकि जब वो ये धीरे धीरे अच्छी आदतें अपने अंदर डालेंगे ना, वो फिर अपने आप ही पढ़ने में, खेलने में, अनुशासन में, हर चीज़ में अच्छे अपने आप होते जाएंगे। तो एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, मुझे ये लगता है कि मैं यही उम्मीद करती हूँ अपने विद्यार्थियों से कि वो याद रखें कि मेरी मैम ने ये सिखाया है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें लोगों की मदद करनी है, हमें सभी से सहानुभूति रखनी है। यही मेरा मोटो है एज अ टीचर।

0: मेरा नाम योगिता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और लगभग 26 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जनरली जब हम क्लास में होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं, तो हम बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, टीचर की बात को ध्यान से सुने, क्वेश्चंस पूछें। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा और आगे हम जाके देखें, तो मैं अपने बच्चों से ये चाहती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि वो सही गलत में फर्क करना सीखें। हालांकि प्राइमरी सेक्शन में बच्चे थोड़े छोटी एज के होते हैं, लेकिन हमें गुड वैल्यूज, हम लोग सभी समझते हैं कि हमें उनको बचपन से ही वो आदतें डालनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि बड़े होने के बाद एक इंसान के अंदर डेवलप हो। तो वो सही गलत में फर्क करना सीखें, जो चीजें उनको मिली है उसको एक्नॉलेज करें और उनको वैल्यू करना भी सीखें। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी रखते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो किसी भी चीज के दोनों पहलू को सीखें। कि अगर वो स्पीड सीख रहे हैं तो पेशेंस रखना भी सीखें, अगर वो स्मार्ट बन रहे हैं तो स्किल्ड भी बने, अगर बोलना सीख रहे हैं तो सुनने की भी कैपेसिटी हो। और आजकल बच्चों को हम देख ही रहे हैं कि मुंह खोलते ही उनको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, तो मुंह मांगी चीजें उनको मिल रही हैं, तो वो एडजस्ट करना भी सीखें। मॉडर्न बने लेकिन अपने वैल्यूज और कल्चर को ना भूलें। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मैं अपने बच्चों को शरीर और मन दोनों तरफ से हैप्पी और हेल्दी देखना चाहती हूँ।
1: जी हाँ, सादर प्रणाम है सभी टीचर्स को जो बड़ी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी से संवार रहे हैं बच्चों का भविष्य। दोस्तों, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, टीचर्स के हौसले और जज्बे में कभी कमी नहीं आती और वे निरंतर अपने स्कूली बच्चों को यही प्रेरणा देते रहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ना है।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
0: विनीता जी, अभी आपने आदमपुर पंजाब से नवदीप और दिल्ली से योग्यता की बातें सुनी और उनके जज्बातों को गहराई से समझा। एक बात बताइए, एक टीचर एक बच्चे के जीवन पर कितना प्रभाव डालता है?
1: संतोष, टीचर्स तो भैया बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं बच्चों पर, हम पर भी डाला। मुझे याद है मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी वो बहुत ही प्यार से बात करती थी, बहुत ही मुझे ढाढ़स बंधाती थी, तो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ती थी
0: जी।
1: दूसरी तरफ मेरी गणित की टीचर थी जो सारे वक्त चीखती थी, चिल्लाती थी, तो मुझे गणित से नफरत हो गई थी। मतलब इतना प्रभाव है संतोष के या तो टीचर की वजह से हमें वो सब्जेक्ट इतना पसंद आता है या उसी टीचर की वजह से उस सब्जेक्ट से हम नफरत करते हैं
0: जी।
1: मुझे याद है मेरे एक भाभी हैं, वो अपने बच्चे को एक इंटरव्यू में लेके गई थी, बहुत बड़ा स्कूल था, मुश्किल से एडमिशन मिलती है, बच्चे को सब कुछ आता था लेकिन इंटरव्यू के टाइम में उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो जब माता पिता उसको लेकर आ रहे थे, उसे बोला कि बेटा आपको तो सब पता था, आपने क्यों नहीं आंसर किया, क्यों नहीं जवाब दिया? तो बच्चे ने बोला वो गुस्से वाली लग रही थी। तो एक छोटा बच्चा जो सबसे पहले अपने स्कूल में दाखिला ही ले रहा है, टीचर के अभाव से ही पता लग जाता है उसको
0: जी
1: कि वो टीचर को पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो टीचर्स को हम अध्यापक बोलते हैं, मैम बोलते हैं, सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, और माता पिता के बाद वही तो है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं, साहस बांधते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और विशेषकर आज के संदर्भ में जब परिवार अधिक से अधिक संख्या में परेशान हैं, तो उसका जो असर है वो बच्चे पर पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और टीचर ही है जो सबसे पहले पहचान लेता है या लेती है कि ये बच्चे की जो हालत है या इस बच्चे का जो परिस्थिति घर में है, परिवार में है, वो सही नहीं है। और वो फिर माता पिता को बुलाकर उनसे बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ टीचर्स मुझसे बात कर रही थी, तो वो बता रही थी कि आजकल बहुत सारे जवान परिवार हैं जो कि टूट गए हैं, उनका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। तो बच्चे के अंदर इतना क्रोध होता है और वो उसको जाहिर नहीं कर पा रहा, और उस क्रोध को लेकर वो टीचर के पास स्कूल में आता है। तो टीचर्स बता रही थी कि कई बच्चे इतने गुस्से से भरे होते हैं लेकिन वो इजहार नहीं कर पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे कि उनको गुस्सा किस बात का है। तो या तो वो गुस्सा टीचर पर उतारते हैं या बाकी बच्चों को मारते पीटते हैं। तो ऐसे बदलते हुए, तेजी से बदलते हुए संदर्भ में
0: जी,
1: टीचर्स की जिम्मेवारी और भी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे को पढ़ाना तो है ही, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसको कैसे हैंडल करना है ताकि वो शांति से, अच्छे तरीके से, एक शांत मन से पढ़ सके। तो मुझे ये बताया जा रहा है आजकल के टीचर्स को आजकल काउंसलर्स भी बनना पड़ता है। तो जब हम टीचर्स डे का ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम सारे टीचर्स को, सारे अध्यापकों को, सर मैडम सबको सलाम करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आप लोगों की, आप ही हैं तो हमारे देश की नींव रख रहे हैं, नींव को तैयार कर रहे हैं, आप ही हैं जो हमारे भविष्य को संवार रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनेंगे।

0: जी हाँ, इंसाफ की डगर पर चलकर, देश को तरक्की की डगर पर ले जाकर अपने अपने टीचर्स के सपनों को पूरा करना ही इस टीचर्स डे पर बच्चों की तरफ से होगा टीचर्स के लिए एक बड़ा तोहफा। तो आइए इस टीचर्स डे पर हम सब ये संकल्प लें कि हम सब अपने टीचर्स की सिखाई हुई सीख को अपने जीवन में उतारेंगे और हमेशा अपने टीचर्स को देंगे आदर और सम्मान। दोस्तों, इस आने वाले टीचर्स डे पर आप अपने किस टीचर्स के लिए विश करना चाहते हैं या उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए हमें फोन या मैसेज के द्वारा 7678438471 पर। जी हाँ, 7678438471। आप अपनी बात ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी हमको भेज सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 7678438471 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी टीचर्स को टीचर्स डे की शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। वेंसडे का ये बहुत ही खास एडिशन होता है अल्फाजन का, जहां हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी इस समय है बहुत ही ज्यादा हैपनिंग प्लेस, क्योंकि जी नया अकेडमिक सेशन जो है ना वो तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही बिजी कल्चरल कैलेंडर जो होता है ना वो भी शुरू हो जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं ना उनके अपने भी बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, सोसाइटियों के फंक्शंस होते हैं, फेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अब से जो शुरू होता है ना एक कैलेंडर, इससे यूनिवर्सिटी का और हर कॉलेज का अपना अपना इंडिविजुअल, वो दिसंबर जनवरी फरवरी तक रहता है बहुत ही ज़्यादा बिजी। और इस सब के बीच में एकेडमिक्स भी हैं, उसके साथ साथ आपने जो सपने देखे हैं उन्हें भी पूरा करना है। और हाँ, थोड़ा टाइम अपनी इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी तो निकालना है कि ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं अब जब आप कॉलेज में आ गए हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे यही छोटी छोटी बातें जो है ना हम आपके लिए समेट कर लाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोनों से, और इसमें मदद करते हैं हमारे सहयोगी। आज हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुंधरा एनक्लेव में स्थित है ये, और वहां पर उन्होंने वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स से की बहुत सारी यू नो अ वेरी वेरी वेरी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर बातचीत, वो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। आप सुनते रहिए मेरा ये बहुत ही खास पसंदीदा प्रोग्राम एंड ऑब्वियसली आप सबका भी बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, और हम आपको लिए चलते हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज।
2: हाय, तो अभी मैं हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, और अब इनसे मैं कुछ ऐसे सवाल पूछने वाली हूँ जिसके ज़रिए इनके बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन।

0: इंट्रोडक्शन लेते हैं और इनसे फिर सवाल का जवाब भी लेते हैं। तो पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आपको किसी हालत में ऐसे आप आ जाए कि आपको अपने फोन का पासवर्ड बताना ही पड़ेगा, तो किसको बताओगे, मम्मी को या फ्रेंड को? विल स्टार्ट फ्रॉम यू।
1: हेलो, मेरा नाम साक्षी है और मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। अगर किसी हालत में मुझे अपना पासवर्ड बताना पड़े तो मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे पता नहीं रहता मेरा सामान कहाँ है, जबकि मैंने वो सामान रखा है, और मैं बस अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी वो कहाँ है, और वो बिना कुछ जाने कहती है वहाँ पे है, और मैं वहाँ चेक करती हूँ तो वो होता है।
2: हेलो, मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। अगर मुझे अपना पासवर्ड किसी को बताना पड़े तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताऊँगी, क्योंकि उसे हमेशा से ही मेरे बारे में सब कुछ पता रहा है एंड सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मैं उसी को करती हूँ।
3: हाय, मैं प्राची भंडारी। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगी पासवर्ड मम्मी से ज़्यादा।
4: मेरा नाम रौनक पाल है, मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। और जैसा आपने सवाल पूछा, तो जिस परिवार से मैं आता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जजमेंटल हैं, और फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा कैजुअल हो पाते हैं, वो ज़्यादा जज हमें नहीं करते हैं। हालांकि पीठ पीछे क्या चलता है हमें इसका नहीं पता है, लेकिन जो सामने दिखता है उससे यही लगता है। और बाकी जो पासवर्ड की बात रही, उसमें अगर मैं बताऊं तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रह रहा हूं, और मम्मी पापा का काम थोड़ा सा आउटर स्टेट्स में चलता है। सो आई वुड चूज माई बेस्ट फ्रेंड ओवर माई पेरेंट्स।
5: मेरा नाम भूमि विजय है और मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से हूँ। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो मेरा आंसर इंस्टेंटली मेरी मम्मी ही होगा।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में और मेरे साथ हैं यहाँ के कॉलेज के बहुत ही कूल कूल स्टूडेंट्स। तो आइए इन कूल स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही कूल वार्तालाप करते हैं। जानना चाहेंगे आपसे, पहली नज़र का प्यार सच्चा है या मोबाइल एप्स के फिल्टर का धोखा?
6: हेलो, मैं गर्विता। मेरे हिसाब से पहली नज़र का प्यार एक धोखा है।
7: पहले तो नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं गर्विता की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि एक 2D पिक्चर से कभी इंसान की पर्सनैलिटी जो रियल लाइफ में है वो जानी नहीं जा सकती। उसके लिए उसके साथ कुछ समय तक बिताना पड़ेगा जिससे उसकी असली पर्सनैलिटी सामने आए।
8: सो आई एम अनाहिता, आई एम फ्रॉम जर्नलिज्म, एंड मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर हम ज़्यादा टाइम किसी के साथ बिताते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी छुप नहीं सकती है फॉर मी, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी फेक कितनी ही देर तक कर सकता है। एंड रही बात मूवीज़ की, तो रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। तो ऑफ कोर्स आई मीन पहली नज़र में प्यार होना, तो वो पहली बार प्यार नहीं होता है।
9: हाय, मेरा नाम रिया है, एंड जैसा कि अनाहिता ने कहा, उसने बिल्कुल सही कहा कि रियल लाइफ एंड रील लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। बिकॉज एक पर्सन रियल लाइफ में खुद को एज अ फेक पर्सनैलिटी दिखा सकता है, बट रियल लाइफ में एज वी गेट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन, हमें उसके बारे में और पता चलता है कि वो कैसा है। इसीलिए हमें रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सनैलिटी के टूवर्ड्स।
0: कि कैसे पता किया जाए कम से कम समय में कि इंसान की रियल पर्सनैलिटी क्या है?
10: नमस्कार, मेरा नाम साहिल है, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। तो टिप्स तो मैं यही दूंगा कि अगर हमें किसी इंसान को पहचानना है तो सबसे पहले हमें उनसे सवाल करना शुरू करना चाहिए। जितने ज्यादा हम उनसे सवाल करेंगे उतनी ज्यादा जानकारी हमें उनसे मिलेगी।
0: रिया, मुझे ये बताओ, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा कि सवाल पूछो और ये सवाल पूछो, अब इन सवालों के जवाब अगर कोई सामने वाला गलत ही देता चला जाए।
11: नमस्कार, मेरा नाम रिया बानी है, मैं फर्स्ट ईयर जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हूँ। आई फील अगर हम उस पर्सन को वी क्वेश्चन देम अगेन एंड अगेन, तो कभी कभी क्वेश्चन करते करते भी अ पर्सन कैन नॉट लाई मोर देन इनफ, मतलब उसकी एक लिमिट होती है। एंड अगर वो झूठ भी हमसे बोल रहा है, सो झूठ पे झूठ अगर वो कितने ही झूठ बोल देगा, एंड अगर बना भी देगा, सो वी कैन आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन, जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है उसके लिए, टू रिमेम्बर दैट उसी पॉइंट पे कि उसने उस आंसर का क्या, उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रखा था। वो आंसर अलग हो जाता है, सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है।
12: नमस्कार, मेरा नाम निकिता है, मैं जर्नलिज्म फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और इसने बात तो सही कही कि गुस्सा दिखा के इंसान की रियल पर्सनालिटी बाहर आ ही जाती है।
0: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन, जिस तरह से आप लोगों ने एक एक सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। तो अभी मैं हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज के कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ, और आइए अब जानते हैं बेस्ट फ्रेंड और रिलेशनशिप में से किसी एक को चुनना होगा तो किसे चुनेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम
13: हेलो, दिस इज रिया शर्मा। सो आई वुड चूज माय बेस्ट फ्रेंड बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप येट।
14: माई सेल्फ कनक शर्मा, आई एम फ्रॉम जर्नलिज्म ऑनर्स। इफ आई हैड टू चूज, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई वुड चूज माय बेस्ट फ्रेंड।
15: हाय, माय सेल्फ आखिर सिन्हा एंड आई एम फ्रॉम जर्नलिज्म ऑनर्स। और पर्सनली आई वुड चूज रिलेशनशिप बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप। बट मेरा ये मानना है कि इफ यू आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, फर्स्ट यू नीड टू बी फ्रेंड्स विद देम।
16: हाय, माय सेल्फ दीपांशा, आई एम फ्रॉम जर्नलिज्म ऑनर्स एंड आई वुड चूज माय बेस्ट फ्रेंड ओवर अ रिलेशनशिप।
17: हेलो, आई एम सुमित फ्रॉम बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, और मेरा थोड़ा मिक्स ओपिनियन है इस चीज पे। अगर अभी की बात करूं तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को चूज करूंगा, लेकिन अगर मैं किसी रिलेशनशिप में जाता हूं तो मैं अपना रिलेशनशिप चूज करूंगा।
0: थैंक यू सो मच फॉर सच लवली आंसर्स। थैंक यू। हाय, तो अभी मैं हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, और अभी मेरे साथ हैं इस कॉलेज के कुछ बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स। तो आइए इन सिंगर्स के परफॉर्मेंस को पहले एंजॉय करते हैं और फिर इनका इंट्रोडक्शन लेंगे।

0: लवली लवली लवली, बहुत ही बेहतरीन। तो अब जानना चाहेंगे कि इन बेहतरीन आवाजों के पीछे कौन है।
1: नमस्कार, मैं बर्नम।
2: एंड नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य बिंजोला।
0: ओके, और आप दोनों ही वोकलिस्ट भी हैं और आप दोनों ही गिटारिस्ट भी हैं।
1: बिल्कुल, हम दोनों म्यूजिक की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं। और ये दो जो गाने हैं उनमें से एक भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब का एक गाना है, गंगा बहती हो क्यों।
0: वो तो बहुत ही, मतलब माँ गंगा के लिए जितना इमोशनली आप लोगों ने गाया और जो कॉम्पोजिशन थी आपकी, वो सुपर, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अभी हमारे साथ है मजुक। मजुक नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से हैं और एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ की लोकल कॉम्पोजिशन हमारे लिए आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो मचुक, ऑल यूर्स।
3: दम हो रनंगी वक्त।

0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो माचुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग?
1: या सो द मीनिंग इज बेसिकली अबाउट इट्स अ लव सॉन्ग.
0: अच्छा, इट्स अ लव सॉन्ग.
1: या, इट्स अ लव सॉन्ग.
0: थैंक यू.
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन. और अभी जैसा कि मैंने कहा था, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. जी, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स जो है ना, जब हम इन स्टूडेंट्स के पास लेकर जाते हैं तो ये कभी भी ना

परेशान नहीं होते, इनके पास हमेशा उसके लिए कोई ना कोई जवाब होता ही है और वो जवाब हमें मिल भी जाता है। कितनी मज़े की बात है ना, कितना एक्सपोजर है आजकल के हमारे इन स्टूडेंट्स के पास में। इनकी जो रेंज है, चाहे वो ऑप्शंस की बात करें, चाहे इंटरेस्ट की बात करें, चाहे इनके सपनों की बात करें, उसका रेंज भी बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और यही वाइड रेंज और यही सारी बातें, सोच, टैलेंट, इन कॉलेजेस की मज़ेदार जो मस्तियां हैं, वो सब चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: पे हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची महाराजा अग्रसेन कॉलेज और वहां पे उन्होंने की बहुत सारी बातचीत। जी थोड़ी तो मैंने आपको सुनवा दी है, लेकिन अब जो होने वाली है ना बात, वो है थोड़ी सी खास, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्सर जो है हमारे इस प्रोग्राम में आपने नहीं सुना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ना हम पर्सनल जो कहते हैं ना कि एक पर्सनल टच की बात है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर एक उस लेवल पर उतर के बात कर रहे हैं। मतलब मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको सुनवा ही देती हूँ, बहुत ही खास बातचीत है। ख़ासतौर पर जितने भी पापा लोग हैं ना वो जरूर सुने, क्योंकि ये जेंसी जब इमोशनल होती है ना तो इसके इमोशंस का लेवल भी कुछ अलग ही होता है। आइए सुनते हैं।
1: तो अभी मैं हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ एंड नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ अभी यहाँ पर है सारे मेल स्टूडेंट्स। सो सवाल जो है वो बहुत इमोशनल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी फैमिली में मम्मी पापा ये दो लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम समय के साथ साथ अपनी मम्मी को तो फ्रेंड बना लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है पापा हमें हर बात पे डांटते हैं, हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, हमारी बातों को कई बार हमें लगता है समझते नहीं हैं, हालांकि हम अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो है जो हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पापा से, चाहे जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों या जितने भी आप पापा की बातों से सहमत ना हो, लेकिन मन ही मन जानते हैं कि पापा आपका भला चाहते हैं, आज आप अपने मन की बात अपने पापा तक पहुँचा दो। So we'll start from
2: there. Hi, मैं हूँ माधव अरोरा। सो मैम, इन मोस्ट ऑफ द केसेज आई डोंट नो वेदर ये एक प्री डिस्पोजिशन होता है या एक प्री अजम्पशन होता है बहुत से लोगों का, कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता और पिता के साथ उनकी दूरियाँ बढ़ती हैं या पिता के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट मेरे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ हूँ तो मतलब मेरी अपने फादर के संग क्लोजनेस और उतनी ही बढ़ी है। आई हैव ग्रोन वेरी क्लोज टू हिम एंड सिंस दिस इज एन ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्रेस समथिंग इमोशनल टू माई, क्योंकि मैं डैडी बोलता हूँ, सो आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्रेस कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी डैडी एंड आई रियली लव यू सो मच एंड आई थिंक दैट वट एवर माई ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस एंड एंडेवर्स दैट आई एस्पायर टू बी वेयर इन माई फ्यूचर लाइफ, योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, इंकरेजमेंट, गाइडेंस एंड लव विल डेफिनेटली टेक मी टू ऑल दोज काइंड ऑफ प्लेसेज एंड आई विल रियली सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स। सो थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है।
3: गुड आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ अगस्ता पवार एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। मैंने सोचा और मैंने अध्ययन किया है तो मैं मानता हूँ मेरे और मेरे पापा के बीच की दूरी बहुत है। हम बस दिन में 2-3 बार ही बात करते हैं। सुबह मैं उन्हें चाय के लिए पूछता हूँ, वो बता देते हैं उन्हें चाय चाहिए नहीं चाहिए, और रात में जब कॉलेज वो ऑफिस से आ जाते हैं और मैं कॉलेज से जाके चले जाता हूँ तो रात में खाने के लिए जितनी भी चपाती चाहिए होती है उसके लिए पूछता हूँ और गुड नाइट एक होता है। वैसे ये 3-4 ही बातें हो पाती हैं एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर। मैं बहुत इमोशनल भी कनेक्टेड हूँ, सारी बात बता देता हूँ मम्मी को। बट मैं एक दो चीज इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जिसमें मेरे को लगा कि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा मेरे से इमोशनली कनेक्टेड है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक CUET का जब एग्ज़ाम हुआ था तो 9 to 5 करते हैं और जो मेरा वो सेंटर पड़ा था वो बहुत दूर पड़ा था, 2-2.5 घंटे का ट्रैवल था कार से, तो उन्होंने तो कह देते कि सुबह मैं तेरे को भेज दूंगा और बाकी तू मेट्रो से देख ले। उन्होंने मेट्रो का रूट भी समझा दिया था। फिर 12-1 बजे मेरा पेपर शुरू हुआ, फिर मैं 5-5:30 बजे फ्री हुआ तो मेरे को लगा कि अब मेरे को खुद जाना पड़ेगा। मैं गया पर आई वाज शॉक टू सी कि भाई मेरे फादर खड़े हैं और पसीने में लथपथ थे बिल्कुल, तो वो मेरे को बहुत कनेक्ट हुआ। दूसरा स्कूल अटैचमेंट स्कूल में बहुत था पापा के साथ, बहुत कुछ चेस वेस सब खेलते थे, पर जब ये नीट का पेपर हुआ और मैं उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाया तो वो घर में 2-3 लड़ाई हुई, मैं दूर हुआ। पर अब मैं सोचता हूँ कि उनसे कोई बात करने वाला नहीं है मम्मी को छोड़ के, तो मेरे को रियलाइज़ होता है उनको भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए और मैं आज से मैं थोड़ा और ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि साल में 2-3 बार ही होता है मौका मिलता है जब है ना पापा को एक झप्पी देता हूँ मैं। हाँ। अपने बर्थडे पे, उनके बर्थडे पे और एक जो दिवाली पे जो गिफ्ट आता है ना। हाँ। और वो लेके कुछ आ जाते हैं अच्छा सा, जैसे ड्रोन लाए थे पिछले साल तो तब फोटो वोटो खींचने के लिए झप्पी, पर अच्छा फील होता है। मैं मानता हूँ और मैं पापा का इमोशनली कनेक्ट हूँ।
4: हाय मैम, माय नेम इज हेनरी एंड आई एम डूइंग माय फर्स्ट ईयर इन महाराजा अग्रसेन कॉलेज। और मैम मैं अग्री करता हूँ कि थोड़ा बहुत लड़कों का स्पेशली फादर्स से बॉन्ड थोड़ा दूर ही रहता है एज कम्पेयर टू मदर्स, क्योंकि मदर्स को क्या है वो अपना प्यार अफेक्शन अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है उनको क्या फील होता है, लेकिन एज अ मेल या फिर मेल कह सकते हैं कि फादर्स जो होते हैं वो उतना अच्छे से खुद को

0: इसके लिए कभी रोका नहीं करने से, जो वो चाहते थे कि एक बार अगर ट्राई करो, खुद करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तुम हर चीज़ में सक्सेसफुल ही हो। तुम फेल करोगे कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, सीखो, और हो सकता है जितनी ट्राई कर जितना तुम्हारे पास एफर्ट है पूरा लगा दो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो मेरे पापा ने हमेशा से मुझे पैसों की वैल्यू करना सिखाई है, कि अगर मैं कोई चीज़ कभी जिद कर लेता था कि तुरंत चाहिए, तो वो कभी तुरंत नहीं दिलाते थे, थोड़ा टाइम लेके दिलाते थे ताकि तुम वैल्यू करना सीखो, क्योंकि अगर तुम रोने लगोगे या जिद पकड़ लोगे तो तुम्हें अगर हर बार यही करोगे तो तुम हमें दिलाना पड़ेगा, और ऐसा करने से हर चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू होती है और तुम्हें वो अर्न करना होता है। अपने
1: अच्छा
0: पापा से ज़्यादा बात कर सकता हूँ, मम्मी से ज़्यादा, मम्मी
1: हाँ
0: से मुझे डर लगता है कि मार वार ना दे। पापा ने कभी बचपन से लेकर आज तक कभी मुझे मारा नहीं है।
2: हेलो मैम, मेरा नाम राहुल है एंड मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। एंड मैं यहाँ से अपने पापा को यह बोलना चाहूँगा कि हेलो पापा, आपने हमें अपने कैरियर के लिए हमेशा छूट दिया कि तुम्हें जो करना है वो करो। एंड बट जब लव का बात आता है तो वो जो हमारा बॉन्डिंग मम्मी के साथ है वो आपके साथ नहीं रहा है। आपने हमेशा मुझे डांटा है, हमेशा जो भी मेरे विचार है उसके खिलाफ ही जनरली आपका गया है। बट मुझे पता होता है कि आप जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो वो मेरे लिए सही है, ताकि मुझे समझ में आए कि एक साइड ये भी है। जैसे मैं कोई विचार सोच रहा हूँ एंड उनका अपोजिट जाता है, एंड उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि शायद ये दूसरा साइड भी दिखाना चाह रहे हैं।
3: हेलो मैम, मेरा नाम मानस दुबे है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। निविता वकील ने बहुत सामाजिक इंसान है, तो उन्हें हमारे सपनों से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस वो हमें कमज़ोर और गरीब नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैम हम अपने जीवन में बहुत बड़ा करें कुछ, और जैसे पिता हैं मेरे, तो वो अपनी सारी परेशानियाँ हम तक नहीं आने देते हैं, वो अपने तक सीमित रखते हैं, और वो कभी हमसे बताते भी नहीं हैं कि हाँ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मैं पापा से बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं मेरे पिता से तो उतना अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, पर लेकिन मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ है।
1: क्या
3: और
1: बात है।
4: हेलो मैम, आई एम हिमांशी मिश्रा फ्रॉम फर्स्ट ईयर जर्नलिज्म इन महाराजा अग्रसेन कॉलेज। मैं आपकी कुछ बात से ज़रूर सहमत हूँ, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि जनरेशन गैप आ जाता है एक बाप और बेटे में, असल में ये इसके बीच में ना कहीं समाज का रोल बहुत गहरा है।
1: अच्छा
4: अब आप कहेंगे कैसे, तो
1: कैसे।
4: कहीं ना ये एक प्रेस्टिजियस माइंड हो गया हर हर लोगों के मन में ना, ये ऐसा हो गया कि नहीं, हमेशा से ही जो लड़का होता है और जो पिता होते हैं ना, उनके बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग होती है, दोनों का माइंडसेट सेम नहीं होता है। हालांकि मेरे केस में मैं अपने पापा के साथ हूँ, अभी भी फ्रेंडली हूँ, बट यही है कि दोनों के पास ऑफकोर्स उतना टाइम नहीं है, मुझे भी कॉलेज जाना होता है, उनको भी ऑफिस जाना होता है।
1: तो अब एक मैसेज, लास्ट मैसेज जो आप सब लोग मिलके अपने पापा को देना चाहोगे, जो आप शायद कुछ ने दिया है पर अब बहुत कम ही बोल पाते हो, ऐसा क्या है?
5: आई लव यू पापा।
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन और इतनी इमोशनल बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
6: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अभी आपने सुनी है बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्सेशन हमारी सहयोगी माला नेगी और साथ में उनके थे महाराजा अग्रसेन कॉलेज के स्टूडेंट्स। जी अक्सर हम कहते हैं ना सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, हमारे ये जो जेंजी हैं ये हमेशा सोशल मीडिया में खोए रहते हैं, ये सारी बातें जो है ना डिजिटली करते हैं, मैसेजेस के थ्रू करते हैं, इन्हें बात करना नहीं आता, एक्सप्रेस करना अपने आप को जो है ना इन्हें नहीं आता है। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को सुनते हैं, जब यहाँ पर इनकी बातचीत सुनते हैं, तो छोटी से लेकर बड़ी बातें, इनके सपने, इनके अरमान, सब चीज़ें जब हम सुनते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये केवल सोशल मीडिया में नहीं खोए रहते हैं, ये हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया को लेके अपना एक दृष्टिकोण भी रखते हैं, और उसके साथ साथ ये अपने आप को एक्सप्रेस करना भी जानते हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: एक महत्वपूर्ण सूचना। पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अति शीघ्र 5 यूनिट ब्लड की जरूरत है। इच्छुक रक्त दानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हो, कृपया संपर्क करें इस मोबाइल नंबर पर। नंबर है 9871159311। इस नंबर पर संपर्क करें। यदि आप किसी भी ब्लड ग्रुप के हैं और रक्तदान करने में सक्षम हैं और रक्तदान करना चाहते हैं, तो पूर्वी दिल्ली के अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अति शीघ्र 5 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। मोबाइल नंबर एक बार फिर बता रही हूँ, 9871159311, 9871159311।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल अल्फाजन का एडिशन हम आपके लिए लेकर आते हैं और यूनिवर्सिटी की कहना चाहिए यूनिवर्सिटी को हम इस एक घंटे में समेट कर ले आते हैं आप सभी के लिए। और जितने भी स्टूडेंट से हम करते हैं बातचीत, जितने भी कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से हर बार कुछ नया हम ढूंढ ही लाते हैं। हमारे सहयोगी माला नेगी इस बार पहुंची महाराजा अग्रसेन कॉलेज। 1994 में एस्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज जो है, यहाँ के स्टूडेंट से की उन्होंने मुलाकात और अब मैं आपको सुनवा रही हूँ यहाँ के प्रिंसिपल से माला नेगी की बात।
4: तो अभी मैं हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: नमस्कार
4: सर। क्योंकि अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, तो किसी भी कॉलेज में एक प्रिंसिपल का रोल बहुत अहम होता है। आज जिस तरह का दौर है, AI हर तरफ है, ऐसे में अगर आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करें कोई एक ऐसा स्किल जिसकी वजह से वो कभी भी AI से रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा कौन सा स्किल होगा?
5: मुझे लग रहा है कि वो हार्ड स्किल्स हैं जो पहले भी था और आज भी है, जो कभी AI नहीं उसे रिप्लेस कर सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सॉफ्ट स्किल, जो हमारे कॉलेज के बच्चे निकल के जाते हैं
4: जी,
5: उन्हें जब भी इंटरेक्ट करना पड़ता है तो वो सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत जरूरी है। कैसे किसी के साथ बात करना
4: जी,
5: किसी को आदर के साथ बुलाना
4: जी,
5: किन भाषाओं का प्रयोग करना
4: जी,
5: किस तरह से संबोधन करना, किस तरह से नमस्कार करना और किस तरह से उसके दिल को जीतना, मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी यह सबसे बड़ी कला है और यह कोई भी AI आ जाए इसे रिप्लेस नहीं कर सकता।
4: आपसे जानना चाहेंगे सर, आज के समय में अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो कई बार स्टूडेंट्स बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा भी बनाते हैं और कॉलेज को क्रिटिसाइज

0: करते हैं। तो कोई एक ऐसी बात जिसको आप लेकर आपको लगता है कि बच्चों का क्रिटिसिज्म बिल्कुल अनफेयर है, वो क्या है?
1: मुझे लग रहा है कि बच्चों को के साथ अधिकारों की बात ज्यादा हो रही है और एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है कि सिर्फ तुम्हें अधिकार चाहिए।
0: जी
1: बच्चों को शुरू से यह बताने की जरूरत है कि तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, तुम्हारे कुछ ड्यूटीज भी हैं।
0: जी
1: अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो संविधान के भाग चार में है।
0: जी
1: अब मैंने अपने कॉलेज में, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, लगभग 16 ऐसी कक्षाएं हैं जिसको हमने पूरी तरह से स्मार्ट क्लास के रूप में कन्वर्ट कर दिया है।
0: जी
1: परंतु स्मार्ट क्लास की देखभाल करना ही भी बच्चों का भी फर्ज है।
0: जी बिल्कुल
1: एक क्लास को बनाने में लाखों रुपए लगते हैं और
0: जी
1: वह पब्लिक एक्सचेकर से जाता है या बच्चों के ही फी से जाता है,
0: जी
1: लेकिन उनकी सुरक्षा बच्चों का कर्तव्य है।
0: बिल्कुल सही बात है। मतलब आपका अधिकार है कि आपको स्मार्ट क्लासरूम मिले, वो मिला, लेकिन
1: जी
0: आपका कर्तव्य भी तो है कि
1: कि
0: आप
1: उसको
0: उसको मेंटेन
1: मेंटेन
0: करें।
1: करें, उसे बचा के रखें, उसे तोड़ने न दें, उसे तोड़े नहीं।
0: जी आज के समय में सर, जबकि जमाना पूरा टेक्नोलॉजी का है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ऐसा लगता है कि आज के समय की डिमांड है, जो आप अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जो अभी तक नहीं है?
1: देखिए, हमारे कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कॉलेज मुख्य रूप से कहा जाए कि नवीन ही कॉलेज है, अगर बाकी कॉलेजेस से दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना करेंगे। 94 में स्टैब्लिश हुआ था, 32 साल हुए हैं। तो अगर किसी शैक्षणिक संस्थाओं की आयु के हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल पुराना है। हिंदू कॉलेज, डिफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, ये उस समय के कॉलेज हैं जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, 1922 के पहले के ये कॉलेज हैं। तो उस हिसाब से हमारा कॉलेज आधुनिक और नया कॉलेज है। कुछ कोर्सेज आए हैं, कुछ नए कोर्सेज को लाने की आवश्यकता है। जैसे एक मैं ट्रेडिशनल कोर्स ही कहूँगा, लेकिन उसकी आज के दिन में ज़रूरत हो गई है। हम सब कोई स्ट्रेस के कारण या किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित होते जा रहे हैं और मानसिक रूप से पीड़ित होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मनोविज्ञान पढ़ना भी आवश्यक है जो हमारे कॉलेज में नहीं है। इसी प्रकार से साइंस एंड टेक की स्थिति में देखा जाए तो अप्लाइड साइंसेज के कोर्स भी आने चाहिए कॉलेजेस में। तो वो अप्लाइड साइंसेज एआई से भी रिलेटेड हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है। इस प्रकार के कोर्सेज को प्रारंभ करके इन महाविद्यालयों में भी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास डिजिटल वर्ल्ड है तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल
1: और वैसे में साइबर सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता है
0: जी,
1: जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इन महाविद्यालयों में आएंगे। तो उसके लिए शिक्षकों की भी ज़रूरत है, लेबोरेटरी की भी आवश्यकता है और कोर्सेज की भी आवश्यकता है, जिससे कि जो वर्ल्ड में डिमांड है उसको पूरा किया जा सके।
0: जी
1: एआई सच्चाई है, इसको हम मना नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इसको पढ़ने की भी आवश्यकता है, जानकारी की भी आवश्यकता है कि कैसे इसका समुचित प्रयोग हम मानव विकास और मानव संवर्धन में कर सकते हैं, ये भी अत्यंत ही आवश्यक है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस अहम जानकारी के लिए, और हमारी बहुत सारी गुड विशेज आपको, आपके कॉलेज को, आप नई ऊंचाइयों तक महाराजा अग्रसेन कॉलेज को लेकर जाएं। और जिस तरह के आपने सब्जेक्ट्स के बारे में कहा कि ये सब्जेक्ट्स आने चाहिए, ये आज के समय की डिमांड है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स बहुत जल्द आपके कॉलेज में भी आएंगे, और इसी तरह से आप बच्चों के विकास को लेकर हमेशा प्रगतिशील रहेंगे। थैंक यू सो मच इस इंटरेक्शन के लिए, इतनी अहम जानकारियाँ देने के लिए, और FM रेनबो के लिए अपने कॉलेज के द्वार खोलने के लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे अभी आपने सुना हमारे सहयोगी माला नेगी की बातचीत, जो उन्होंने की महाराजा अग्रसेन कॉलेज के स्टूडेंट्स और वहां के प्रिंसिपल के साथ। वैसे जनरेशंस में अगर हम गिनते तो मुझे लगता है कि हम इस कॉलेज को भी जेंजी गिनते, यूनिवर्सिटी के जेंजी कॉलेजेस में से शामिल महाराजा अग्रसेन कॉलेज, एस्टैब्लिश्ड इन 1994, अ वेरी वेरी यंग कॉलेज, और यहाँ के विजन बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ जिंदगी के कॉम्प्लेक्सिटी से दो चार होने का हौसला भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले समय के लिए यहाँ के कॉलेज जो है, ये कॉलेज जो है, ये अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से कर रहा है तैयार, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिवर्सिटी निभाती आ रही है अपना फ़र्ज हमेशा से। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर से एक और नया कॉलेज, एक और नया यूनिवर्सिटी का कोना ढूंढ कर लाएंगे आपके लिए। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आज का अल्फाजन कैंपस कॉलिंग था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाज़त।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपने समुद्री अभियान लोकायन 26 के अंतर्गत स्पेन के बार्सिलोना पहुंचा। बार्सिलोना में पोत स्पेन की नौसेना और अन्य हितधारकों के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री बिरला ने नई दिल्ली में सेशल्स के संसद के अध्यक्ष अज़राइल अर्नेस्टा के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। लद्दाख में विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के चू यू जैन को हराया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, 5:02 हो चुके हैं और हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है सिटी लाइट्स। ऑफ कोर्स सिटी के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे आज। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहपादी और ये है स्टेशन ऑफ द नेशन दिल से दिल तक 102.6 एफएम। तो रहिए हमारे साथ, आपको जानकारी देंगे मौसम के बारे में, ट्रैफिक के बारे में और क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं हमारे इस दिल्ली शहर NCR में भी, तो वो बताएंगे आपको। क्योंकि अगर आपके कुछ प्लान्स हैं और अगर आपके कुछ इंटरेस्ट्स हैं उस दिशा में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। वैसे मैं एक बात बताऊं कि आज बारिश कहीं कहीं हुई है और ज़बरदस्त हुई है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बारिशें बंद हो गई हैं तो ज़रा फिर से सोचिए। अभी छाते कहीं और रखने की, संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बारिशें होने वाली हैं। मैं आपको बताऊंगी मौसम का हाल लेकिन इस गाने के बाद। रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहपादी।

तो दिल्ली वालों, अगर आपको ये लगता है कि मानसून अभी राजधानी को छोड़ने वाला है तो ऐसा नहीं है, और राजधानी को छोड़ने का उसका कोई मूड नहीं है, और सितंबर शुरू हो चुका है तो अब हम सोच रहे हैं कि बस बारिशें अब नहीं होंगी। आज के दिन बारिश का दौर तो बहुत जगह चला और आज फोरकास्ट भी यही था, तापमान करीब 26 से 33 डिग्री के बीच में रहा। और अभी जो लोग घर से निकल चुके हैं ऑलरेडी ऑफिसेस के लिए, तो अभी वो घर ऑफिसेस से घर की तरफ जा रहे होंगे, कुछ लोग तो निकल चुके होंगे, कुछ निकलने वाले होंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर कि आप ऑफिस से निकल रहे हैं या अगर इस वक्त भी आप घर से निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला और थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम दोनों साथ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन तो अभी बारिश चलेगी ऐसा तो अनुमान लगाया जाना है, सो कीप योर अम्ब्रेलास विद यू एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑफ कोर्स अगर आप मेट्रो से नहीं जा रहे हैं तो रहेगा ऐसा ही मौसम, आप इंजॉय कीजिए और साथ में चाय पकौड़े खा लीजिए। मैं आपके लिए बजाती हूँ ये गाना, आप सुन रहे हैं सिरिलाइट्स।

और राइट दिल्ली, अभी जो आप ऑफिस से निकलने वाले हैं तो ध्यान से जाइएगा, क्योंकि ट्रैफिक का जो हाल है वो मैं बताने वाली हूँ, खासतौर से साउथ दिल्ली कम्यूटर्स के लिए। और वैसे भी बारिश हो रही है कहीं कहीं पर, और बहुत तेज़। जब मैं स्टूडियो आ रही थी तब भी बारिश हुई थी, कहीं तेज़ हुई थी और कहीं पर कुछ भी नहीं था। धौलाकुआ के पास तो कुछ भी नहीं था और उससे पहले था, और आगे जब धौलाकुआ क्रॉस किया तो थोड़ी बारिश थी। तो ऐसे कई कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो सकता है। सो यू टेक योर एक्स्ट्रा टाइम विद यू। और अगर आप खानपुर साकेत महरौली बदरपुर रोड की तरफ जा रहे हैं तो आज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि DMRC के फेज़ 4 कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते खानपुर टी पॉइंट से साकेत मेट्रो स्टेशन के बीच MB रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगभग 14 सितंबर तक रहने की संभावना है और पीक आवर्स में कंजेशन ज़्यादा हो सकता है। इसलिए साउथ दिल्ली कम्यूटर्स के लिए आज थोड़ा सा पहले ही आपने तो अभी तक कर ही लिया होगा प्लान, और अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं वो रूट या कोई और रूट ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं। और दूसरा, बारिश की वजह से भी ट्रैफिक मूवमेंट स्लो है कई जगह, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। और हम चाहते हैं कि आप आराम से घर पहुँचें और बारिश का भी आनंद लें थोड़ा सा। और ये जो ट्रैफिक है कहीं कहीं पर, बहुत जगह पर मेट्रो का काम चल रहा है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिटी लाइट्स में आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी, और अभी बहुत सारी न्यूज़ हैं। दिल्ली के इवेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी, और आज कौन सा डे है, इंटरनेशनल डे है, वो भी बताऊँगी। और मज़ेदार बात उसमें ये है कि हम वो चीज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं और वो हम्बल सा चीज़ जो दिखने वाली है वो बहुत हमारी सेवा करता है बेचारा, तो वो उसके लिए हमारे दिल से आभार हम कहते हैं उसको। अभी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद, आप ये गाना सुनिए और फिर हम बताएंगे उस चीज़ के बारे में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: और जी, मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले कि आज है स्पेशल डे, वो है उस चीज़ के बारे में, उस फल के बारे में जिसको हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी तरीके से। वर्ल्ड कोकोनट डे है आज, और आज 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। भारत में कोकोनट सिर्फ खाने पीने की चीज़ ही नहीं है, नारियल का इस्तेमाल तो हम पूजा के लिए करते हैं, तेल के लिए करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स और कई दूसरे प्रोडक्ट्स में होता है। वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी की फाउंडेशन से जुड़ा है। तो आज का ये जो फन इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि नारियल को हम फल कहते हैं लेकिन बॉटनिकल टर्म्स में ये एक ड्रूप है। ड्रूप का मतलब फल ही होता है, एक तरह का फ्रूट जिसके अंदर फ्लैश होता है और एक हार्ड स्टोन जैसा अंदर, जैसे मैंगो वगैरह है, लेकिन नारियल तो बाहर से हार्ड होता है, अंदर से तो ज़्यादा सॉफ्ट ही होता है और फ्लैशी होता है। सो नारियल पानी आप में से कितने लोग पीते हैं? बहुत लोग, है ना। गर्मियों का जो बेस्ट ड्रिंक है वो है नारियल पानी, और कितना आपको तरावत देता है वो, और कितना आपको आराम देता है वो, और गर्मी से राहत देता है ये नारियल पानी। और नारियल का तेल आपके बालों में लगाएं तो बालों में क्या चमक आती है और आपके बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं। और कई लोग खाने में भी नारियल का इस्तेमाल करते हैं और नारियल तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी गुड ऑयल बेसिकली, लेस कैलोरीज। ओके, सो हैव कोकोनट एज मच एज यू कैन। और आज को वर्ल्ड कोकोनट डे पर हम आपको बधाई देते हैं और नारियल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए अपने खाने में, बिकॉज इट्स रियली हेल्दी। अभी गाना सुनती हूँ, उसके बाद आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सिटी लाइट्स।

5:32 हुए हैं और हमारे कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स। अब एक विशेष सूचना। पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती एक रोगी को अतिशीघ्र 5 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर 9871159311 पर संपर्क करने की कृपा करें। संपर्क करने के लिए एक बार नंबर दोबारा सुन लें, 9871159311। आपका रक्तदान किसी का जीवन

0: जीवन बचा सकता है। धन्यवाद।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और आज आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहबादी। और अब जैसे कि बात आ रही है कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, तो दिल्ली में आज एग्जीबिशंस हैं दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में विजुअल आर्ट्स की पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नाम की ग्रुप पेंटिंग और स्कल्पचर एग्जीबिशन 1-6 सितंबर तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट्स गैलरी में चल रही है। इसमें कई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स शामिल हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर जाएंगे। आर्ट लवर्स के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एग्जीबिशन चल रही है और पेंटिंग और स्कल्पचर पसंद करने वालों के लिए सितंबर की शुरुआत में एक अच्छा कल्चरल स्टॉप है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। और भी क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊँगी। और वैसे भी जो सितंबर में क्या क्या हो रहा है, ये जो सितंबर से शुरू हो जाता है ना महीना, तो ये फेस्टिव सीजन शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। वैसे ही हम फेस्टिव मोड में चले जाते हैं और उसमें हम ये थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते हैं कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम आपको बताते रहते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं और आप इसका मज़ा ले सकते हैं। फिलहाल ये गाना आपके लिए, ये है सिटी लाइट्स।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: मिल गया है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स सो विद मी, माय नेम इज सुनीता शामादी और शहर के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है आज आपको। और इंडिया हैबिटेट सेंटर के कन्वेंशन सेंटर फॉर में स्पंदान यानी अचिंत्य हाजरा की वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग्स की सोलो एग्जीबिशन आज ख़त्म हो रही है। अभी भी आपके पास समय है तो अगर आप जाना चाहते हैं उस साइड से हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। ईवी इंडिया एक्सपो 2026 एक से 3 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। इसमें इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, थ्री व्हीलर्स, बसेस, बैटरीज, चार्जिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस शोकेस किए जा रहे हैं। इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक और ऑर्गेनाइजर्स के अनुसार जनरल विजिटर्स के लिए एंट्री फ्री है, हालांकि प्रायर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और इसके साथ ईवी चार्जिंग और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट पर सेशंस भी हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ग्रेटर नोएडा में ईवी इंडिया एक्सपो चल रहा है, जहां फ्यूचर की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को करीब से देखने का मौका है आपके पास।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

एक और मीनिंगफुल इवेंट जो हो रहा है वो सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को हो रहा है 2 और 3 सितंबर इंडिया हैबिटेट सेंटर में 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन हो रही है। इस साल का थीम है सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। इसमें एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और यंग चेंज मेकर्स सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रोग्राम में पैनल डिस्कशंस होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगे, फिल्म स्क्रीनिंग्स होंगे और इसमें बातचीत भी शामिल है। और अगर एजुकेशन और एनवायरनमेंट दोनों आपके दिल के करीब हैं तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज से 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन शुरू हो रही है, जहां बात सिर्फ एनवायरनमेंट की चिंता करने की नहीं बल्कि उस चिंता को एक्शन में बदलने की हो रही है। तो होपफुली आपको आपके इंटरेस्ट का कुछ इवेंट आपको ज़रूर मिला होगा और आप ज़रूर शामिल होना चाहेंगे उसमें। तो मैं आपसे कल फिर मिलूँगी इसी प्रोग्राम में, और आप अपना ख्याल रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला साथ लेके चलें, और जहाँ जहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है उन रूट्स को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अपने रूट को तो वो ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। टेक गुड केयर। बाय बाय।

नमस्कार, 6 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की, कहा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार युवाओं में साहस, सहनशक्ति, अनुशासन, जोखिम लेने की क्षमता और सहयोगात्मक टीमवर्क की भावना को बढ़ावा देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट स्थित गुलल्ला गुड्डी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी तथा स्थापन्य कला के लिए प्रसिद्ध है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। लद्दाख में विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज कारगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत के किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौरे में पहुंचे। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यू चेन को हराया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके आरजी दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम लेकर हाजिर आपका पसंदीदा मैसेज मसाला मिक्स, और इसमें क्या कुछ मिक्स होने वाला है वो तो आप ही बताएंगे। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस बताएंगे जो मुझ तक पहुंचेंगे 9868107070 के माध्यम से। लेकिन आज कुछ विशेष बात पर, खास बात पर चर्चा कर ली जाए। चलिए, बिल्कुल करनी चाहिए, शाम का ये वक्त उतना बहुत सारी बातें करने का दिल भी करता है और कई बार नहीं भी करता है। फिलहाल आपका करना चाहिए क्योंकि आपके साथ से ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है और अपने ये जो कारवा है वो मंजिल को पा ही लेता है। तो आपको ऐसी बातें बतानी हैं कि घर में ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको हर बार डांट पड़ती है फिर भी आप उसे करना नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे बताइए कि घर में ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको बार बार डांट पड़ती है और किसी से भी पड़ सकती है वो डांट, लेकिन फिर भी आप उसे करना नहीं छोड़ते हैं, क्यों? बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए 9868107070 मैसेज मसाला में। ये जो मसाला है ना वो जी आपके व्हाट्सएप मैसेजेस ही हैं, और साथ जो थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ मैं करती हूँ आपके लिए प्लेलिस्ट बना के लाने के लिए। पर मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी अपनी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम लेकर हाजिर, और ये बहुत ही खूबसूरत सी शाम में ये खूबसूरत से गाने आप तक यूं ही लगातार पहुँचते रहेंगे।

0: घर की ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको बार बार डांट पड़ती है और आप फिर भी बाज नहीं आते हैं? बताइए हमारे साथ और जुड़ जाइए 9868107070। न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं कि घर पर ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बार बार दोहराते हैं, फिर आपको डांट भी पड़ती है, लेकिन आप बाज आने वालों में थोड़ी ना है। तो चलिए, हमें बहुत ही खूबसूरत से मैसेजेस इस पर आ चुके हैं और ये मैसेज हम तक पहुँचा है। हमें रात के खाने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो 11:30 बजे हम रोज़ कॉफ़ी बनाकर पीते हैं और इस पर हमारी श्रीमती जी डेली हमें डांटती हैं और हम ये सिलसिला छोड़ नहीं पाते हैं। ये मैसेज हम तक पहुंचा है नीलम स्वाति का, किशू रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। भाई सही डांटती हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है खाना खाने के बाद और देर रात कॉफ़ी पीना। सही डांटती हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे ही सही बाज आप आ ही जाएंगे। कब तक आप ऐसे अपनी खैर मनाएंगे? ये है, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज आपने जिस विषय पर प्रश्न किया है उसकी पसंदीदा बात ये है कि अगर मैं अपने पापा को मोबाइल में कुछ मैसेज करना सिखाता हूँ या किसी की मिस कॉल का मैसेज निकलवा के देता हूँ तो वो मुझे एक दो बातें सुना ही देते हैं और कभी कभी तो पीछे से झापड़ भी लगा देते हैं। भाई पापा या फिर मम्मी को अगर आप मोबाइल सिखा रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं किसका मैसेज आया है किसका मैसेज नहीं आया है, मिस कॉल कैसे देखते हैं, तो भाई इतनी चिल्लम चिल्ली हो जाती, इतनी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो हमसे कुछ पूछते हैं, पेशेंस तो है ही नहीं ना, मतलब सुनना तुम चाहते ही नहीं ना, बस हमारी बात वो सुन ले, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। अगर हमारी बात वो नहीं सुन रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गलत वही है। तो यही कुछ आपके साथ भी होता है। मोबाइल पर व्यस्त रहने पर पत्नी मुझे टोकती है मगर मैं मानता नहीं। वरिष्ठ उम्र घर में रहते शौक काव्य लेखन को अपनाया जो मोबाइल टेक्स्ट बुक पर लिखता हूँ और फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसे व्यस्त और स्वयं को खुश फिट फाइन हेल्दी स्मार्ट ऐसे लोग कहते हैं। अनिल शर्मा का सरिता विहार से मैसेज है। भाई आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं और अक्सर अक्सर जो डांट का कारण है ना वो यही बनता है। जोया का मैसेज है, हमारे पास मैं अकेले रहती हूँ, मुझे कोई भी डांटने वाला नहीं है इसलिए मुझे कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आए करो, अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारो। भाई बहुत अच्छी बात है आपके साथ में। मेरी भूलने की आदत सबसे बड़ी कमी है, इसी वजह से कई बार मुझे डांट पड़ती है। बाज़ार से 4 ज़रूरी चीज़ मंगाई तो 2 ही लाया, कई बार तो वो भी भूल जाता हूँ। देहरादून से आलोक पवार और मिनी का ये मैसेज आया है। भाई इस पर तो आपको अच्छी खासी डांट पड़ सकती है। और अभी जो हमें मैसेज कर रहे हैं कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया, तो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया हम उन्हें बता देते हैं कि हमारा आज का विषय है कि घर में कौन सी ऐसी आपकी आदत है जिसे आप बार बार दोहराते रहते हैं, आपको डांट पड़ती है फिर भी आप बाज नहीं आते हैं। 9868107070 पर भेज दीजिए। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। इस ब्यूटीफुल से मौसम में आप क्या खा रहे हैं? पैठी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, या फिर घर में पकौड़े तल कर चाय के साथ चिस्किया ले रहे हैं? चलिए जो भी आप करें ना, दिल खोल कर कीजिए। और मोबाइल तो आपके हाथ में हमेशा रहता है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मोबाइल उठाइए और व्हाट्सएप मैसेज टाइप कीजिए। चलिए जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन इस बात का जिक्र अगर आप करते हैं तो तभी आपका मैसेज यहां पर शामिल होगा। 9868107070।
1: अरे चल तुम घर में आ रही के साथ बगीचे में खाना खाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
1: बेबी कम ऑन, शंकर बिहार के साथ। अबे ओ बुड़बक, वो भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है।
3: आई लव सपना, आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना।
1: I love her, I love her, I love Sapna, Sapna, Sapna, Sapna.

0: of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है राजकुमार का महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं कि 27 साल क्रिकेट खेली जो कि हमारी प्यारी स्वर्गीय दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, उनसे बहुत डांट खाते थे और आज उनकी वो डांट जो है वो बहुत याद आती है और वैसे वो सही डांटा करती थी। ये मैसेज हमारे पास आया है अंशिका हस्तिनापुर से। वो लिखती हैं कि मुझे फ्रिज का पानी पीने के ऊपर हमेशा डांट पड़ती है लेकिन मैं उस पानी को ही पीती हूँ। ठंडा पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ठंडे पानी पीने से जल्द ही मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, ठंड जल्दी लग जाती है, इसलिए मुझे वो डांट पड़ती है। चलिए भाई, आपको कम से कम ये तो पता है कि आप कुछ गलत तो कर रहे हैं। कई बार होता ना गलत नहीं लगता और लगता है हमें बेफिजूल में डांट पड़ रही है। ये है कि मेरा मैसेज आपके, आप क्या भेजना चाहते हैं, आपका मेरा मैसेज आपके पास नहीं पहुंच रहा है, आप भेजिए तो सही, जरूर पहुंचेगा। ये है हमारे पास, माना कि रेडियो की वजह से घर में रोज डांट पड़ती है और सब मुझसे नाराज होते हैं, पर क्या करूं, रेडियो मेरी जान भी है और शान भी है, इसके बिना मेरी हालत वैसी ही है हो जाती है जैसे पानी के बिना मछली की होती है। परिवार भी मेरी दुनिया है और रेडियो मेरी रूह, बस दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश जारी है। ये मैसेज हमें आया है जसपुर रोड दुलापुर मुरादाबाद से, मोहम्मद अमीर अंसारी का, मोहम्मद वारिस और बेटी अलशिफा अंसारी का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। ये है कि माय टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड एंड आई एम लेट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, माय वाइफ इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। भाई देखिए, ये तो मुझे भी है कि टाइम से पहुंचना चाहिए, लेट होने वाले लोगों से ना सख्त नफरत है। कोई बात नहीं जावेद, अगर आपकी वाइफ गुस्सा है ना तो धीरे धीरे करके आपको आपको टाइम पर ले ही आएंगे। कपिल, मतलब आपकी वाइफ के लिए कह रही हूँ कि अगर आपकी वाइफ नाराज भी हैं और गुस्सा भी हो जाती हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट जल्द ही आने वाला है, बस ये सोच लीजिए। मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक पे, यही कहूँगी, घर के बाहर खेलने जाता था तब हम जाते थे बचपन में, बताओ तो काम करता हूँ लेकिन अब तो मैं काम करता हूँ और अब मुझे कोई नहीं डांटता क्योंकि मुझे बाहर ही रहना होता है। और ये है कानपुर से मैसेज हमको आया है जावेद आलम का। नरेंद्र सोनी का पटियाला से मैसेज है, हमारे सारे दिन की टेंशन थकान हमें भूल जाते हैं जब हम प्रोग्राम या रेनबो के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी जो गंदी आदत है वो ये है कि हम खाना खाकर बर्तन सोफे के नीचे कर देते हैं। भाई ये तो सबसे बुरी आदत है और अगर कोई मेरे साथ भी ऐसा करे ना तो मुझे भी बेहद गुस्सा आता है। भाई ये तो होना चाहिए ना, खाना खाया कम से कम आप हाथ तो धोंगे ही ना, भाई उसके लिए तो जाएंगे आप, तो प्लेट भी या जिसमें भी आप खा रहे हैं वो आपको सिंक में रख कर अगर आप आ जाएंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी। हिमांशु राणा का मेरठ से है, सब्जी के साथ धनिया लाना भूल जाता हूं। भाई वो तो कितनी बार सब्जी वाले खुद ब खुद डाल देते हैं, ये बहुत गलत बात है। सब्जी में अगर धनिया ना हो तो मजा आता है, हरा धनिया दिखना चाहिए, टेस्ट जो है ना, स्वाद जो है ना और खूबसूरती जो है सब्जी की वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये बताना चाहते हैं कि घर में आपकी डांट सबसे ज्यादा किस चीज पर पड़ती है और फिर भी आप उसे करना भूल जाते हैं।

हैं, बार बार वही गलती आप करते हैं, तो वो क्या हो सकती है? 9868107070 पर बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं किचन में काम करते समय मोबाइल पर रेडियो फुल वॉल्यूम करके सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा वॉल्यूम कम करके सुनने को कहते हैं, पर मुझे गाने हाई वॉल्यूम में अच्छे लगते हैं। मीना का मध्य प्रदेश से ये मैसेज आया। भाई कभी कभी आसपास के लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, क्या पता वो आपको आवाज़ लगाते हों, कोई आवाज़ लगा रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये भी वजह हो सकती है। कुछ चीज़ों में बेफिजूल की नाराज़गी या बेफिजूल का गुस्सा ना खतरनाक हो सकता है। 9868107070 पर आप बता सकते हैं। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स। घर में कौन सी ऐसी बुरी आदत है जो बार बार आप करते हैं डांट पड़ने पर भी, और क्यों करते हैं बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप लगातार हमारे साथ बने हुए, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, तो चलिए आप तक भी पहुंचा देती हूं। ये परमेश्वर शर्मा का मैसेज आया है जमशेदपुर से, और वो लिखते हैं कि मेरी आदत है कि ऑफिस जाने के लिए देर से तैयार होता हूं, और वाइफ के साथ कितनी बार इस पर नोकझोंक हो जाती है, बनती है इस पर नोकझोंक होना, और बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। और ये है कि मूवी देखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे घर वाले नाराज रहते हैं कि मेरे कपड़े की शॉप है, वे कहते हैं कि शॉप से आने के बाद आप मोबाइल में मूवी देख लिया करो, लेकिन काम के समय काम किया करो। अब आप ही बताइए कि जो मज़ा थिएटर में देखने में आता है, क्या वो मज़ा मोबाइल में आ जाएगा? इस बात पर मुझे हर बार डांट पड़ती है। मोहम्मद फुरकान का ये मैसेज हम तक पहुंचा। भाई ये बात तो आपकी मानने वाली है कि मोबाइल पर वो मज़ा कहाँ जो थिएटर में आता है। चलिए थोड़ी बहुत तालमेल बना लीजिए, बैलेंस बना लीजिए, और फुरकान शायद आपको इससे निजात मिल जाएगा, इस परेशानी से। ये हमारे पास मैसेज है, मुरी गेट से मैसेज आया कन्हैया लाल का, और वो लिखते हैं कि इस समय चाय की चुस्कियों के साथ समोसे और समोसे के साथ पकौड़े भी खाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, आपने हमारे मुंह में पानी ला दिया है, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ हम आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं। हमारे परिवार में किसी की कोई ऐसी हैबिट नहीं है जिसके लिए किसी को कुछ कहना पड़े। ओके, ठीक है। और ये है कि मेरा नाम उज्जवल है, दिल्ली में रहता हूँ। वैसे मुझे बहुत डांट पड़ती रहती है, ऑफिस से वापस जाते वक्त काफ़ी मार्केट पड़ती है, तो मोस्टली मुझे रोज़ चटरपटरी नाश्ता पैक करके ले जाने की आदत है, जिस पर सब बहुत चाव के साथ खाते हैं, पर साथ में डांट भी देते हैं कि रोज़ रोज़ ये अच्छा नहीं है। उज्जवल का ये मैसेज, भाई चटरपटर खाने की जो मज़ा है ना वो अलग है, लेकिन हाँ उज्जवल रोज़ रोज़ खाना ना ख़तरनाक हो सकता है। पर हाँ ये भी बात है, सब खाते हैं लेकिन डांटते बराबर है, ना खाएं तो शायद आपकी आदत चेंज हो सकती है, लेकिन सब साथ में बैठ के खाते ना तो थोड़ी देर लड़ाई होती है, या डांटते हैं फिर उसके बाद मान जाते हैं। मुझे डांट नहीं पड़ती, अपनी जिम्मेदारी सही से निभाती हूँ, क्या सही है मेरे लिए क्या नहीं वही करती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमने तो वैसे ये पूछा है कि कौन सी ऐसी बुरी आदत है, तो आप बता सकते हैं। मैं अक्सर पंखे और एसी का स्विच बंद करना भूल जाती हूँ कमरे से बाहर जाते समय, तो इस पर मुझे बहुत डांट पड़ती है। कैलाश शर्मा का गुरुग्राम से मैसेज, इस पर तो अक्सर मुझे भी डांट पड़ती है अपने घर में। तो भाई देखिए कैलाश जी, ये जो आदत है ना इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ये जो आदत है ना खतरनाक भी हो सकती है, तो इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और यह कि मुझे घर में शैतानी करने पर बचपन में डांट पड़ती थी, लेकिन अब शादी के बाद श्रीमती जी चिल्लाती हैं रेडियो सुनने पर, उन्हें क्या पता रेडियो क्या चीज है, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में खुद भी वो सुनती हैं और बताती हैं कि इस कार्यक्रम में आपका नाम आया है। हीरामणि का मैसेज हमें छत्तीसगढ़ से, तो चलिए कुछ डांटे अच्छी भी होती है। उज्जैन से ये मैसेज हमें आया है कि शाम को जल्दी खाना नहीं खाने और बिस्तर को फैलाने की इन आदत के कारण मेरी पत्नी मुझे बहुत डांट पड़ती है। भाई हाँ, शाम का खाना समय पे खा लेना चाहिए, और जब बिस्तर पर जाएं तो अच्छे से बिछा कर साफ सफाई कर कर फिर ही उस पर लेटना चाहिए, गीले टॉवल बेड पर छूट जाती है। संजय श्रीवास्तव का गुना MP से ये मैसेज आया, आपकी छूट जाती है और मेरी जानबूझ कर छूट जाती है हर बार, बचपन से लेकर आज तक की मेरी आदत है, अभी तक चेंज नहीं हुई है। कई बार मेरी सिस्टर भी आती हो कहती अब भी तक तेरी आदत चेंज नहीं हुई है। तो इसमें तो हम बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ ये बैड हैबिट है, इसे चेंज करना चाहिए। तो मेरी तो बहुत सारी आदतें हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो

प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। कितनी सारी बैड हैबिट है मुझ पे, मैंने क्यों पूछा आज ये, मेरी सारी बातें सामने आ रही है। ये है कि मुझे नहीं डांटा जाता घर में, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई मेरे सामने ठीक से नहीं बोलता है। और चलिए अच्छी बात है कि अगर आपको किसी चीज़ की डांट नहीं पड़ती है घर में। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप भी बताइए ना कि कोई सी बात पर आपकी डांट पड़ती है या नहीं। मैं मोबाइल हाथ में लेकर बस दो मिनट के लिए बैठती हूँ और फिर वही दो मिनट कब एक घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर वाले कहते हैं मोबाइल छोड़ो, कुछ और भी काम कर लिया करो। मैं हर बार कहती हूँ हाँ हाँ अभी रखती हूँ, लेकिन अगले ही पल फिर वो स्क्रीन सामने आ जाती है। डांट आज भी पड़ती है, सलाह भी मिलती है, मगर आदत बदलने का नाम नहीं लेती। लगता है मेरा मोबाइल और मैं एक दूसरे से अलग होने के लिए बने ही नहीं है। निधि का पंचकुला से मैसेज है। निधि ठीक है, ये बात ना कुछ ही समय तक अच्छी है, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखने ना, और भी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मोबाइल से साइड हो सकते हो। घर वालों की बातें हर बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए, माननी चाहिए उनकी बातें, बहुत ही समझदारी की डांट होती है। मुझे डांट पड़ गई आपका प्रोग्राम सुनते सुनते, वाइब बोलती है। और भेजो मैसेज आपका नाम भी सही करके। और मुझे रेडियो क्यों सुनाते हो, मैं ऐसा सुनते हो मैं वाला, ऐसी कोई बात नहीं है, रेडियो मेरी जान है शान है, बस मैं यही कहूँगा। चलिए भाई, आपकी डांट पड़ रही है तो आपकी डांट इस वजह से तो नहीं पड़नी चाहिए, होनी चाहिए कि चलिए आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। इन सब चीज़ों पे डांट पड़े तो समझ भी आता है भाई ये गलत बात है, आपको बीवी को खुश रखना है, डांट नहीं पड़नी चाहिए रेडियो सुनने में। फिर हमें दुख होता है ना कि आप रेडियो सुन रहे हो और आपको डांट पड़ रही है। मैं आपको ये बता दूँ कि यदि मुझे अपने रसोई घर में अपनी पसंद की कोई डिश बनानी है तो मैं उसे अवश्य बनाकर ही रहता हूँ। मेरे इस कार्य को मेरी पत्नी भी रोकना चाहे तो वो नहीं रोक सकती है। जब मेरी पत्नी को ये बात मालूम हो जाती है तो वो मेरी बात नहीं मानेगा तो वो कुछ नहीं बोलती है। मेरा विचार यही है। नियमित श्रोता है हर्षवर्धन मध्य प्रदेश से। भाई डांट किस पे पड़ते हैं मुझे वो अभी तक समझ में नहीं आया, शायद वो आपको समझ गई हैं कि भाई इनको कुछ कहना ना कहना बराबर ही है, कुछ कहें तो भी नहीं सुनेंगे, नहीं कहेंगे तो भी ये नहीं सुनेंगे। तो चलिए बता दीजिए आप अपने दिल की बात कि घर में ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बार बार करते हैं, डांट पड़ती है फिर भी आप नहीं मानते हैं। 9868107070 देखिए रेडियो आप सुन रहे हैं, सड़क पर आप इस समय अगर हैं, रोड पर आप चल रहे हैं, ट्रैफिक में अगर आप हैं, घर पर आप बैठे हुए हैं, तो देखिए अगर आप रोड पे हैं चल रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। अगर गाड़ी में है, रेड लाइट पे आप खड़े हैं तो आप मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। सावधानी के साथ हर चीज़ करेंगे तो सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही खास हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, आप भी खुश होंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, तो सावधानियाँ बेहद ज़रूरी है। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: मंगल भवन मंगल हारी,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।
6: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है, तंबाकू की आदत है और मेरी बीवी बार बार मना करती है, फिर भी मैं खाता रहता हूं और मेरी डांट पड़ती है। विजेंद्र का महाराष्ट्र से ये मैसेज है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गलत आदत है और वो सही आपको मना करती हैं, तो इसे मजाक में ना लेकर सीरियस आप समझ लीजिए और अपनी आदत को जल्द से जल्द सही कर लीजिएगा। और ये मैसेज है हमारे पास, अभी तो मुझे मोबाइल में घुसे रहने और ईयरफोन लगाकर रेडियो सुनने के कारण डांट पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूं, पढ़ाई भी तो इसी में है। देखिए पढ़ाई भी अगर आपको करनी है तो लंबे समय तक ईयरफोन लगाना सही बात नहीं है, तो कुछ मैं कह रही हूँ कुछ जो डांट आपको पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, उन्हें मान लेना चाहिए। माई हैबिट विच बिकम्स अ प्रॉब्लम इन माई होम इज दैट वेन एवर एनी न्यू थिंग्स और न्यू डिवाइस कम्स टू माई होम एंड माई पेरेंट्स आस्क मी टू ट्राई इट, आई ऑफन हेजिटेट टू ट्राई इट बिकॉज आई थिंक दैट हाउ विल आई यूज इट, आई ऑफन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट द न्यू थिंग्स। देखिए ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आप टाइम लेते हैं, आप पूरे उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं, तो ये चीजें आप में सही हैं। रेडियो सुनना मेरे बचपन से आदत है और कई बार लोग मुझे रेडियो दीवाना कहकर भी डांट देते हैं और मेरा नाम सुनकर मेरी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अक्सर डांट पड़ ही जाती है मुझे इसके लिए। तो चलिए भाई, रेडियो के लिए आपको काफी डांट पड़ती है, मुझे लगता है आप सभी को कुछ काम भी करते रहना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है और समय के साथ साथ चीजें की जाए तो फिर कभी डांट पड़ने का मकसद ही ना सामने आए। मीनाक्षी का गाजियाबाद से मैसेज है, मुझे भी सुननी पड़ती है फोन के लिए, हर टाइम फोन में लगी रहती हूँ। भाई फोन में ऐसा क्या है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, उसे कीजिएगा। और ये है मेरठ से, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। रुचि रावत का ये मैसेज आया मेरठ से, बिल्कुल सही डांटते हैं जी, आपको उठ जाना चाहिए सुबह जल्दी और रात को समय पर सोना चाहिए, तभी आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। नेहा का गाजियाबाद से मैसेज है, बहुत गहरा काम करते टाइम मुझे अपनी ज़ुबान बाहर निकालने की आदत है, जिसका मुझे पता भी नहीं चलता और मेरे पति इस बात के लिए मुझे हमेशा गुस्सा करते हैं, लेकिन ये ज़ुबान जो है वो अंदर नहीं जाती है, बाहर कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। हाँ कुछ आदत होती है कुछ काम करते करते मुंह बनाने की, मेरी बहन को भी ये आदत है, उसका अलग ही मुंह बन जाता है जब वो कोई काम करते, फिर मुझे ये क्या हो गया, ये करने की क्या जरूरत है, काम तो हो ही रहा है, फिर उसको तो यही फोकस करती रहती है, तेरा यही ध्यान रहता है, तो ये कुछ हो जाती है। मेरी आदत है अक्सर वॉश बेसिन का नल खुला रह जाता है, सब डांटते हैं, अब जब भी हाथ धोता तो वो लोग पीछे खड़े रहते हैं। भाई देखिए ये गलत बात है, पानी को जाया ना कीजिए, पानी को वेस्ट ना कीजिए, जल है तो सब कुछ है। संजय का मैसेज आया है मुंबई से और ये वसीम का मैसेज हम तक पहुंचा है कश्मीर से, मुझे रात को देर से अपने आने पर रोज डांट पड़ती है और 10 बजे के बाद ही मैं आता हूं तो इसलिए डांट पड़ती है। भाई गलत बात है, टाइम से आइएगा घर पर, तो ये घर वालों को आपकी वजह से जगना पड़ता है।

गेट खोलना ही नहीं खोलना, ये सब चीज़ों की एहतियात तो बरतनी चाहिए ना। मैं अपनी चीज़ों को रखकर भूल जाता हूँ, और घर से निकलते वक्त या कुछ दूर पहले किसी से कोई काम बोला हो तो मैं वो भी भूल जाता हूँ। फिर इसके लिए मुझे डांट पड़ती है और दोबारा उस काम को करने के लिए घर से बाहर जाने का बहाना मिल जाता है। जबलपुर से, मध्य प्रदेश से ये हमको मैसेज आया है। लास्ट में ऑफिस जाता हूँ और अक्सर घर लॉक करना भूल जाता हूँ। इस गलती के चलते वाइफ अब मुझे धक्के मार के सबसे पहले घर से निकाल देती है और डांट भी पड़ती है, तो सुबह सुबह डांट पड़ जाती है। ओंकार का मैसेज है मोहाली से। भाई देखिए, ये आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों को तो एकदम सही डांट पड़ती है। भाई देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो डांट तो पड़ना लाजमी है ना आपकी। अगर आप घर खुला छोड़ जाएं, कुछ हो जाए, फिर किसको ब्लेम करेंगे? वाइफ को ब्लेम कर देंगे आसानी से। ऐसा नहीं चलता। 9868107070 पर दिल खोल कर लिख दीजिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं, कोई बात जो हमें बताना चाहते हैं। बेशक स्वागत है आपका 9868107070।

आकाशवाणी रेडियो 102.6 पर मैं हूं आपके साथ आपके आज दोस्त मुक्ति सैनी प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। तो मैं आपको बता दूं 7 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट ज्योति के साथ और उसके बाद 8 बजे मैं लेकर आऊंगी प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। तो फिलहाल के लिए मैं चलती हूं बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, आपको छोड़े जाती हूं और आपसे यही कहूंगी कि आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में और आपके इतने खूबसूरत मैसेजेस मुझ तक पहुंचे। आपने इतना साथ दिया हमारे प्रोग्राम में, इसके लिए भी तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया करती हूं और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये आखिरी ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचेगा आप तक। और वैसे डांट पड़ना अच्छी बात नहीं है, तो कुछ आदतें छोड़ देना ही बेहतर है।

0: competition. So it's not that easy that, you know, we just go there and be a part of it. Of course, you and I, just like, you know, visitors. But when you want to get into the Satriya or the Satra life, it is a sacrifice of the regular life, or sacrifice is what is the second name of Satra. And then the Dakhin Partha Satra is associated with the important religious and cultural celebration. On the other hand, the Garmur Satra is again another very significant center for the Vaishnavite tradition. And together, all these institutions, you know, they form the remarkable cultural landscape of Majuli Satras. Yeah, when we come back, we'll talk about the beautiful art of mask making and why is it so relevant. I'll tell you more about that. But right now, we're heading in for a short little commercial break. Stay with me because there's lots in store on the other side.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
8: मंगल भवन मंगल हारी,
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
10: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
11: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
12: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
13: हिमालय की गोद से लेकर
14: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
13: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
14: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
13: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
14: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
13: तो सुनना ना भूलें
14: रेनबो डेस्टिनेशंस
13: हर शुक्रवार दोपहर 2:00।

0: बजे एफएम रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा, ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली इज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी गई। बिल के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी मंजूरियां, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन रॉय नायडू ने नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नारगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा की। लैंड एडवेंचर श्रेणी में बलजीत कौर और स्कॉलंग रिंगजिन, वाटर एडवेंचर श्रेणी में रेमो साह और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शिव प्रसाद चमोली को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट स्थित गोलल्ला गुड्डी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है, जबकि लगभग 4,900 लोग अभी भी लापता हैं। और खेलों में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल हमारा खुश हो जाता है, बहल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे सभी श्रोतागण हमारे साथ सही समय पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि 24/7 हम खास तौर पर एकदम तैयार रहते हैं, एकदम तैनात रहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपके इंफोटेनमेंट के लिए। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत प्यारे प्यारे गीत, गज़ल, बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आते हैं आपके लिए जो बस आपका मनोरंजन करे और साथ में आपको बहुत सारी सीख भी दे। फिलहाल आप बने हुए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी और ये बातों गीतों का सिलसिला चलता रहेगा यहां पर, क्योंकि पिटारा एकदम तैयार है और यही खाली करके जाना है, हर वो सॉन्ग आप तक पहुंचाना है जो खास मैं अपनी प्लेलिस्ट में बटोर कर आपके लिए लेकर आई हूं। थोड़ी बहुत मेहनत भाई हम करते हैं आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी, तो थोड़ी बहुत हमारी तारीफ भी कर दिया कीजिए शिकायतों के अलावा। जी हाँ, आपकी शिकायतें भी हमें मंजूर हैं, आपकी तारीफें भी हमें पसंद है, हर चीज़ हमें आपकी पसंद है, बस आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखिएगा, क्योंकि दिल से दिल तक हम पहुँच रहे हैं आप तक कैसे, म्यूजिकली। फिलहाल ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
4: प्रोग्राम म्यूजिक की मस्ती में मैं हूं आपके साथ, आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। और अभी डबल धमाका होना बाकी है, मतलब बाकी है बिल्कुल। आप इत्मीनान रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपसे भी तो हम बहुत कुछ कहते हैं ना, वो आप पूरा करते हैं या नहीं करते मुझे पता है। कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी नखरे जैसे कि होते हैं, नखरे दिखा जाते हैं, कंजूसी दिखा जाते हैं। पर देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ना, वो लॉस आपका हो सकता है। अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बाकी आप किसी चीज़ को थोड़ा सा भी दरकिनार करेंगे तो चल जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन हेल्थ के साथ अगर खेले तो फिर कहीं के भी नहीं। क्योंकि सारे काम हम अपने बॉडी के साथ जब करते हैं तो फिर अगर वही स्वस्थ नहीं है तो हम और कोई काम अच्छे से कर पाएंगे? ना जी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इतनी सी बात है और इतनी सी बात समझनी है और फिर देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। नहीं निकले ना अभी वॉक पर, नहीं घूमने जा रहे ना, बैठे हुए ना खा पी के, नहीं, यही करना है, इसी चीज़ को आपको चेंज करना है, यहीं से शुरुआत होगी। बैक टू बैक सॉन्ग्स आएंगे आपके लिए और आप इस पर डांस ना करें, झूमें ना या फिर घूमने ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही शाम का मौसम ना थोड़ा सा सुहावना हो चुका है तो घर से बाहर निकलकर देखिए, आपको अच्छा महसूस होगा।

0: बिल्कुल, ये बिल्कुल भी बोलने का समय नहीं है, सिर्फ इस म्यूजिक को थोड़ा सा वॉल्यूम अप करके सुनने का समय है। और फिर देखिए कितनी रिफ्रेशिंग और कितने ताजगी से भर जाएंगे आपको। भाई सिर्फ ताजगी जो हम नहाने के बाद ही महसूस नहीं करते, कई बार जब दिमाग की थोड़ी सी परेशानी या कह लीजिए कुछ ऐसी सोच जो आपको परेशान करके रखती है, आपके दिमाग को एकदम घुमा देती है चकरी की तरह, तो ये सॉन्ग सुनिए, हमारे साथ जुड़ जाइए 102.6 और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, फिर आप वो ताजगी महसूस करेंगे। वाह वाह वाह, ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है खास आपके लिए, लेकिन उसमें से कितनी बातें आप मानते हैं ज्ञान की, तो वो तो आप पे ही निर्भर करता है। हम सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं, और मुझे पता है मेरे जितने भी श्रोतागण हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस जगह से भी आप हमें सुन रहे हैं या जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आप कुछ ना कुछ बातें तो हमारी ज़रूर मानते होंगे और उनको अपने जीवन में ज़रूर उतारते होंगे और फिर अपने जीवन में बदलाव भी महसूस करते होंगे। तो वैसे हर किसी की बातें सुननी चाहिए, फिर कौन सी बात कितनी सही है हमारे लिए, क्या नहीं सही है, उसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिलहाल पार्टी का मूड आपका कहीं ना कहीं हो रहा है, तो फिर ये पार्टी कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर मिलेगी 8 से 9, क्योंकि म्यूजिकली और दिल से दिल तक हम पहुंचते रहेंगे सीधा आप तक प्रोग्राम म्यूजिक की मस्ती लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला जारी रहेगा आपके लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।
1: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

वैसे आपके साथ साथ रहना, आपके पीछे पीछे रहना मैं बेहद ज़्यादा पसंद है, और आपके साथ अगर हम हैं तो फिर हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और कारवा रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मज़ा जो है ना वो दोगुना और तिगुना बढ़ता ही जाता है। तो बस इसी मज़े के लिए, इसी साथ के लिए, इसी खुशी के लिए हम आ जाते हैं आपसे मिलने, क्योंकि यहाँ पर रहती है म्यूज़िक की मस्ती, और म्यूज़िक के अलावा सुकून जो है, दिल को राहत है, वो कहीं नहीं मिलती है। स्ट्रेस अगर दूर करना है, टेंशन अगर दूर करनी है, या फिर अगर कोई खुशी तो उसमें भी खुश रहना है, तो भी आप म्यूजिक के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ हो ना हो लाइफ में, लेकिन म्यूजिक है तो सब कुछ है।

मोहरा मूवी का ये खूबसूरत सा गीत पहुंचा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और अभी बहुत कुछ बाकी है आपके लिए। और आखिरी सॉन्ग अगर प्ले ना हो जबरदस्त तो फिर सब कुछ अधूरा सा लगता है। फिलहाल मैं आपको आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा बता देती हूँ। 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही प्रज्ञा तिवारी के साथ, और उसके बाद 10 बजे का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि रेनबो क्लासिक का ज्योति के साथ, और 11 बजे का समय रहेगा रंगे महफिल प्रज्ञा तिवारी के साथ। तो सब इन्हीं प्रोग्रामों के साथ अपना साथ खास बनाकर रखिए। फिलहाल मुक्ति कहेगी आपसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने छठे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा, ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। बेल्जियम के प्रधानमंत्री

बार्ट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई और लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। और खेलों में श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आकाशवाणी FM रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: Dear listeners, stay with us as we still have some more messages and beautiful music on the other side. I'm just taking a short little commercial break, but we'll be back with you in just a bit.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको

एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉर्ट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। और खेलों में श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रही हमारे साथ।

समय हुआ है 11:07 और हम आप पहुंचे हैं गजलों की दुनिया रंगे महफिल में। रेडियो स्टेशन आकाशवाणी का FM रेनबो और स्टूडियो में मैं प्रज्ञा तिवारी। आइए गजलों को सुनते हैं।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

और अब वो समय जब मैं लूंगी आपसे आज के लिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर होगी बात। तब तक गुनगुनाते रहिए जिंदगी की सुरीली और कभी कभी बेसुरी हो जाने वाली धुनों को। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय बाय।

नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी रेनबो से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू की अध्यक्षता में भारत ने मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमान लीजिंग और वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर चर्चा हुई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल कल से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपने दूसरे मैच में हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में भारत में मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमान लीजिंग और वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर चर्चा हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ कल से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। और महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपने दूसरे मैच में हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: रियूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दी है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि डॉलर रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 करोड़ डॉलर का प्रवाह हुआ है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन राय नायडू की अध्यक्षता में भारत ने मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमान लीजिंग और वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उपायों पर चर्चा हुई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर 3 दिन के भारत दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही बातचीत के प्रमुख स्तंभ होंगे। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। वहां बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल कल से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। वहीं दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपने दूसरे मैच में हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉर्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रॉन्केन भी भारत आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की भारत की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है और आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। लगभग 4,000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। ये उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। भारत पहली बार हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और महिला क्रिकेट में श्रीलंका ने 2020 एशिया कप 2026 के ग्रुप बी के मैच में इंडोनेशिया को 75 रन से हरा दिया है। आज ग्रुप ए में भारत अपना दूसरा मैच हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: होगा। हाय हाय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बोर्ड डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रानकेन भी भारत आए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से नेपाल पहुंचे 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ त्रिशूली बाजार के पास पहुंच गए हैं। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। यह उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। भारत पहली बार हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती सिवरफ्रंट में आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और महिला क्रिकेट में आज ग्रुप ए में भारत अपना दूसरा मैच हांगकांग से खेलेगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

शिवानी आकाशवाणी 4:04 और 9 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सारे गामा।

दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: हुस्न कसाया, पढ़ने न पाए हुस्न कसाया, देखो बजाना
1: वाह मेरे शागिर्द।
0: थैंक यू।

प्रातः के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बोर्ड डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रानकेंड भी भारत आए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से +A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव और सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। भारत से 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ नेपाल के त्रिशूली बाजार के पास पहुंचे। विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा। ये उपग्रह GSLV-F17 का रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक के लिए

तैयार हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब रूस यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर काम करने को तैयार हो। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत पहली बार हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती सिवर फ्रंट में आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और महिला क्रिकेट में आज ग्रुप ए में भारत अपना दूसरा मैच हांगकांग से खेलेगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। प्रातः के 5:03 और 56 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।